सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी श्रोताओं का इस सभा में स्वागत करते हैं।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर बड़ा दयालु है, हमारे सभी पापों का नाश करने वाला है। एक बार करुण भाव से पुकार के तो देखो, वो कैसे एक वात्सल्यमयी माँ की भांति तुम्हें अपने आश्रय में ले लेगा।

तीनों लोकों के स्वामी त्रैलोकपति सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले हैं। संसार के हर कण में उन्हीं का वास है, इसलिए अपनी एक भी श्वास को व्यर्थ ना करके हर श्वास हर क्षण प्रभु को ही समर्पित हो जाए।

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने सुना आशा भोसले, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और शर्मा बंधु की गाई भक्ति रचनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देश गान।

0: इस देशगान के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु, जिसमें आज का विषय है मनोनिग्रह का रहस्य। आलेख है डॉक्टर जे आर यादव का, वाचन है विजया भांबरी का।
1: मन और उसका निग्रह एक ऐसा विषय है जिसमें हम सभी व्यक्तिगत रूप से बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि हमारा मन ही हम पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। मन संयम एक वीर पुरुष के लिए भी सदैव से कठिन कार्य रहा है, किंतु ये असंभव नहीं है। मन संयम का सारा रहस्य श्री कृष्ण ने अभ्यास और वैराग्य इन दो शब्दों में व्यक्त कर दिया है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी अभ्यास योग से मन संयम संभव बतलाया है। इन दोनों को जीवन में उतारने के लिए हमें मन संयम हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करना चाहिए। हमें अपने मन का स्वभाव समझना चाहिए। हमें कुछ प्रक्रियाएं जान लेनी चाहिए और उनका अभ्यास करना चाहिए। इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए हमें अपनी सुख भोग की स्पृहा पर विजय पानी पड़ती है। ये भी

0: समझ लेना पड़ता है कि मनोनिग्रह में किस बात की आवश्यकता है। मनोनिग्रह में समर्थ होने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि अपने कार्य को अनावश्यक रूप से कठिन होने से कैसे बचाएं। मनोनिग्रह की साधनाओं का प्रभावी रूप से अभ्यास करने में समर्थ होने के लिए हमें एक अनुकूल आभ्यांतरिक वातावरण की आवश्यकता होती है। मन संयम के लिए हमें उसकी चंचलता पर रोक लगानी चाहिए, साथ ही कुछ नैतिक मूल्यों का भी पालन होना चाहिए। मन जितना भी निर्मल होगा उसे वश में करना उतना ही सरल होगा। अतएव हमें अपने मन को शुद्ध करने की साधनाओं का अभ्यास करना होगा। हमें अपने भीतरी स्वभाव में सत्य की प्रधानता लाना और तत्पश्चात प्रामाणिक साधनाओं के अनुसार सत्व को शुद्ध करके गुणानित हो जाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सत्संग मनोनिग्रह में बड़ा सहायक है। ये है तो सरल पर अन्य उपायों से अधिक फलदायी है, अतः हमें उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। वेदांत के अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन चतुष्टय का जो अभ्यास किया जाता है, उस अभ्यास की प्रक्रिया में ही मनोनिग्रह की समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। वेदांतिक साधनाओं को अधिक फलप्रद बनाने के लिए योग के अभ्यास को जोड़ देना अधिक सहायक होता है। योगाभ्यास यम नियम से शुरू होता है, इसके साथ ही विवेक का अभ्यास भी चलाना चाहिए। चंचल मन को संयत करके उसे विषयों से खींचना चाहिए और उसे एक विचार में केंद्रित करना होगा। बार बार इस क्रिया को करना आवश्यक है। इच्छा शक्ति द्वारा मन को वश में करके उसकी क्रिया को रोककर ईश्वर की महिमा का चिंतन करना चाहिए। प्राणायाम और प्रत्याहार मनोनिग्रह में सहायक होते हैं। प्रत्याहार में स्थिति होने से मनोनिग्रह सरल हो जाता है। प्रमुख साधनाओं के सफल अभ्यास में उल्लेखनीय सहायता प्राप्त करने वाले और भी कई अनुवांशिक उपाय होते हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। ये उपाय हैं: अपने मानवीय संबंधों को ठीक रखना, मन को स्वस्थ रूप से सक्रिय बनाए रखना, कल्पना का सम्यक उपयोग करना और हताशा से बचना। ईश्वर का ध्यान मनोनिग्रह का सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान और मनोनिग्रह दोनों साथ साथ चलते हैं। भक्ति के अभ्यास के द्वारा ईश्वर के लिए अनुराग बढ़ता है और ईश्वर के प्रति वह अनुराग मन संयम की बाधाओं को दूर करने का आश्चर्यजनक काम करता है। ईश्वर के प्रति ये प्रेम ही मन के निग्रह में सबसे महत्वपूर्ण है।
1: चिंतन बंधु कार्यक्रम में अभी आपने सुना मनोनिग्रह का रहस्य, इस विषय पर आलेख। आलेख था डॉक्टर जे आर यादव का, वाचन था विजया भांबरी का। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है अनुराधा पौडवाल का, संगीत है सतीश भाटिया का।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। स्वर था अनुराधा पौडवाल का, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा गन्ने के प्रमुख कीट। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गाने सुनेगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7:00। सात बजकर 7:31 पर कार्यक्रम होगा ब्रज माधुरी। इसमें ब्रज वार्ता सुनेगा ब्रज लोक संस्कृत के संस्कृत में तुलसी। वार्ता करूंगी सुषमा सारस्वत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर। 9:00 कथा क्रम में कहानी सुनिएगा मन के हारे हार है मन के जीते जीत।

मन के जीते जीत इसमें कहानीकार हैं डॉक्टर किरण बाला। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर, विषय होगा समुद्री जीव जगत और हमारा भविष्य। आलेख और वाचन है डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव का। प्रातः 9:30 पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम याद है जरा जरा, वार्ताकार होंगे डॉक्टर नरेश मल्होत्रा और इनसे

मध्याह्न 12 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय होगा किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम सुनेगा 12:30 पर। कलाकार होंगे पन्ना लाल शर्मा और इनके साथी। वनिता लोक कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:15 पर। चर्चा होगी एकीकृत बाल सेवाओं की समुचित उपलब्धता इस विषय पर, और दूसरा विषय होगा शारीरिक स्वास्थ्य और पोषण। साथ ही सुनेगा स्वरचित कहानी 1000 रुपए की जिद या एक बाप का अकेलापन। कहानीकार होंगी पूर्णिमा वर्मा। फिल्म संगीत सुनेगा 1:45 पर। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित होगा 2:30 पर। शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर।

शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में बातचीत होगी सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन और दूसरा विषय होगा पुस्तकें जीवन का आधार। मार्गदर्शन के अंतर्गत जानिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर, जानकारी देंगे डॉक्टर आनंद त्रिपाठी। किसान वाणी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। चर्चा होगी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपाय इस विषय पर। साथ ही वार्ता सुनेगा प्रगति कृषक से फसल उत्पादन के अनुभव, वार्ताकार होंगे गेंदा लाल।

किसानवाणी कार्यक्रम में ही सुनेगा पशुओं के पोषक आहार, इस विषय पर आधारित कार्यक्रम। जानकारी देंगी डॉक्टर शालिनी वासवानी, इनसे बातचीत करेंगे दिलीप यादव। संध्या वंदन कार्यक्रम संध्या 6:45 पर, 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में देश हमारो, इसमें जानिएगा एलोरा की गुफाओं के बारे में, वार्ताकार होंगी ऋचा यादव। शाम सुहानी ये कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर।

रात्रि 10 बजे रूपक सुनिएगा अधिक मास में गोवर्धन परिक्रमा, चलो परिक्रमा दिया में। प्रस्तुति होगी मंजुलता तिवारी की और प्रस्तुति सहायक होंगे मोहित कुमार। रात्रि 10:30 पर उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुनेगा उस्ताद बाबू खां का ठुमरी और दादरा गायन।

0: मादा अंडे पत्ती की निचली सतहों पर देती है। इसकी जो सूढ़ियाँ हैं गन्ने के शिखर में छेद करके तनों में घुस जाती हैं और उन्हें भीतर ही भीतर खाती हैं। अगर इस कीट का आक्रमण कल्ले फूटने के कुछ समय बाद होता है तो क्षति ज़्यादा होती है। ऐसे पौधों को तोड़कर सूखने पर बदबू आती है। जब पौधा लगभग घुटने की अवस्था में है तब अंगोला कीट का आक्रमण होता है तो बर्धन कली समाप्त हो जाती है और सूढ़ी 3 से 4 गांठों तक घुस जाती है। इससे गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। ऐसे बीमार पौधों के चारों ओर से गांठों पर से ये शाखाएं फूटने लगती हैं जिससे देखने में पौधा झाड़ी नुमा लगता है और इससे जो क्षति का अनुमान है वो 25 से 40% तक आंका गया है। दूसरा कीट है तनावेदक कीट। ये कीट गर्मियों में अप्रैल मई जून में अधिक सक्रिय होता है। मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है जिससे सूढ़ियाँ निकल करके पहले पत्ती को खाती हैं फिर तनों में घुस करके अंदर ही अंदर खा करके 4 से 5 गांठों को बेकार कर देती हैं। गन्नों में हवा जाने के लिए कई जगह छिद्र भी हो जाते हैं। प्रभावित गन्नों में रेड रॉट नामक बीमारी भी लग जाती है और इससे क्षति करीब 20 से 25% तक आंकी गई है। एक तीसरा कीट है जड़ छेदक कीट। ये कीट गर्मी और बरसात दोनों में सक्रिय होता है। इसकी सूढ़ी जड़ के पास से गन्ने में छेद करके अंदर घुसती है जो जड़ को खा करके खोखला करती है। ये सूढ़ियाँ पेड़ी की फसल को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। शुरू शुरू में किसान भाई ये नहीं समझ पाते कि ये तना छेदक का आक्रमण है या जड़ छेदक का। अन्य भेदकों के आक्रमण से एक प्रकार की दुर्गंध आती है जबकि जड़ भेदक से ग्रसित पौधे से कोई बदबू नहीं आती। पायरेला कीट। इस कीट के चौड़ी जो शिशु होते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था गन्ने के प्रमुख कीट। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है गन्ने के प्रमुख कीट। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें विशेष रूप से 3-4 ऐसे कीट हैं जो गन्ने की फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक है अंगोला भेदक कीट, तना छिद्रक कीट, जड़ भेदक कीट पायरेला और दीमक। सबसे पहले हम लेते हैं अंगोला भेदक कीट को। अंगोला भेदक जो कीट है अप्रैल से अगस्त तक गन्ने पर देखा जाता है। इसकी

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत। गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, फिल्म का नाम था प्यासा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत आन फिल्म से, गाया है लता मंगेशकर ने।

पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप ले रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

हसरत जयपुरी के लिखे इस गाने को अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में। संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम था असली नकली। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मेरे सनम फिल्म से, आवाज़ है आशा भोसले की।

थी आशा भोसले की, और फिल्म का नाम था मेरे सनम। इस गाने के साथ ये भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
4: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि अब ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य धान के लिए 2,000

0: 441 रुपये प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4023 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2900 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2410 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8450 रुपये प्रति क्विंटल तथा मूंग के लिए 8780 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के एमएसपी बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने व कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
1: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो, बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने 12 मई की शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और उत्तरदायी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय एवं निदेशालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने, प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग तथा आवश्यकता आधारित विद्युत उपभोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
3: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से

0: कर लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। संशोधित दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने से 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सबसे ज्यादा मौतें भदोही जिले में हुई हैं, जहां 15 लोगों की जान चली गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतें बिजली गिरने, दीवार गिरने और धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि के कारण लोगों और वाहनों पर पेड़ गिरने से हुई है। कल राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे उखड़ने और पेड़ उखड़ जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत, कहा समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा यह निर्णय। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन बचत और अनावश्यक सोने की खरीद न करने के प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी ऊर्जा संरक्षण पर दिया जोर, कहा ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व है। और प्रदेश में आंधी पानी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत, प्रभावित लोगों की मदद करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: भैया, आज के यह कार्यक्रम में आपको सुनवाए रहे हैं ब्रज वार्ता। ब्रज लोक संस्कृति में तुलसी। वार्ताकार हैं सुषमा सारस्वत।
1: वृंदा विश्व पावनी कृष्ण जीवनी सुनरसा सुलमा शूलघ्री अथवा व्याधिन को नष्ट कर विवारी, जे सब नाम तुलसी जी के ही हैं। वनस्पति जगत में तुलसी मात्र एक पौधा के रूप में जानी जाए, परंतु भारत के सभी क्षेत्रन में और कहूँ तो ब्रज की लोक संस्कृति में तुलसी जी को बहुत महत्व है। ब्रज में तुलसी मात्र एक पौधा वनस्पति या बिरवा नाय मानो जाए। यहाँ तो विष्णुप्रिया तुलसी हरिप्रिया वृंदा को पूजन सेवन और आराधना करवे की परम पावनी महारानी के रूप में पूजो जाए। ब्रज के भक्तन में उपासकन में जिनमें भगवान कृष्ण और विष्णु आराध्य और श्रद्धेय हैं, उतनी ही तुलसी महारानी भी श्रद्धेय पूज्या और वंदनीय है। तुलसी को हिंदू संस्कृति में अत्यधिक धार्मिक महत्व है। जाके साथ साथ ही औषधि शास्त्र से भी तुलसी को अत्यंत गहरा संबंध है। विष्णु पुराण स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार तुलसी की उत्पत्ति की अनेक कथा प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार क्षीर सागर को मंथन करते समय ऐरावत हाथी कल्प वृक्ष चंद्रमा लक्ष्मी जी कौस्तुभ मणि अमृत कलश आदि अनेक वस्तुएं निकली। ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने लक्ष्मी और अमृत कलश भगवान विष्णु को अर्पित कर दिए। भगवान विष्णु अमृत कलश को लेके अति प्रसन्न भये और उनके आनंद अश्रु बा अमृत कलश में गिर पड़े, जिनसे तुलसी की उत्पत्ति भई और जाई वजह से तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है गई। पुराणन में तुलसी को अनेक प्रकार से वर्णन करो गयो है। पद्म पुराण में वर्णन है कि गंगा की तरह तुलसी भी त्रिलोक में पवित्र मानी गई है। ऐसा कहा गया है कि नर्मदा को दर्शन गंगा को स्नान और तुलसी पत्र को सेवन ये तीनों समान रूप से पवित्र कर देते हैं। ब्रज में तुलसी को महत्व बहुत अधिक है। परम पवित्र तुलसी की सुगंधित वायु जहाँ जहाँ पे पहुँचे है वहाँ को प्राणी मात्र पवित्र है जाए। हमारी संस्कृति में तुलसी जी को सेवन अनेक रूपन में मान्य भयो है। विष्णु रूपी शालग्राम की मूर्ति पे तुलसी चढ़ाई जाए। प्राय सभी धार्मिक ग्रंथन में वर्णन मिले कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, जा वजह से तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहो जाए। ब्रज लोक संस्कृति में यदि तुलसी की बात करी जाए तो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है कि बेने तुलसी पुष्प अथवा मंजरी सर्वाधिक प्रिय है। मंजरी न मिलवे पे तुलसी को पत्ता या शाखा अथवा जड़ जो भी मिले बाई ते बिन की यानी श्री कृष्ण की पूजा करी जाए तो भगवान श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न होवे हैं। अगर जे भी ना मिले तो जा जगह पे तुलसी को बिरवा रहे होए वहां की मट्टी यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक लेके भगवान की पूजा करो तो भगवान प्रसन्न होए। पुराणन में तो यहाँ तक कही गई है।

कि तुलसी पुष्प अर्थात मंजरी से यदि भगवान विष्णु की पूजा करी जाए तो जन्म मरण के चक्र से निश्चित रूप से मुक्ति मिल जावे है। पश्चिमी देशन में हूँ, कई प्रकार से इनको भोजन में बहुतायत से प्रयोग करो जाए। तुलसी को वहाँ पे होली वैसिल के नाम से जानो जाए। जाके अलावा तुलसी को बॉटनिकल नाम ओसिमम सेनेक्ट्रम है। वैसे तो तुलसी के 22 प्रकार माने गए हैं, परंतु मुख्यतः जे श्यामा और श्वेता अर्थात श्यामा और रामा दो नाम से जानी जाए। आयुर्वेद के अनुसार श्यामा तुलसी में कफनाशक गुण ज्यादा पायो जाए, जाई वजह से औषध के रूप में श्यामा तुलसी को विशेष प्रयोग करो जाए। जाके अलावा आयुर्वेद के अनुसार तुलसी को स्वाद में चरपरी, गुण में उष्ण, कृमि नाशक, वमन, श्वास, खांसी, ज्वर, पित्त और कफ दूर करवे बारी मानो जाए। तुलसी का उपयोग केवल आंतरिक ही नहीं बल्कि बाह्य उपचार में भी करो जाए। तुलसी के सेवन से फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग, दाद, खुजली और झाई, जाके अलावा बिच्छू और ततैया के काटवे पे यदि लेप कर लियो जाए तो बामे बहुत ज्यादा फायदा होवे है। नाकते खून आयवे पे तुलसी के रस में कपूर मिलाए के कछु बूंद नाक में यदि टपकाए दी जाए तो तुरंत लाभ मिल जाए। जाके अलावा तुलसी को सेवन विटामिन ए, बी और सी की पूर्ति करे है। तुलसी की गंध से मच्छर, खटमल, छछूदर और सांप आदि भाग जावे हैं। अगर फेफड़न में पानी भर जाए, सांस रुक के आवे तो तुलसी के पत्ता को आधा औंस रस अर्थात 15 ग्राम जो धीरे धीरे एक औंस अथवा 30 ग्राम तक बताया गया है, यदि दिन में दो बार सुबह और शाम भूखे पेट लेने से लाभ हो गए है। मेरे कहवे को तात्पर्य यह है कि ब्रज में तुलसी को मात्र धार्मिक या पूजन को ही महत्व न आए, अपितु तुलसी तो अनेक गुणन की भंडार है। जामे बहुत से औषधीय गुण भी पाए जाए, जाते जे सर्व पूज्य मानी जाए। तुलसी सेवन को समय प्रातः भूखे पेट ज्यादा उत्तम है। तुलसी के ताजे हरे पत्ता 15-20 पीस के बिन में 22 अनुपात में ताजा दही, गुड़ या शहद तीनों में एक मिलाए के सेवन करवे से विशेष लाभ पायो जाए। आधा घंटा तक कोई दूसरी चीज न खानी चाहिए। चरक के अनुसार तुलसी कबऊ दूध के साथ नाय लेनी चाहिए, जाते त्वचा का रोग हैवे को भय रहे। जहाँ तक कि तुलसी के नियमित सेवन से शराब, बीड़ी, सिगरेट जैसे व्यसन भी दूर है जाएं। और वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि तुलसी में टीबी मवाद बनाने वाले बैक्टीरिया को रोकवे की अद्भुत क्षमता है। भगवान कृष्ण प्रिया तुलसी को ब्रज संस्कृति में आंगन में स्थान दिया गया है। तुलसी को महारानी कहा गया है। कार्तिक माह में तुलसी को पूजन प्रातः कार्तिक स्नान करवे बारे जरूर करे हैं। तुलसी और शालिग्राम को एकादशी को ब्याह भी करो जाए, जे बहुत पुण्यदायक मानो गयो है। कोई समय था जब हिंदू परिवार में तुलसी को बिरवा आवश्यक मानो जातो, पर अब समय परिवर्तन के साथ जे स्थिति बहुत कम देखने को मिले है। श्रीमद् भागवत में तुलसी जी की महिमा श्री कृष्ण मुख से वो कही गई है। भागवत में ये कही गई है कि शंखचूर्ण एक आताताई है तो बाकी पत्नी तुलसी महासती और पतिव्रता नारी थी। एक बार भगवान कृष्ण शंखचूर्ण के बद के उपाय के लिए सती के सतीत्व को भंग करवे के लिए शंखचूर्ण को वेश धारण करके तुलसी के भवन में पहुंचे तो वहां पे अपने शयनागार में आए कृष्ण को तुलसी ने पहचान लियो और अपने सतीत्व को भंग करवे की नियत से आए कृष्ण को तुलसी ने श्राप दे दियो कि श्याम तुम्हारा हृदय पत्थर है, अतः आज से तुम पत्थर बन जाओ। तुलसी ने कही शिला रूप धारण करो।

0: अब से शालिग्राम हो, तुम बाहर से ही नहीं भीतर से भी श्याम हो। ऐसो कहके तुलसी बिलख बिलख के रोई। तब हरि बोले, तुमने तो मुझे पाने की कामना करी हती, और सुदामा हूं तुम्हें अपनावो चाहतो, अब तुम गंडकी के रूप में भारत में बहोगी, और वहां पे मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारे साथ सदैव रहूंगो। तुम्हारे पत्र के बिना मैं भोग नाय लगाऊंगो। कृष्ण ने कही कि तुलसी दल ले हाथ में, जो असत्य भाषण करें वह नर कुंभी पाक के युग युग तक सड़ते रहें। तुलसी को पूर्णिमा रविवार एकादशी को बिना स्नान करे, और अमावस्या के दिन नाय तोड़नी चाहिए। जा तुलसी के पत्र से बिक जाते हैं हरि स्वयं, बाकी महिमा हे मुने गान करें किस भांति हम। तुलसी महारानी सारे पाप समुदाय को नष्ट कर देती है, जाके स्पर्श कर बेते ही शरीर पवित्र है जाए, प्रणाम कर बेते सब रोग मिट जाए, जल से सींचे जावे पे यम की त्रास मिट जाए, और आरोपित किए जावे पे कृष्ण भक्ति प्रदान है जाए, भगवान के चरणन में चढ़ावे पे मोक्ष देती है। उस देवी तुलसी को हमारो बार बार प्रणाम है। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, छप्पन भोग धरे हर आगे, बिन तुलसा हर एक न मानी। ऐसी सकारात्मक सोच, ऐसी प्रथा, ऐसी वानगी ब्रज की लोक संस्कृति में तुलसी के महत्व को जानबो जरूरी है।
1: अभी आपने सुनी ब्रज वार्ता, ब्रज लोक संस्कृति में तुलसी। वार्ताकार थी सुषमा सारस्वत। और भैया आओ, अब आपको सुनवा में यह लोकगीत।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, मध्याह्न 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर, जिसमें आज का विषय होगा किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और

0: यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी।
1: एमएमटीपीए एलएनजी टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबूधाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों के उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने

0: राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र, समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच, कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि

0: भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़ाकर 2441 रुपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार, दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuangketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after

0: MLAs. The same newspaper also informs decision on Kerala CM will be announced today. Indian ships given priority pass in Strait of Hormuz, says Iran Deputy Foreign Minister, writes the Pioneer. US President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The Asian Age carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on three-day visit to hold Xi talk on Iran war and trade. The Times of India writes, deal maker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu in its editorial title, Testing Troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and NewsOneAir app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर. अगला कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद.
3: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान. जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान.
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते. टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते. जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार.
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है. आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं.
3: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान.
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है. स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 14 मई यानी कि आज मध्याह्न 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण. इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा. आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं. मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं. ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण. श्रोताओं, यदि आप किसी भी प्रकार के किडनी संबंधी समस्या जैसे किडनी में बार बार संक्रमण यूटीआई, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पीकेडी, किडनी में पथरी या मूत्र मार्ग में रुकावट, मधुमेह डायबिटीज़,

उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर आदि के समाधान के लिए पूछिए सवाल। डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिम्स हॉस्पिटल, मथुरा। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 14 मई यानी कि आज, समय दिन में 12 बजे। सूचना समाप्त हुई। और आइए अब आपको सुनाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

सुई धागा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना पापोन और रोंकिणी गुप्ता की आवाजों में। लिखा था वरुण ग्रोवर ने और धुन बनाई थी अनु मलिक ने।

अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब शाबरी और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत। लिखा था इरशाद कामिल ने और धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

क्रिमिनल फिनलूप का ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत को लिखा था इंदिवर ने और धुन बनाई थी एम एम क्रीम ने।

0: अभी आप सुन रहे थे दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का ये गीत गाया था अनुराधा पौडवाल और साथियों ने। गीत को लिखा था समीर ने, धुन बनाई थी नदीम शमर ने।
1: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
2: दूसरा कोई मैच है क्या?
3: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
4: पर बैंकिंग में नहीं।
5: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
4: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फन्ना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। लिखा था प्रसून जोशी ने, धुन बनाई थी जतिन ललित ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9 बजे हैं और आइए आपको सुनवाते हैं कथा क्रम में कहानी मन के हारे हार है मन के जीते जीत। कहानीकार हैं डॉक्टर किरण बाला।
1: यह नियति थी या मह संयोग पता नहीं, किंतु उस दिन पुराने समाचार पत्रों को देखना, उलटना पलटना मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। जब एक कॉलम पर मेरी दृष्टि पड़ी जिसमें अमृता प्रीतम जी की एक मर्म स्पर्शी रचना प्रकाशित हुई थी, उन्हें सादर नमन करते हुए उनकी रचना के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। खेल में दो पर्चियां थीं, एक पर लिखा था सुनो, दूसरी पर लिखा था कहो। उसके हाथ लगती रही वही पर्ची जिस पर लिखा था सुनो। वह सुनती रही, सुने उपदेश, सुनी बंदिशें, सुनी वर्जनाएं, जो उसके लिए थीं वह जानती थी कहना। किंतु राजा ने कहा जहर पियो, वह मीरा हो गई। ऋषि ने कहा पत्थर बनो, वह अहिल्या हो गई। प्रभु ने कहा निकल जाओ, वह सीता हो गई। चिता से निकली चीख किन्हीं कानों ने सुनी नहीं, वह सती हो गई। घुटती रही उसकी फरियाद, अटके रहे उसके शब्द, सिले रहे उसके होंठ, रुंधा रहा उसका गला। उसके हाथ कभी नहीं लगी वह पर्ची जिस पर लिखा था कहो। एक लंबे अंतराल के बाद वर्तमान संदर्भ में आज इन पंक्तियों ने मेरे अंतर मन में विलुप्त नारी संवेदना, नारी शक्ति के प्रति एक ऐसी कसक उत्पन्न की जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया और मेरी लेखनी लिखने को विवश हो गई। 20वीं सदी हो या 21वीं सदी, महिलाएं कुछ शक्ति संपन्न होते हुए भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती। काल के हर क्षण को आत्मचिंतन की अपेक्षा होती है। मेरा ऐसा मानना है कि परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, समाज में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी, किंतु सुधार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने को समयानुकूल परिष्कृत परिमार्जित करने की प्रवृत्ति ने मानव मन को मननशील और चिंतनशील बना दिया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो, अर्थात मानव मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मेरे अतीत के पन्ने कुछ इसी तरह की कहानी बयां करते हैं। बात करीब एक दशक पुरानी है। गांव के एक सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। सेवानिवृत्ति में कुछ ही समय शेष था, भविष्य को लेकर चिंतित थी। वैसे भी एकल जीवन में व्यस्तता और क्रियाशीलता जरूरी है, अन्यथा खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ करना है, क्या, कब और कैसे, ये प्रश्न चिन्ह। इसी सोच में घर लौट रही थी कि सामने एक छोटी बच्ची को सड़क पर बिलखते हुए देखा। खून बह रहा था, दुर्घटना की शिकार वह बच्ची। समाज की विद्रूपता, निर्लज्जता का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। मैं उस बच्ची को पास के क्लिनिक पर ले गई। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। सिर से लगातार खून बह रहा था, खून की कमी, खून चढ़ाना था। किस्मत से मेरा ब्लड ग्रुप उससे मैच हो गया, बच्ची की जान बच गई। हाथ पर प्लास्टर बंधा, पैर का घाव, अन्य छोटी मोटी चोटें तो डॉक्टर्स ने कहा 24 घंटे में बच्ची को होश आएगा। मैं वहीं बैठी रही, सोच रही थी इसकी पहचान मालूम करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके माता पिता को इनके सुपुर्द कर सकूं। लेकिन कहीं से भी कोई खुला सुराग नहीं मिला।

अचानक अस्पताल का एक कर्मचारी बोला, मैडम इस बच्ची को मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे देखा है, रोज मुझे वहीं मिलती है। ये सुनकर मेरा कलेजा हिल गया। विश्वास हो गया कि या तो ये गलत हाथों में फंस गई या इसका कोई परिवारिकजन नहीं है। कहते हैं ना कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। मेरा विचलित मन अतीत की यादों में खो गया। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था। एकल जीवन की संघर्षमय चुनौतियों को मैंने सहा था। सच ही कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक अनजान व्यक्ति ने मुझे दुर्घटना में बचाया और पिता की तरह प्यार दिया। उनके साथ 4 या 5 बरस रही। अवस्था कहूँ या अस्वस्थता, काका मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन उनके दिए संस्कार, उनकी सीख आज भी मुझे ऊर्जा देती है, एक नई चेतना देती है। सेवा भाव, परोपकार, साहस, सत्कर्म, मन की पवित्रता, इन्हें कभी मत छोड़ना बेटे। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। बच्ची के पास बैठे बैठे मेरी चिंता चिंतन में बदल गई। इस बच्ची को संरक्षण देना ही अब काका को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुलिस को सूचित किया, कानूनी कार्यवाही की। बच्ची के बयानों के बाद बच्ची को अपने साथ घर ले आई। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य था अब इस बच्ची का उज्ज्वल भविष्य, जिसे मैंने गौरी नाम दिया। उम्र 7 वर्ष, उसके अतीत के विषय में मैं कुछ नहीं जानती। फिर भी हम दोनों में एक मन चाह ऐसा रिश्ता जुड़ा कि वह मुझे दीदी माँ कहने लगी। देखते ही देखते 16 बरस की हो गई। मेरी सेवानिवृत्ति का समय भी पास आ गया। विदाई समारोह हुआ। मेरे अच्छे कार्यों को, 100% परीक्षा फल को देखते हुए मुझे पुनः नौकरी करने के लिए आमंत्रण दिया गया सरकार की तरफ से। काम तो करना चाहती थी, किंतु इस तरह नहीं। मैं चाहती थी कि मेरे पद पर किसी ज़रूरतमंद महिला की नियुक्ति हो। मुझे स्कूल में अतिरिक्त 2 घंटे कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए दिए जाएं, अवैतनिक रूप से। इस मेरे सुझाव से विशेष रूप से बच्चे बहुत खुश थे। अधिकारियों ने मेरी सराहना की। इस तरह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ। हर कक्षा के कमज़ोर बच्चों का ग्रुप बनाया, उन्हें पढ़ाने लगी। उसी तरह नियमित स्कूल जाना, पढ़ाना, ये मेरा क्रम बना रहा। मेरी गौरी ने इंटर में अपने प्रदेश में टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली, मैंने उसे विदेश पढ़ने भेज दिया। इसी दौरान एक वाकया ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से एक नई दिशा प्रदान की। बच्चों के फॉर्म भरते समय कुछ माताएं अंगूठा लगा रही थीं हस्ताक्षर के स्थान पर, मतलब गांव में अभी भी निरक्षरता बाकी है। 20वीं सदी में भी महिलाओं की प्रतिभा को नकारना शायद पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता रही, जिसे दूर करना जरूरी था। मैंने निश्चय किया कि मैं इन महिलाओं को इनकी क्षमता और इनके विश्वास के बल पर आत्मनिर्भर बनाकर रहूंगी। सरपंच जी से मिलकर मैंने उन्हें अपनी योजना बताई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बेटी, मैं तुम्हारे इस काम में मदद करूंगा, पर थोड़ा कठिन तो है पुरुषों को राजी करना। तो मैंने कहा, काका कठिन तो है किंतु असंभव नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द में आई एम पॉसिबल छिपा हुआ है। उन्हें मेरा ये सूत्र वाक्य बहुत जच गया और बस इसी के सहारे काका ने अपना काम शुरू कर दिया। इधर मैं स्वयं संध्या को हर घर घूमने निकल जाती, गपशप करती, स्त्रियों से बातें करती और जानने का प्रयास करती, क्योंकि उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। कई दिनों तक ये सिलसिला मेरा जारी रहा। बातों ही बातों में मैंने एक दिन उनको अपना मकसद बताया। असुरक्षा, गरीबी, झगड़े, पति की प्रताड़ना, अस्वस्थता से बचने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। मेरी इस मुहिम में मेरे स्कूल के शिक्षक भी जुड़ गए। सरपंच काका ने अपने घर का एक बहुत बड़ा अहाता हमें दे दिया और अपने घर की स्त्रियों को सबसे पहले उन्होंने पढ़ाने भेजा। 3 या 6 बजे का समय सायंकाल, शुरू में 6-7 महिला आईं, किंतु बाद में संख्या बढ़ती गई। हमने सबसे पहले उन्हें वो सामान्य बातें बताईं जो जीवन में बहुत जरूरी हैं, जैसे साफ सफाई, खाना पीना, बीमारी, आत्मसम्मान, स्त्री शक्ति, आत्मनिर्भरता, बच्चों का लालन पालन, संस्कार आदि महत्वपूर्ण विषयों को छोटी छोटी कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाना शुरू किया। उनसे सवाल जवाब किए, उनके मन की बात जानी। उनकी रुचि धीरे धीरे इसमें बढ़ने लगी। प्रतिदिन नए प्रश्नों का हल उनको मिलता। उनकी खुशी उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। पढ़ने के प्रति उनकी जिज्ञासा देखकर उनकी किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन आदि जरूरी सभी सामग्री उन्हें वितरित की गई। महिलाओं की सीखने की क्षमता, उनकी स्मरण शक्ति काबिले तारीफ थी। पहाड़े, गिनती, अक्षर ज्ञान, वाक्य बनाना, पढ़ना लिखना,

0: आवश्यक प्रारंभिक ज्ञान। मुझे आश्चर्य हुआ कि समय से पहले उन्होंने सब कुछ सीख लिया। कुछ महिलाएं तो प्राइमरी ज्ञान पहले से ही रखती थीं, बस उस ज्ञान का बाहर आना जरूरी था। प्रशंसा और प्रेरणा से उनका हौसला बढ़ा, अपने उज्ज्वल भविष्य के सपने देखने लगी। ज्ञान, क्षमता, बुद्धि, विवेक, साहस, कौशल, इन सबको बस तराशने की आवश्यकता थी। समय कलिकाल के पंख लगाकर उड़ता ही जा रहा था। एक छोटा सा आंगन आज एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के रूप में परिणित हो चुका था। अब समय था उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, सरकारी योजनाओं के तहत सरकारी अनुदान राशि दिलाना। हमारा प्रयास सफल हुआ। जिन महिलाओं की जिन घरेलू कार्यों में रुचि थी, उनके अनुरूप उन्हें ट्रेनिंग दिलाई। कौशल विकास योजना के अंतर्गत सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पाक कला, पत्तल बनाना, पुराने कपड़ों से बैग बनाना, पर्स बनाना, चटाई बुनना, मसाले तैयार करना, अचार मुरब्बा तैयार करना और खिलौने बनाना इत्यादि। प्रशिक्षित महिलाओं ने अपने अपने ग्रुप बनाए, काम शुरू किया। धीरे धीरे काम इतना बढ़ गया कि मांग के अनुरूप वह माल नहीं दे पा रही थी। अब सबका अपना अपना काम था, किसी की फैक्ट्री, किसी का रेस्टोरेंट, किसी की शॉप और किसी का शोरूम। उनका रहन सहन, खान पान सब बदल गया। आत्मविश्वास तो देखने लायक था। वाक्पटुता हो, हिसाब किताब हो, अच्छे अच्छे उनसे प्रभावित हो जाते। सरपंच काका, गांव के सभी पुरुष भाई बहुत प्रसन्न थे। आमदनी का जरिया भी बढ़ा और भविष्य भी संवरा। काका ने कहा, हमें एक प्रदर्शनी लगानी चाहिए। प्रदर्शनी में दूर गांव और शहरों से लोग आएंगे तो हमारा काम और अधिक बढ़ेगा। प्रदर्शनी का सुझाव सफलता की ऊंचाइयों तक हमें ले गया। सरकार की तरफ से आई सूचना के तहत महिलाओं को एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। मतलब जैसे कुछ विषय थे जिन पर 5-5 मिनट बोलना था, जैसे नारी सशक्तिकरण, धर्म विज्ञान, भारतीय संस्कृति और संस्कार, आत्मनिर्भरता, स्त्री शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, विश्व बंधुत्व की भावना आदि। स्त्री और पुरुषों की उसमें बराबर की भागीदारी थी। एक मंचीय कार्यक्रम का हमने आयोजन किया जिसमें सरकारी स्कूल के प्रधान शिक्षक, गांव के सरपंच, प्रधान आदि लोगों को सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागी पुरुष तथा महिलाओं ने बहुत अच्छा बोला अपने अपने विषय पर, किंतु कुछ अति महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख आपके सामने करना चाहते हैं। सुधा सिंह, हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना जैसे सूत्र वाक्यों का उल्लेख है, जिनका मतलब होता है आपसी प्यार, अपनापन, भाईचारा, निस्वार्थ सेवा भाव और निष्काम कर्म, वो भी जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर। महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ रही हैं। हमारी सरकार ने 33% आरक्षण देकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर हमें बहुत अधिक गौरवान्वित किया है। नारी शक्ति से प्रकृति में संतुलन बनता है। जल, थल, नभ, हर दिशा में स्त्रियों का आज वर्चस्व है। हम संकल्प लेती हैं कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान देंगी। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी कृत संकल्प हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्र तत्र देवता, इस वाणी को हम सभी महिलाएं मिलकर चरितार्थ करेंगे। मैं यहाँ एक बात पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। विज्ञान जहाँ प्रकृति का उपासक है, तो धर्म ईश्वर का उपासक है। एकांगी ज्ञान, एकांगी समृद्धि अपूर्ण है। प्रकृति की उपासना में यदि धर्म की उपासना समाहित हो जाए तो मानव कल्याण और फिर विश्व कल्याण अवश्यम भी है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 पर भारी सफलता प्राप्त की और अब आदित्य L1 अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा है। यह सब प्रकृति संरक्षण और आत्मसंकल्प की भावना से ही संभव हो सका है, क्योंकि कर्म के संपादन में मन की आंतरिक शक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है और संकल्प से ही सिद्धि का मार्ग प्रशस्त भी होता है। वैज्ञानिकों ने प्रथम प्रयास में असफल होने के बाद भी नई ऊर्जा से, नई मन शक्ति से काम शुरू किया और उन्होंने सफलता अर्जित की। उनको बधाई। प्रबल प्रबंधन वृक्षों को उखाड़ सकता है पर चट्टान को हिला भी नहीं सकता। दुख सुख सब कह परत हैं पौरुष तजह नमीत, दुख सुख सब कह परत हैं पौरुष तजह नमीत, मन के हरे हार है मन के जीते जीत। धन्यवाद।
1: कथा क्रम में अभी आपने कहानी सुनी, मन के हारे हार है मन के जीते जीत।

गंदगी से प्रदूषण फैलता है, इसलिए अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए कुशीनगर और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक पांडे का।
1: भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम म्यांमार बौद्ध विहार में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित भारत में म्यांमार के राजदूत ऊ जाव ऊ तथा अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही विश्व में शांति संभव है। भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का संदेश दिया है।
2: भगवान तथागत बुद्ध का सर्वकालिक महत्व है, आज भी है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहेगा। और संसार के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने संसार को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है, हमने शांति दिया है।
1: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में विभिन्न बौद्ध विहारों के बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय लोगों ने आकर्षक शोभा यात्रा निकाली, जो नगर का परिभ्रमण कर माथा कुंवर स्तूप पर आकर संपन्न हुई। जनपद कुशीनगर में नगर पंचायत फाजिल नगर के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु मतदान एवं मतगणना भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गयी। अध्यक्ष पद के लिए हुए इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सुनीता शाही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अवधेश सिंह को 713 मतों से पराजित किया। यह सीट उनके पति शत्रुमर्दन प्रताप शाही के निधन के कारण रिक्त हुई थी, जिस पर भाजपा ने उनकी पत्नी सुनीता शाही को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। कुशीनगर जिले में मतगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया विगत 7 मई से शुरू हो गई है, जो 21 मई 2026 तक चलेगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें तथा अपने परिवार, पड़ोस एवं परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही प्रगणक एवं जनगणना कर्मियों का सम्मान करते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
3: पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, जिसमें आप सभी की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और जनसूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 7 मई 2026 से लेकर 21 मई 2026 तक संचालित की जाएगी। मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें।
1: कुशीनगर जिले के पूर्व विधायक डॉक्टर वीके मिश्र का विगत 6 मई को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय मिश्र कुशीनगर जिले की पडरौना विधानसभा सीट से सन 1980 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। बाद में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पडरौना के खिड़किया शमशान घाट पर किया गया, जहां भारी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
0: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं।

0: गोरखपुर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
1: सार्वजनिक सड़क परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर विशेष जोर दे रही है। शहर के अंदर एक सीमित दूरी तक के लिए ई बसों के संचालन की कामयाबी के बाद अब उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम यूपी रोडवेज ने मध्यम और लंबी दूरी के लिए ई बसों के संचालन की कार्य योजना बनाई है। इस कार्य योजना के तहत गोरखपुर के दो प्रमुख स्टेशनों से 20 नई इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या, बनारस, सुनौली सहित अलग अलग महत्वपूर्ण मार्गों पर दौड़ेगी। रोडवेज ने गोरखपुर से विभिन्न रूटों के लिए ई बसों का ट्रायल कर दिया है। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार 9 बसें वाराणसी और 3 बसें अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस के संचालन के लिए राप्ती नगर में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल के बाद अब रोडवेज अगले 10 दिनों में बसों के विधिवत संचालन की समय सारणी भी जारी कर देगा। ईंधन की बचत होने के कारण परिवहन निगम इसका लाभ यात्रियों को कम किराए के रूप में देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने 2-लेन ब्रिज का लोकार्पण फीता काटकर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है। 2017 के बाद गोरखपुर में विकास की विस्तृत श्रृंखला तैयार हुई है। विकास से बढ़ी सुविधाओं का लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता रहे, इसके लिए नागरिकों को भी विकास कार्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी होगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में 50,000 से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर के गीडा में उद्योगों के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है। गोरखपुर में चारों ओर 4-लेन 6-लेन की कनेक्टिविटी है। यहाँ एम्स बन गया है। खाद कारखाना और पिपराइच में चीनी मिल फिर से चल रही है। उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, आयुष विश्वविद्यालय, चिड़ियाघर, बेहतरीन पर्यटन स्थल रामगढ़ताल, कई होटल सहित अनेक सुविधाओं का यहाँ विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि वाटर बॉडी पर 2-लेन ब्रिज बनने से इस समूचे क्षेत्र में इंटरनल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। सीएम ने जीडीए के अफसरों से कहा कि वाटर बॉडी को रामगढ़ताल के समकक्ष जोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने स्वच्छता और सुंदरता को लेकर मोहल्ले स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
2: गीडा में जो उद्योग लगे हैं उन उद्योगों के माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार की सुविधा अकेले गीडा में प्राप्त हुई है। ये गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्राप्त हुआ है। फर्टिलाइजर अलग है, एम्स अलग है, पिपराइच की चीनी मिल अलग है, आयुष विश्वविद्यालय अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ अच्छे अच्छे होटल खुल रहे हैं, उन होटलों में अलग है। हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया हुआ है।
1: पूरी दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाले योग गुरु परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी की जयंती 10 मई रविवार को उनके अनुयायियों की ओर से धूमधाम से मनाई गई। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र नगर स्थित ध्यान केंद्र पर किया गया। अनुयायियों ने सबसे पहले गुरु के भजन गाए और फिर पुष्पांजलि आरती कर गुरु को याद किया। गुरु युक्तेश्वर गिरी से लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान पूरा परिसर गुरु की भक्ति में सराबोर दिखाई दिया। गोरखपुर जिले में ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगल 12 मई को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के बेतिया हाता मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तारामंडल स्थित बालाजी मंदिर के साथ विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़े ही आस्था भाव के साथ बजरंगबली का प्रसाद ग्रहण किया।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 14 मई यानी कि आज दिन 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल।

0: आप हमारे टेलीफोन नंबर 253-01-35 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण। श्रोताओं, यदि आप किसी भी प्रकार की किडनी संबंधी समस्या जैसे किडनी में बार बार संक्रमण, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, किडनी में पथरी या मूत्र मार्ग में रुकावट, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि के समाधान के लिए पूछे सवाल, डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल, मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 14 मई यानी कि आज, और समय होगा मध्याह्न 12 बजे का। सूचना समाप्त हुई। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम आबोहवा। विषय है समुद्री जीव जगत और हमारा भविष्य। आलेख और वाचन है डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव का।
1: पृथ्वी पर हर जगह पर जो भी सजीव या निर्जीव है वो सब एक खाद्य श्रृंखला या हम कहें कि खाद्य चेन के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि समुद्र में कछुआ मरा और वो कछुए के मारने की जिम्मेदारी वो आप या हम हैं, तो आप कहेंगे हमारा क्या मतलब है। लेकिन अगर आप एक क्षण के लिए सोचें तो हम बाजार गए, हमने कोई भी खाद्य सामग्री खरीदी और हमने उसको प्लास्टिक की थैली में लिया, क्योंकि हम प्लास्टिक का जो है उपयोग बहुत आसानी से करते हैं बिना ये सोचे कि वो पर्यावरण को कितना हानि पहुंचा रही है। बल्कि हम जो है दुकानदार से थैली मांगते हैं हमारी सुविधा को देखते हुए। आपने और हमने कोई चीज ली और हमने उस थैली में से सामान को निकाल के थैली को हवा में फेंक दिया करके बाहर कचरे के साथ। अब ये जो कचरे, जो प्लास्टिक की थैली जो कि हमने कचरे के साथ फेंकी है, ये हमारी घर की नालियों से होती हुई जो है हमारी जो गांव या शहर है उसकी नदी में या तालाब में पहुंचती है और वहां नदी के माध्यम से ये होती हुई समुद्र में पहुंचती है। समुद्र में जब ये थैली पहुंची नदी के माध्यम से तो रास्ते में इसमें अलग अलग तरह की चीजें जुड़ गई और उसने एक अजीब सा रूप ले लिया उस पॉलीथिन की थैली ने और उसके चारों तरफ कीचड़ या इस तरह की बहुत सारी चीजें लग गई, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा लगने लगा कि जब वो समुद्र में पहुंची तो कछुए ने उसको खाद्य पदार्थ समझ के खा लिया। जैसे ही कछुए ने उसको खाया प्लास्टिक को थैली को, तो उस धीरे धीरे उसके श्वसन तंत्र पर उसका असर होने लगा और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम और आप भी समुद्र में होने वाली किसी भी घटना का जो है घटना से हम जुड़े हुए हैं, और अगर किसी सजीव को उसमें नुकसान पहुंचता है तो निश्चित रूप से हम या आप या मानव जगत कहीं ना कहीं से जो है उससे जुड़ा हुआ है। समुद्र में बहुत तरह के जीव जंतु हैं, स्पेशली अगर या मुख्य रूप से अगर हम बात करें, अधिकांश जनसंख्या है वो अपने भोजन के लिए समुद्री जीवों पर निर्भर है, क्योंकि हम और आपने जो इतना तेजी से भूमि का उपयोग किया है कि कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे सीमित होती जा रही है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है हर जगह पर। तो जब कृषि योग्य भूमि जो है सीमित हो जाएगी तो निश्चित रूप से कृषि का उत्पादन भी घटता है, जो हमें जो है भोजन के लिए दूसरी चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। हम में से कई लोग जो है मछली को अपना दैनिक आहार मानते हैं, तो मछली का उत्पादन समुद्र में जो है एक सामान्य जीवन श्रृंखला के अंतर्गत होता रहता है, लेकिन जब हम जनसंख्या बढ़ गई तो निश्चित रूप से खाद्य पदार्थ की डिमांड भी बढ़ गई। आजकल वर्तमान में जो है हमारे समुद्र एक कचरा घर बन गए हैं। जो बड़े देश है उनका ई वेस्ट, स्पेशली जो कंप्यूटर है, मोबाइल्स है, इनके जो वेस्ट होते हैं वो डंपिंग यार्ड समुद्र में डाल दिए जाते हैं और ये सोचे कि उनमें काम में आने वाले जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो इन समुद्री जीव जंतुओं को कितनी हानि पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारे नदी नाले हैं वो सीधे जाके, जैसे गंगा नदी है या यमुना नदी, क्योंकि वो इतनी प्रदूषित हो गई है, जब ये नदियां समुद्र में फैलती हैं तो अपने साथ असंख्य प्रकार के सीवरेज युक्त कीटाणु या बैक्टीरिया समुद्र में पहुंचाती हैं और वहां पर ये समुद्र की सतह को प्रदूषित करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर शैवालों की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती है और पूरी की पूरी सतह पर डायटम शैवाल का एक आवरण चढ़ जाता है, जिसकी वजह से समुद्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं इन समुद्री जीव जंतुओं को बचाने के लिए और क्यों बचाएं? बात यह आती है कि जब हमारे यहाँ समुद्र नहीं है तो हम क्यों बचाएं? कारण है हमारे पास कि हम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम सब एक खाद्य

0: श्रृंखला के द्वारा जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब्बर समुद्री जीव जंतुओं के माध्यम से कोई उनके रेडियो एक्टिव पदार्थ उनमें पहुंचते हैं, तो इन समुद्री जीव जंतुओं को जब हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में भी पहुंचकर कैंसर या इस तरह की अन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। तो अगर हम अपने स्वास्थ्य को बचाना चाहते हैं, अपना सुखद जीवन बनाना चाहते हैं, पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, पृथ्वी की खाद्य श्रृंखला को सुचारित चलाना चाहते हैं, तो हमें और आपको इन समुद्री जीव जंतुओं को बचाने की दिशा में प्रयास करना होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा, विषय था समुद्री जीव जगत और हमारा भविष्य। आलेख और वचन था डॉक्टर नीरजा श्रीवास्तव का।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:30 होने को हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं विशेष श्रृंखला कार्यक्रम याद है जरा जरा आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष में। वार्ताकार हैं डॉक्टर नरेश मल्होत्रा और इनसे बातचीत कर रहे हैं OP सिंह।
1: श्रोताओ नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, सूचना, मनोरंजन और जानकारी यानी शिक्षा से लेकर के आपके मनोरंजन तक आकाशवाणी ने अपने इस 90 साल के सफ़र में बहुत कुछ जन सामान्य को दिया है। आज भी हम उस काम में लगे हुए हैं, लेकिन इस 90 साल के दौर में हमारे कुछ ऐसे साथी जिन्होंने इस दौर को न सिर्फ देखा बल्कि जिया भी, और इस जो दायित्व था आकाशवाणी का उसको निभाने में अपनी भूमिकाएं भी निभाई। उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं श्री नरेश कुमार मल्होत्रा साहब। आप ADP से रिटायर्ड हुए यानी सहायक निदेशक, म्यूजिक के कलाकार रहे, टॉप ग्रेड कलाकार, और कंपोजिंग का भी काम किया। बहुत सारी विधाओं में उन्होंने आपकी भी सेवा की, संस्था की भी सेवा की, और इस रूप में उनके कुछ अनुभव, कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव हैं जिनको सुनकर के मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मल्होत्रा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: नमस्कार। सब श्रोताओं का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये मेरा अपना संस्थान है तो इसलिए एक तरीके से मैं आपसे डायरेक्ट रूबरू हूं।
1: जी जी जी,
2: है कि नहीं? जी। तो जो सच्चाई वाली बात यह है कि रेडियो आकाशवाणी में जब आई थिंक 5वीं या 6th क्लास में था तो एक छोटा सा रेडियो हमारे घर, उस समय मेरे ख्याल ज़्यादातर रेडियो जापान के रहते थे, पैनासोनिक कंपनी का एक रेडियो था मेरे पास, तो उसका एक बार गिरने से शीशा भी टूट गया, वो भी हमने चेप चुप के उसको थ्रू कर लिया। तो रोज रात को बिना नागा, क्योंकि उसमें जो एक परंपरा थी छतों पे सोने की, सारा परिवार इकट्ठा सोया है, पिताजी माताजी भाई बहन जो भी है, एक लाइन लगा के बड़ा पंखा चल रहा है। रात को 10:30 से 11 बजे का आइटम मैं रोज सुनता था, 5वीं क्लास की बात बता रहा हूँ। तो एक दिन पंडित भीमसेन जोशी जी का राग दुर्गा सुन रहे थे, तू सुर ताल दे, ये उसके बोल थे, झप ताल की बंदिश है, बहुत खूबसूरत गाया उन्होंने। तो इसका अंतरा मेरे को समझ नहीं आता था, तो मेरे में पर ये एक ग्राह्य तत्व ऐसा था कि मैं जो चीज़ एक बार सुनता था उसको याद कर लेता था। ये बचपन से मेरे पे ठाकुर जी की कृपा थी। तो मैं गा रहा था तो मेरे पिताजी कहते तू इसका अंतरा क्यों नहीं गाता है? मैं कहा पिताजी अंतरा समझ नहीं आया मेरे को। क्यों समझ नहीं आया? लिया मैं बताता हूँ। तो बहरहाल वो मैंने उनको शब्द बताया, नहीं ये शब्द तू गलत गा रहा है, कोई नहीं, वो तो हर 7वें 8वें दिन बजता है, आकाशवाणी रोहतक से और दिल्ली से दोनों आता था, तो आकाशवाणी रोहतक से आई थिंक मैंने सुना रहा होगा या दिल्ली से जा, वो रेगुलर फिर 10-12 दिन में आ गया, अब तू उठ के बैठ जा, मैं बता रहा हूँ 10:30 बजे। तो पिताजी ने 1 सेकंड में उसको ठीक कर दिया। तो ये जो एक रेडियो की मेरी लगन थी तो मेरे को बहुत कमाल की लगती थी कि यार ये अच्छा है, वहाँ जाते हैं रिकॉर्ड करते हैं आवाज़ को, फिर ऐसे बजता है पूरे इंडिया में। हमारे यहाँ आकाशवाणी बड़ौदा भी लगता था उसमें, मैं जब छोटा था, जींद की बात बता रहा हूँ, हरियाणा के अपने घर,
1: आप जींद के रहने वाले?
2: हाँ, जींद के रहने वाले। तो बड़ौदा लगता था, बड़ौदा बड़ा स्टेशन था, और दिल्ली का तो मैं 8:15 बजे का आइटम रोज 8:10 हो गया था बाद में, और 11:05, 11:30 रात को फिर ऐसे 10 बजे या राष्ट्रीय कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम शनिवार को, संडे का तो बाद में जुड़ा काफ़ी बाद में। तो

0: रेगुलर सुनता था मैं, एक आधा दिन कोई मिस हो गया या कहीं ऐसा, क्योंकि स्कूल के बच्चे थे उसमें कोई ऐसा कहीं जाना आना होता नहीं था। तो ये मेरा जो बैकग्राउंड मेरे को आकाशवाणी के प्रति जो मेरा लगाव था आपसे कहिए, या जो मेरे को आकाशवाणी के प्रति वो उस डब्बे के अंदर जो आवाज़ आती थी वो मेरा एक आकर्षण,
1: वो एक आकर्षण था, प्रेरणा थी कि आवाज़ कैसे आती है।
0: अच्छा फिर क्या हुआ, मेरे पिताजी एक बार गए बम्बई, मैंने उनको कहा, मैं कहा पिताजी वो जो एक वो ऐसा रिकॉर्ड करने वाले आते हैं, एक वो अगर टेप रिकॉर्डर ऐसा मिल जाएगा तो मैं उसको रिकॉर्ड करके दोबारा सुन लूँगा। तो लकली मेरे पिताजी दोबारा गए बम्बई, एक पैनासोनिक का रेडियो लाए, बहुत खूबसूरत, एकदम चमचमाता हुआ, तो मेरे लिए तो खुशी का पारावार नहीं था। और 10 कैसेट भी लाए खरीद के, उसमें वो बक्स जो है 10 का ही आता था, वो एक तो खुली भी मिल जाती थी, मेरे को अच्छे से याद है, एक दो बार जरूरत पड़ी मैं खुली ले आया बाद में। तो इस तरीके से मेरा धीरे धीरे लगाव बढ़ा। फिर मैं जब जिन दिनों में कॉलेज में चला गया, हाँ ड्यूरिंग मेरे स्कूल टाइम मेरे को 3-4 बार जो राष्ट्रीय फेलोशिप स्टूडेंट्स की थी वो मिली है, और विज्ञान भवन आज के दिन तो सारे जो नेशनल लेवल के जो भी अवार्ड सेरेमनी होते हैं वहीं होती हैं। मैं जब 7वीं क्लास में था तो फर्स्ट टाइम जब मेरा उसके लिए सिलेक्शन हुआ, सामने विदुषी शरण रानी जी बैठी थी, आहा इतना सुंदर चेहरा, मैं आज भी उनको देखता हूँ। मैं मेरा छोटा भाई और मेरे पिताजी लेके गए थे मेरे को।
1: तो आपके पिताजी भी म्यूजिक से दखल रखते थे?
0: दखल इन द सेंस मेरे पिताजी भजन गाते थे, जो सच्चाई वाली बात है, भजन की परंपरा मेरे घराने में ही है। मेरे बाबा जी बहुत अच्छे भजन गाए थे, उनको इतने भजन याद थे कि हमें शर्म आती थी। मेरे पिताजी का रेंज बहुत अच्छा था, स्केल वो आई थिंक डी शार्प से ऊपर से गाते थे, तीसरे काले से। तो शरण रानी जी, विदुषी शरण रानी सामने हमारा इंटरव्यू, हमें पता नहीं था कौन था, हम दोनों ने गाया तो वो बोलती हैं नीचे से, आपके साथ कौन आया है? तो हमारे पिताजी आगे के, हम आए हैं। तो आप तो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? मैं कहा हाँ जी। तो टीचर क्यों नहीं आया? आप देखिए उस समय के जो कलाकार होते हैं, कितने महान कलाकार होते थे वो लोग। तो वो उन्होंने फिर जैसे तैसे, आपको अपने स्कूल का नंबर पता है जो स्कूल का टेलीफोन नंबर, तो कार्ड दोनों ने लगा रखा था गले में। मैं कहा ये हमारे पास है, इसके कुछ ऊपर है। तो उन्होंने जैसे तैसे नोट कर लिया कुछ, अब हमें पता नहीं क्या नोट किया। तो उन्होंने फोन लगाया वहाँ कि आपके यहाँ 2 स्टार बच्चे हैं और आपके स्कूल से टीचर कोई नहीं गया, उनको फेलोशिप अवार्ड हुई है, ये कैसा स्कूल है आपका? तो शाम को पता लगा, हमारे वो जो एक कोई टीचर थे, गुप्ता गुप्ता करके, मैं नाम भूल गया हूँ, वो दुकान पे आ गए, भैया आपके दोनों बच्चों को तो वो फेलोशिप मिली है, और कर प्रिंसिपल उनको स्टेज के ऊपर सम्मानित करेंगे, आप भी आइए। तो वो मेरे को इसलिए ऐसा ये क्षण प्रतीत होता है कि रेडियो की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसमें रेडियो में एडवर्टाइजमेंट हुआ था कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या जैसा भी जा सकते हैं। तो हम चले गए। तो धीरे धीरे धीरे ये रेडियो का जो क्रेज बढ़ता गया। कॉलेज के दौरान फिर मैं गाने लगा, एक हमारे यहाँ खुशीराम कौशल जी करके एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन है, बांसुरी वादक थे वो, पहाड़ के थे, कुल्लू की तरफ के, तो बेचारे वो जितना सिखा सकते थे अच्छा सिखाते थे। तो पर हम दोनों भाई बहुत लगन वाले थे। अच्छा उस दौरान बड़े कमाल की बात यह भी है सिंह साहब, मैं फुटबॉल बहुत खेलता था जब मैं कॉलेज में था। तो मैं अपने उस क्षेत्र में एक दो बार कॉलेज के लेवल से टूर्नामेंट भी खेलने गया, तो मेरे एक दो दाहिने पैर में और एक लेफ्ट में चोट भी लगी हुई है। तो हमारे बाबा जी को पता लगा कि फुटबॉल खेलता है, बहुत डांटा उन्होंने, तू गाना गाएगा फुटबॉल खेलेगा, आवाज़ खराब हो जाएगा भाग भाग के। तो फिर हमने धीरे धीरे बंद कर दिया। कॉलेज के दौरान हम, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं थी, कोई कंपटीशन ऐसा नहीं था, कोई वो नहीं था जहां हम नहीं गए हों,
1: भाग नहीं लिया।
0: इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल होता था पूरे कॉलेज का, उसमें भी कई बार हम हर साल 3-4 रोल ऑफ ऑनर हमें मिलने ही मिलने, बिना फेलियर एक कभी हुआ, सेकंड प्राइज कभी आया नहीं जी। ये सिर्फ रेडियो की कमाल
1: जी, मतलब आकाशवाणी उसके
0: अच्छा उस दौरान भी हम जुड़े रहते थे। ऐसा नहीं भाई अपना वो हुआ, रोज गाना सुना, मान लिया राग सुना तो जाके बोला उनको, अपने जो हमारे मास्टर जी थे सिखाने वाले, छोटा बच्चा था मैं 10वीं तक, तो उनको बोला मेरे को ये सीखना है। कॉलेज में जाने के बाद तो एक प्रोफेसर थे संगीत के, बहुत बड़े प्रोफेसर, एच के सलूजा साहब थे मेरे को अच्छे से याद है। फिर एक जो कृष्णा बिष्ट और भारती चक्रवर्ती मैडम हमारे यहाँ जींद, मेरे विदुषी भारती चक्रवर्ती, वो वोकल की थी, थोड़े दिन उनसे सीखने को

0: मौजूदा मिला। इस दौरान मैं फिर 1980 में ऑडिशन के लिए आकाशवाणी रोहतक गया, 79 या 80 मेरे को याद है, 82 में लास्ट में कॉल आया ऑडिशन के लिए, तो मैं गया वहाँ देने। तो मेरे साथ एक मेरी प्रोफेसर थी मधु भटनागर, वो मेरे को ले गई। उसका लकली उस दौरान रिकॉर्डिंग था, उसने कहा चलो मैं साथ चलते हूँ, तेरे को सहारा हो जाएगा। मैं बड़ा खुश हुआ। तो हम चूँकि छोटी जगह से गए थे, जींद में कोई ऐसा इतना माहौल नहीं था, पर हमें लगा हमारी बारी आई है रेडियो में जाने की, तो हम अंदर से वो बहुत बहुत उत्साह था। तो वहाँ चले गए जी, ऑडिशन हुआ। तो मेरे को याद है मैं राग अभोगी गाया था, तो उधर से पर्दे के पीछे से आवाज़ आई कि आप राग यमन गाइए, बड़ी गंभीर आवाज थी। तो हमने जैसे तैसे वो भी गाए, एक आधा राग और भी, ऐसे 3-4 राग गाए। तो ऑडिशन हो गया। बाद में फिर वो जो मैडम हमारे साथ गई थी मधु भटनागर जी, उन्होंने हमें मिलवाया एक्सपर्ट से, वो उनके गुरु थे, लकली अब मेरे गुरु हैं पंडित तेजपाल सिंह जी। उन्होंने कस के डांटा मेरे को, यमन तुमसे गाया नहीं जाता, भोगी गा रहे थे, ऐसे ही कहा उन्होंने। और मैं तो वो बाहर खड़े थे, जो एक छोटा सा पार्क था, वहीं बस वो जूते उतारे, उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। मैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप बताइए क्या करना है। तो मैं ऑडिशन हो गया क्लियर, लोकल ऑडिशन होता था पहले, फिर मेरा रिकॉर्डिंग गया जी। और वो जो जैसा मेरे को विदित हुआ कि हम 37 लोग उसमें पास हुए थे, 5-6 दिन ऑडिशन हुआ था, तो उसमें अकेला वोकल में मैं पास हुआ। तो आकाशवाणी के वहाँ कुंदन लाल जी थे, वो बोलते बहुत अच्छे कलाकार थे, बुजुर्ग थे काफ़ी उस समय भी, वो मेरे को कहते हैं कि तुम तो सिर्फ अकेले पास हुए हो यार, कोई पास नहीं हुआ, मेरे बच्चे ही पास नहीं हुए, पर तुमने गाना अच्छा गाया था। देखो मेरे को आज भी ये पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं, कि ऐसे सीक्वेंस जुड़ रहा है कि कैसे मैं रेडियो में जाऊंगा। एक के बाद एक चीज़ें होती गई, ग्रेड आ गया। इसी दौरान मैं 1984 में गुरु जी का शिष्य बन गया, MA करने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया एकदम, क्योंकि मेरी वहाँ सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होना था, क्योंकि मैं थ्रू आउट टॉपर था अपने म्यूज़िक फील्ड में। तो मैं कहा नहीं, मैं तो गाना सीखना है, तो मैं गुरु जी की शरण में चला गया 1984 में। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने गुरु जी का शिष्य बना 1985। तो उससे बस शिष्य बनने से 6 महीने पहले ये UPSC की पोस्ट निकली थी, वो मैं भरा 88 में, फिर इंटरव्यू हुआ, तो ऐसे मेरी एक प्रॉपर एंट्री आकाशवाणी में हुई।
1: मतलब 88-89 में आप आकाशवाणी में?
0: पर मैं ज्वाइन 91 के, हमारा बैच 88 है,
1: ज्वाइन 91 में।
0: उसके बाद वो कुछ ना कुछ कारण रहा, हमारे पिताजी एक बार खूब उन दौरान कष्ट में थे, तो हमारा जब पोस्टिंग आ गया अल्मोड़ा के लिए, आकाशवाणी अल्मोड़ा 16 मई 1991 मेरे को डेट याद है, तो पोस्टिंग आ गया, तो हमारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो चिंता कर रहे थे ये घर से बाहर कहीं गया नहीं, अभी कैसे वहाँ रहेगा। तो लकली हमारे पड़ोस में कोई रहते थे, भागती भागती एक लेडी थी बेचारी आई कि काका जी तुसी चिंता न करो, मेरा भरा उत्थे हैगा, वो पंजाबी में बोल रहा हूँ कि मेरे ब्रदर वहाँ हैं, वो उनकी ज्वेलरी की शॉप है, वो इनको बहुत अच्छे से रखेंगे। तो आप विश्वास करिए कि 16 मई 1991 को मैं वहाँ गया हूँ, ज्वाइन किया हूँ, और 21 मई को आपको पता ही होगा राजीव गांधी जी की डेथ हुई, बड़ा माहौल ख़राब हो गया था। तो उनको पता लग गया, उन्होंने फ़ोन किया, वर्मा जी थे बेचारे जोगिंदर वर्मा जी, तुरंत आ गए, सब उन्होंने सामान पैक किया, मेरा अपने घर ले गए। तो मेरी जान में जान आई, मैं कहा यार एक अपने घर का व्यक्ति आया। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा रेडियो में एंट्री से लेकर उससे पहले का पीरियड भी रेडियो के साथ ही रहा, कहीं पर भी मेरा आकाशवाणी छूटा नहीं। और बाद में जबकि मेरे पिताजी की इच्छा थी हम डॉक्टर बने, मेरा छोटा भाई बन गया, मैं नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली, पर हमें साइंस में था बहुत इंटेलिजेंट, मैं बहुत जो डाइसेक्शन करने में पूरे कॉलेज में एक नंबर पे था, अर्थवर्म का, खरगोश का, फ्रॉग का, अर्थवर्म का जो नर्व रिंग होता है पूरे क्लास में किसी का नहीं निकलता था, मेरा निकलता था साबित।
1: लेकिन आपको म्यूजिक की
0: नहीं, वो एक्चुअली वो इसलिए हो गया, बाद में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि जब मेरा मेडिकल में नहीं हुआ डॉक्टरी सिलेक्शन, तो मैं देन कन्वर्ट टू म्यूजिक। तो ऐसे 16 मई 1991 को मैंने आकाशवाणी अल्मोड़ा जो है
1: कार्यक्रम अधिकारी
0: संगीत
1: तो अल्मोड़ा से आप जी शुरुआत।
0: पर ये कि वो आपको पता ही है कि जब आप इसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपको इनके सबके साथ और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा मूलतः जो

0: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, उसका जो रोल था प्लानिंग प्रोडक्शन एंड एग्जीक्यूशन, तो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, आप मना नहीं कर सकते। मेरे को अच्छे से याद है, मैं वहाँ बहुत सारे दिन युवाणी भी देखा, और एक महिलाओं का कार्यक्रम थोड़े दिन मैंने वहाँ देखा अल्मोड़ा में। तो इस दौरान मैं सारी जो अल्मोड़ा की कुछ डिशेज होती थी, कुछ दाल एक थी भट की दाल पता नहीं कुछ ऐसा बोलते थे, वो किडनी स्टोन के लिए बड़ी ऐसा बोलते हैं, तो कुछ व्यंजन हमने सीख लिए उनके।
1: जी जी जी मतलब जीवन जो आकाशवाणी की एक खूबसूरती है कि जैसे जीवन हमें सिखाता है, आकाशवाणी भी छोटी छोटी चीजों से
0: और दूसरा हमें जोड़ना भी सिखाती है वो।
1: जी जी जी
0: आकाशवाणी का देखिए सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ रोल है वो यही है, हर व्यक्ति के लिए वहाँ कुछ ना कुछ है, हर व्यक्ति वो किसी फील्ड का भी हो, बस उसमें एक ही है कि आपके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि आप उसको ढूंढ लें।
1: ढूंढ लें,
0: ढूंढने का मतलब आपको समय पता होना चाहिए, मेरे मतलब का प्रोग्राम 10 बजे आएगा, रात को 10:30 बजे, मैं बचपन से रात को 10:30 का आइटम रोज सुनता था, मेरे को पता है, सवेरे आकाशवाणी रोहतक से 7:30 बजे का आइटम आता था, सब पता है, रटा हुआ था। तो इस दौरान मैं वहाँ पर वो देखा, कोऑर्डिनेशन बहुत दिन देखा, फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट का क्या रुतबा होता है वो देखा। पर इस दौरान कुछ चीज़ें बहुत मेहनत भी हुआ, क्योंकि हम एकदम नए उसमें ट्रैक में गए थे। देखिए गाना गाना एक अलग वो है, मेरा क्लासिकल वोकल मैं गाता हूँ वो एक टोटली फॉर्मेट अलग है, पर जब आप एक डेजिग्नेटेड सीट के ऊपर हैं, जब आप एक एग्जीक्यूटिव है या ऑफिसर हैं, तो उसके दायित्व अलग हैं सारे।
1: तो वहाँ फिर संस्था को चलाना
0: है। हाँ संस्था को चलाना है, वहाँ गाना थोड़ी गाना है, कि मैं गाना गाता हूँ मैं गाना गाता हूँ, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है आप कभी कभी गाइए, कोई मना थोड़ी करेगा। तो उस दौरान फिर हमने सारे जो इसके रूल्स रेगुलेशन हैं सब बेसिक ट्रेनिंग कोर्स हुआ, वो तो वहाँ हुआ। पर इसके बाद एक हमारे डायरेक्टर आए थे मिस्टर बलराम राय, उन्होंने एक एक चीज़ हमें सिखाई, एक एक चीज़, सारे कितने डूज हैं डोंट्स हैं, आपका एज गजेटेड ऑफिसर क्या रोल है, ब्रॉडकास्टिंग के क्या नियम है, ये क्या नियम है, आप दूसरे कंट्रीज़ के प्रति, आप डॉक्टरी का अगर मान ले कोई व्यक्ति डॉक्टर के बातचीत करता है कौन कौन सी चीज़ें बोल सकता है। अभी मैं आज भी हैरान होता हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें जो अभी YouTube में देखते हैं कुछ भी इजीली कर रहे हैं, आप उसमें नहीं कर सकते थे, ये खा लीजिए इससे आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा, हम नहीं बोल सकते,
1: नहीं बोल सकते,
0: वी आर नॉट सपोज टू,
1: क्योंकि जो सुन रहा है वो हमारे सामने नहीं है,
0: नहीं सामने नहीं है, पर वो अगर मान लिया कल को चैलेंज कर देगा तो हमारे पास वो नहीं है।
1: सही बात है,
0: क्योंकि हमारा जो रूल है वो हमें अलाउड नहीं करता, जो है डॉक्टर बोल सकता है, मैं बीइंग एंड ब्रॉडकास्टर ये नहीं बोल सकता आप ये चीज खा लीजिए इससे आपका ये दर्द दूर हो जाएगा, ये हमें परमिट नहीं करता। तो इस तरीके से फिर हमने एक एक चीज को सीखा, पर ये था कि जब मैं 91 में वहाँ ज्वाइन किया हूँ, 15 अगस्त का एक प्रोग्राम मैंने सबसे पहले किया, पूरे आकाश अल्मोड़ा शहर के नौजवान बच्चों को ले आया, लड़के लड़कियाँ, तो गांव की गुहार पर देश की पुकार पर नौजवान बड़े चलो, आई कंपोज ए ब्यूटीफुल सॉन्ग देशभक्ति की, तो वो इतना पॉपुलर हुआ इतना पॉपुलर हुआ, तो पूरे अल्मोड़ा शहर में हो गया कोई व्यक्ति आया भाई अच्छा अच्छा संगीत सिखाए बच्चों को, हर गली में जाओ तो कोई ना कोई मिल जाए, छोटा सा अल्मोड़ा शहर है। तो आकाशवाणी जो चीज वहां से मिला मेरे को, मैं आज भी उसको
1: एंजॉय कर,
0: हाँ रोमांचित होता हूँ
1: जिंदगी में, आपको थ्रिल,
0: हाँ रोमांचित होता हूँ अभी उसको याद कर। हमारी वाइफ ने बहुत उसको एंजॉय किया, जब बाजार में जाते थे हर व्यक्ति चाय पी के जाइए आइए बैठिए, तो हमें लगता था भाई हम तो आए हैं यहाँ पर कितना मान सम्मान, सिर्फ उसकी वजह से, वो एक हमारी एंट्री थी आप मान के चलिए, एज एन म्यूजिशियन, अफसर हम अलग थे चलो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव अलग थे, पर हमने एक प्रोडक्शन में दो सॉन्ग किए थे, कि ये क्या था एक कोई और भी था, वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी का कोई गीत था भारती जय विजय करें शायद।
1: तो आकाशवाणी को लोग उस समय एक ऐसी संस्था के रूप में जो मतलब जो शुरुआत में हम कह रहे थे कि जिसका जानकारी सूचना शिक्षा मनोरंजन तो है ही, लेकिन एक कल्चरल जो देश की जो थाती है जो हमारी संस्कृति है हमारी सभ्यता है उसकी संभाग के तौर पे लेती थी।
0: हाँ,
1: आज भले बहुत साधन हो गए हो,
0: नहीं,
1: लेकिन तब नहीं था, तो आकाशवाणी इसका पालन पोषण किया।
0: सिंह साहब मैं आपको बताऊं, बहुत सुंदर आपने बात की है, मैं आपको एक बड़ा इंस्टेंस बताता हूँ। उन दिनों में रामचरितमानस गान बहुत प्रचलन था
1: जी,
0: सवेरे जो खेती का कार्य था उसके बाद रामचरितमानस आता था, तो मिनिस्ट्री उसमें जो गरीब कुछ कलाकार होते थे उनको स्पॉन्सरशिप कर पैसा देती थी कुछ थोड़ा थोड़ा, अभी ये तो मेरे को याद नहीं कितना, पर देती थी। तो एक ऐसे चेक देने के लिए मैं किसी गांव में मेरे

0: एसडी ने बोला कि ये तीन चेक है, ये आसपास के लोग हैं, आप गाड़ी लेके जाओ, और इस बहाने आप अल्मोड़ा के आगे इंटीरियर में जाना था काफ़ी, तो ये उनको हैंड ओवर करके आओ। तो हम किसी पहाड़ की चोटी से जब जा रहे थे, एक जगह गाड़ी ऊपर झाड़ ने रोक दी, तो उन्होंने देख लिया गाड़ी वहाँ रुकी है। वो वहाँ से वो सामने कहीं देख रहे हैं, एक एक 1.5 किलोमीटर नीचे,
1: जी
0: वो ड्रम बजाना शुरू कर दिया। तुतरी ड्रम बज रहा है, जो पहाड़ की रणसिंगा होता है, वो बहुत हो रहा है एकदम ब्राइट सब। तो मैं कहा ये तो बड़ा सुंदर बजा रहे हैं, आपके स्वागत के लिए बज रहा है। मैं क्या मतलब, आप सोच नहीं सकते मेरे को कितना रोमांच हुआ। तो मैं जब वहाँ गया तो एक बूढ़ी औरत, मेरे को अच्छे से याद है, वो बेचारी बैठ नहीं सकती थी, वो ऐसे आशीर्वाद दे रही थी कि मैं बेटा आपका, वो अपनी कुमाऊनी भाषा में बोल रही थी, रामचरितमानस।

0: मैं बेटा आपका वो अपनी कुमाऊनी भाषा में बोल रही थी, रामचरितमानस मेरे को सब याद है, सबसे सुंदर काम आप ये करते हैं कि रामचरितमानस गाना था। आप सोच के देखिए, और उस महिला ने वो सवेरे का एपिसोड सुना दिया मेरे को। ये देखिए मेरे को रोमांच कितना लग रहा है। तुम रेडियो, आप सोच के देखिए, ये रेडियो की जीवंतता थी।
1: जी जी जी,
0: क्योंकि पहाड़ की जीवन जो है वो थोड़ा सा कष्टकारी है। 3-4 महीनों को छोड़ दीजिए, बाकी सर्दी आने के बाद तो 6-7 महीना एकदम दूसरे किस्म का माहौल होता है। पर वो मेरे को सीन आज भी याद है, उस माता की शक्ल भी याद है, बूढ़ी औरत की। वो इतनी आशीर्वाद दे रही थी सिर्फ इसलिए। मैं कह नहीं नहीं माता जी, उसको मैं नहीं बजाता। नहीं नहीं, आप रेडियो वाले आप ही बजाते हैं।
1: तो लोग संस्था को पहचानते थे,
0: बिल्कुल
1: व्यक्ति और कलाकार से ज़्यादा संस्था अपने आप में बड़ी थी, तो उसको जो है। लेकिन आज जब हम देखते हैं, आपने वो सब दौर देखा, वो देखा, अब तो हर व्यक्ति के पास बहुत सारे साधन हो गए, लेकिन एक समय ऐसा था जब सिर्फ आकाशवाणी ही इन चीज़ों के लिए जानी जाती थी।
0: एक्चुअली देखिए, इसमें दो चीज़ें सिंह साहब, मैं बताऊँ, ये बात सही है। मेरा वहाँ से जब उस दौरान में अल्मोड़ा में और बहुत सारे काम किया, मैं लोक गाथा के ऊपर बहुत रिसर्च किया, बहुत सारा रिकॉर्डिंग किया, लगभग 1500-750 घंटे का रिकॉर्डिंग किया है वहाँ, 10-12 जितनी रेयर लोक गाथा थी उसके ऊपर। एक बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने PhD किया, एक बार हमारे साथी थे मनोज सिंह ब्रिजवाल जी, उन्होंने स्पेशली मेरे को कहा कि नरेश, आज तेरा एक PhD में नाम आया है कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, एक किसी बच्चे ने कोई PhD किया, उसमें तेरा रेफरेंस दिया है कि ही वॉज द पर्सन हु रिकॉर्डेड सो मैनी लोक गाथा हियर एंड विद कम्प्लीट टेक्स्ट। तो मेरे को इससे बड़ी क्या खुशी हुई, मैं उस दौरान डायरेक्टर
1: काम को रिकॉग्निशन मिला।
0: हाँ, अच्छा, इसके बाद जब मेरा ट्रांसफर हुआ, देखिए मैं आपको बहुत कमाल की बात बताऊँ, भोपाल में, भोपाल में हमने एक ऐसी, जब 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, मैं उस दौरान भोपाल में था
1: जी,
0: तो भोपाल का जो एरिया है या जो उसका साथ में 4-5 स्टेट मिलते हैं, उसके हर गांव के जो स्वतंत्रता सेनानी थे सब के नाम का एक एक अंतरा बना के, ऐसे हमने 58 अंतरों का एक सॉन्ग बनाया था, 58 अंतराज। तो उसकी कमाल देखिए, क्योंकि मैं शुरू से कंपोजर भी रहा, मैं अपने गुरुजी के साथ पंडित तेजपाल सिंह जी से बहुत काम किया कंपोजिंग का
1: जी, जी।
0: जिस जगह का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, मान लीजिए बुंदेलखंड का था, तो वहां बुंदेलखंड ही म्यूजिक का अंतरा था, उसको जो हमने कंपोज किया, मोल्डिंग किया उसका, तो वो जब 2.5 घंटे का गाना ऑन एयर हुआ, मैं आज भी उसको याद करके रोमांचित होता हूँ कि ये कैसे हम
1: कैसे कर पाए हम, कैसे,
0: पर रेडियो की ये कमाल थी, वो करवा लेता था। अच्छा, फिर उसकी अप्रिशिएशन आती थी। आपको याद होगा जिन दौरान मैं यहाँ भोपाल, ये आकाशवाणी मथुरा की भी बात बताऊँ, इस दौरान हमने भोपाल में दोबारा मैंने जो नेशनल प्रोग्राम लाइव शुरू किया, लाइव फ्रॉम द स्टूडियो, आई एम द पर्सन, इतने साल के बाद एक डायरेक्टेड का कोई ऐसा भी हुआ कि कोई स्टार्ट करना, मैं कहा यस आई विल स्टार्ट इट। और वहाँ चूंकि कंप्यूटर वगैरह था, इंजीनियर टीम थी पूरी, तो हमने उसको शुरू किया। इस दौरान मेरा ट्रांसफर हो गया मथुरा में। मथुरा में आने के बाद आपको याद होगा संस्कार गीत का जो ओरिजिनेशन है, आई एम द पर्सन, मेरे को आज भी खुशी है, 13 एपिसोड बना था यहाँ से, पर उसका नेपाल से कहाँ से उसे के लोग।
1: अच्छा, इसमें मैं जानना चाहूंगा कि जो संस्कार गीतों की एक आकाशवाणी ने एक ऐसा काम करके रखा कि आने वाले समय में शायद ये चीजें नहीं रहेंगी, क्योंकि धीरे धीरे चीजें धूमिल हो रही हैं, संस्कारों से, व्यवहार से, परिवारों से, तो कभी लोग इसको देखेंगे उठा के। तो आकाशवाणी ने एक ऐसा काम किया पूरे देश में कि हर जाति, हर वर्ग के हर संस्कार के गीतों को रिकॉर्ड करके रखा, और तो इसके पीछे की जो सोच थी वो क्या, वो और
0: नहीं,
1: क्या
0: मतलब, नहीं नहीं देखिए, सोच मैं आपको बताऊं, मैं और यहाँ पर ज्यूरिंग जब आकाशवाणी मथुरा में था, ये सोच यहीं से डेवलप हुई। मेरे साथ पंडित सोमदास शर्मा जी थे, ADP मेरे वो थे, ASD, तो हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग में प्लानिंग किया कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। भाई हमारे जैसे मथुरा में अगर देखें, ठाकुर जी के जन्म से सबसे बड़ा उत्सव होता है जन्माष्टमी, तो हमने कहा यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो संस्कार गीतों के ऐसे हमने शुरुआत किया। और इस दौरान आपको एक बड़ा कमाल का इंस्टेंस बताऊं, आप मेरे श्रोता को भी बहुत आनंद लगेगा कि एक गाना हम रिकॉर्ड करके लाए कोई कोसी के पास किसी बूढ़ी महिला का, तो वो अंदर तो घूंघट डाल के बैठ जाने नहीं देते थे, तो हम एक तो जो महिलाएं थी उनको बोला कि आप थोड़ा सा साथ बैठ के गा दीजिए, इनसे थोड़ा सा ठीक करके ये गाना अच्छा है लोकगीत। तो वो लोकगीत के बोल थे, रात को हम कन्या जनवाएंगे, तो यशोदा से पूछे दाई कि रात को हम कन्या जनवाएंगे कैसे भय कनाई, भाई रात को तो कन्या का जन्म हुआ था। ये जो भी इंस्टेंस है या जो उसकी परिकल्पना है लिखने वाले की, पर उस गीत में

0: बड़ा कमाल का भाव था। जब ये एयर्ड हुआ लखनऊ से नेशनल स्टेट हुकअप पे, कहाँ कहाँ से लेटर नहीं आया, ढेर लग गया यहाँ आकाशवाणी मथुरा में, इतने लेटर आए थे इसका इस लोकगीत के ऊपर। तो वो बार बार कहें ये किस आदमी ने ऐसा ढूंढा, तो उसका ओरिजिनेशन हमने यहाँ से किया, जो बाद में हमने डायरेक्टरेट में जब हम चले गए, सोमदत्त शर्मा जी ने इसको संसद में उठा के हम इतने हजार लोकगीतों का रिकॉर्डिंग करेंगे, ऐसे उसका वो शुरुआत। पर वो हुआ यहीं से
1: मतलब मथुरा से उसका।
0: फिर आगरा ने किया, ऐसा किया, वो किया, पर हर स्टेट ने किया,
1: सबने किया।
0: क्योंकि अगर देखिए आज भी अगर मेरे से बीइंग म्यूजिशियन पूछे, मैं आपको बताऊं, हमारी जो एनरिच्ड संगीत है वो हमारा भारत में ही है। हर क्षेत्र में लोकगीत में देख लीजिए, क्लासिकल में देख लीजिए, ध्रुपद वार में, गाने में, नाचने में, डांस में, लोकगीतों में, गीत में, सुगम, हर फील्ड में। अब अगर कलकत्ता का बंगाल को देखें, लोकगीत सबसे ज़्यादा वैरायटी वहाँ है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जितनी बोलियाँ, उन बोलियों के वेरिएशन के भी बहुत सारे लोकगीत हैं। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ, संगीत जो आकाशवाणी ने किया है उससे बड़ा कोई कर सकता नहीं। देखिए मैं आपको एक अच्छी कमाल की बात बताता हूँ। ड्यूरिंग मैं जिस दौरान डायरेक्टेड में था, चूंकि मैं प्योर क्लासिकल का व्यक्ति रहा, तो मैं जितने घराने, कुछ घराने के आर्टिस्ट धीरे धीरे एक या दो रह गए थे या बूढ़े हो गए थे, जैसे आगरा घराना, कोई गाने वाले नहीं थे, तो ऐसे जो कुछ और घराने रेयर थे, हमने उनको दोबारा जीवंत किया। फिर मैं जिस व्यक्ति का नेशनल प्रोग्राम लगाता था, उनसे पूछ लेता था, भाई मान लिया रामपुर सैसवान घराने का कोई आर्टिस्ट मैंने रिकॉर्ड किया, तो उनसे पूछ लेता था आपके घराने में कौन कौन से रेयर राग हैं। तो पर मैं ये देख लेता था ये व्यक्ति, ये आर्टिस्ट गा सकता है। तो वो जितने भी रेयर राग थे या रेयर कंपोजिशन थी, मैं सारे रिकॉर्ड कर दिया, वो देर से हमारे आर्काइव्स में कहीं हैं। तो जैसे ही रिकॉर्ड होता था, एक सीडी में स्पेशल आर्काइव्स के लिए अलग से हम मंगाते थे। ये हमने रूल बना दिया था बाद में कि जो भी रिकॉर्डिंग आएगी, आइदर सुगम संगीत के प्रोग्राम की आएगी या संगीत नेशनल प्रोग्राम अखिल भारतीय संगीत सभा, उसकी दो कॉपी आएंगी, एक कॉपी सीधी आर्काइव्स में जाएगी। पहला काम है प्रिजर्वेशन होना चाहिए। तो उसका मेरे को इसलिए आनंद लगता है कि बहुत सारे ऐसे रेयर राग मेरे में, चूंकि जिनको जानता था जो नहीं गा सकते थे लोग, वो रिकॉर्ड हुए हैं। तो कल को कोई व्यक्ति रिसर्च करेगा,
1: ढूंढता हुआ आएगा कि भाई इस आगरा का घराना था, उसमें ये राग गाया जाता, तो वो वहाँ आकाशवाणी उसकी मदद कर सकता है।
0: तो ये रेडियो का रोल भी है,
1: रोल है,
0: आकाशवाणी का रोल ये भी तो है ना, कि हम चीजों को इस तरीके से निकाल के रखें। उगलवाना जो है वो जो व्यक्ति वहां बैठा उसका काम है, बशर्ते उसको पता होना चाहिए, या फिर आप ऐसे व्यक्ति को जोड़िए जो इस चीज के इस लेवल पे जानता हो। कि मैं चूंकि वोकलिस्ट था, तो मेरे को तकरीबन हर घराने के 10-10 आर्टिस्टों से मेरा अच्छा इंटरेक्शन था। अगर उस्ताद अमजद अली खान साहब को बुलाया, तो मेरे को पता ये राग ये अच्छा बजा सकते हैं, तो उनका वही राग रिकॉर्ड करना है। एक बार आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के लिए मैंने डॉक्टर एन राजम को मॉर्निंग का कंसर्ट दे दिया, सुबह की सुबह 4 होती थी ड्यूरिंग संगीत सम्मेलन। तो मैंने उनको फोन किया, तो मेरे को कहती हैं, आपने मेरे को सवेरे का संगीत सभा क्यों दिया, वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, पर कितनी हम्बल है ये, मैं आपको इसका उदाहरण दे रहा हूँ। तो मैंने उनको, मैं कहा, मैडम सच्चाई वाली बात है, आपके इवनिंग के तकरीबन सब राग हैं हमारे पास, काफी हैं, पर मेरे को लगता है इस दौरान सवेरे 2 के मॉर्निंग राग आ जाएंगे मेरे पास। इतनी खुश हुई कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको ये सब चीजें आंखें ऐसे खोल के रखना, क्योंकि हमारा स्पियर रेडियो का बहुत बड़ा है, आपको जिस फील्ड में जो चीज चाहिए आपको सब मिल जाएगी।
1: जी जी, तो श्रोता बंधु, आप थे श्री नरेश कुमार मल्होत्रा साहब, आप सहायक निदेशक प्रोग्राम म्यूजिक से सेवानिवृत्त हुए आकाशवाणी में। एक लंबा सफर, एक लंबा कार्यक्रम, वो लंबी यादें जो आज कुछ उसमें से हमने आपके साथ साझा की, आगे भी इस क्रम को जारी रहेंगे। मल्होत्रा साहब, आप आए अपने अनुभव और जानकारी से, हमारे श्रोताओं से फिर से एक बार जुड़े थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जय श्री राधे।
2: विशेष श्रृंखला कार्यक्रम याद है जरा जरा, इसके अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर नरेश मल्होत्रा, इनसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रसंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
3: और मुस्तफाबाद, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर, बीड शहर से किशन सपकाल।
3: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
3: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
3: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
3: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
3: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
3: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
3: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
3: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
3: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
3: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
3: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोता

0: और अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं।
1: जी
0: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के तर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
1: जी
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।

0: पास घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
0: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
0: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।

0: जो सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट।

0: सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
3: हाँ
5: दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ, आ गया हो, आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।

0: मैं इन्हें यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित

कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 14 मई यानी कि आज मध्याह्न 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण। श्रोताओं, यदि आप किसी भी प्रकार की किडनी संबंधी समस्या जैसे किडनी में बार बार संक्रमण, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, किडनी में पथरी या मूत्र मार्ग में रुकावट, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि के समाधान के लिए प्रश्न पूछिए, डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 14 मई यानी कि आज, समय मध्याह्न 12 बजे। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे परवरिश फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें थी आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार की। आइए सुनते हैं अगला गीत जूली फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

एन इवनिंग इन पेरिस। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कश्मीर की कली फिल्म से। गाया है एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी ने। गीत को लिखा है SH बिहारी ने, धुन बनाई है OP नैयर ने।

गुलजार का लिखा ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था आनंद। धुन बनाई थी सलिल चौधरी ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

मजबूर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना, श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कि 14 मई को दोपहर 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा हमारे मोबाइल नंबर 9412255775 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण। श्रोताओं, यदि आप किसी भी प्रकार के किडनी संबंधी समस्या जैसे किडनी में बार बार संक्रमण UTI, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज PKD, किडनी में पथरी या मूत्र मार्ग में रुकावट, मधुमेह यानी डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर आदि के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर आशीष शर्मा से, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी कि आज 14 मई 2026, समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन सजीव कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है देवराज कृष्ण दीक्षित की।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी,
2: चार सा प्रेम, चार सा नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: जी हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा जी की माता उत्तर प्रदेश की वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, आप कैसे हैं?
1: एकदम अच्छे हैं।
2: जी हृदय से धन्यवाद।
1: और क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम में आप?
2: मानवर, इस वक्त हमारे मथुरा वृंदावन में जबरदस्त गर्मी हो रही है, चिलचिलाती हुई धूप रहती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं और हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: और भरपूर मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए जिससे कि हमें निर्जलीकरण का शिकार होना पड़े। बाहर धूप में न निकले ज्यादा अच्छा है, या निकलना है तो फिर थोड़ी सी सावधानी पूर्वक निकलें, पानी खूब पी के निकलें और अपने तन को ढक रखें। इस तरह से तैयारी के साथ निकलेंगे तो लू का प्रकोप नहीं होगा और लौटने के बाद फिर

0: पानी न पिए, थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात ही पानी का सेवन करें।
1: बिल्कुल, तेज धूप में अपने सिर का बचाव जरूरी है।
0: जी, बाहर निकलते वक्त सिर पर गमछा है, रुमाल है, टोपी है अथवा पगड़ी है, इन सब का उपयोग करना जरूरी है, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
1: बहुत अच्छी सलाह है आपकी, आप फरमाइश बता दीजिए, क्या सुनवाएं आपको?
0: मानवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है भूल भुलैया, इसका शीर्षक गीत है, तेरी बातों की भूल भुलैया, तेरी आंखों की भूल भुलैया, बहुत ही सुंदर प्यारा गीत है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
1: सुनवाते हैं प्रजापति जी आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं का करता हूँ सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी,
0: आदरणीय दीक्षित जी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षित जी। कैसी है हमारी हेलो आकाशवाणी टीम? सर जी
1: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: सर, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं, मस्त हैं। और अपने लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र मथुरा को फोन लगा रहे थे तो सौभाग्य से फोन लगा है और आपसे बात हो रही है।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। आज कौन सा गीत सुनेंगे लावानिया साहब?
0: आज रफी साहब की आवाज में एक गीत है, एहसान तेरा होगा मुझ पर। बहुत
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।
0: बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, आपका भी हमारा कॉल शामिल करने के लिए। नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी। नमस्कार जी, दीक्षित जी।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं हमारे?
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सांवरिया गांव खैरावर तहसील कुमेर जिला ढीग राजस्थान से। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: कुशल मंगल है सर?
0: सब बढ़िया है, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक है जी।
0: गर्मी कैसी है?
1: गर्मी तो है ही, साहब वो वर्षा हो जाती है और आंधी भी आती है।
0: जी, तब तो थोड़ी राहत मिल जाती है।
1: हाँ, रात मिल जाती है। अब इस समय बहुत गर्मी है। हाँ
0: इस समय तेज गर्मी है। जी हाँ, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो पड़नी चाहिए।
1: बिल्कुल साहब।
0: बताइए, आज सांवरिया जी कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गीत गाता चल बचपन हरगम से बेगाना होता है।
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार जी, दीक्षित जी नमस्कार, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: आकाशवाणी।
1: और कैसे हाल है सिद्धि?
0: नमस्कार
1: नमस्कार सर, मैं नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ।
0: जी। उपाध्याय जी, स्वागत है आपका।
1: जी सर,
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर। आप बताइए, गर्मी तो काफी हो रही है।
0: जी हाँ, गर्मी तो अब पड़ रही है, लेकिन सुरक्षा बहुत जरूरी है, अपना ध्यान रखिएगा।
1: नहीं, वो तो पूरा है। अब ये अधिक मास में 84 को ब्रज यात्रा जाने का पूरा विचार है।
0: जी
1: हाँ
0: बहुत अच्छी बात है, सावधानी के साथ यात्रा कीजिए।
1: जी सर, जी सर।
0: आज बताइए उपाध्याय जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर मैं प्रेम रोग, प्रेम रोग,
0: प्रेम रोग फिल्म से कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये गलियां हैं दोबारा यहाँ आना ना दोबारा।
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: सर, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज बाबा।
0: धीरज
1: हाँ
0: जी,
1: सर,
0: क्या हाल चाल है धीरज जी? जी
1: बढ़िया है सर। 90 साल की जो प्रसार यात्रा हमारी चल रही है, इसके लिए हम आकाशवाणी मथुरा परिवार आपको और सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं सर।
0: हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं
1: जी धन्यवाद सर।
0: जी। क्या करते हैं गुजरात में आप?
1: सर मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और समय मिलने पर आकाशवाणी के केंद्र सुनता हूँ। ज्यादातर फोन इन कार्यक्रम और
0: जी
1: युवाणी कार्यक्रम भी सुनता हूँ,
0: जी
1: और हमें प्रेरित करता है आकाशवाणी, ज्ञान के साथ मनोरंजन भी होता है, और हमको जो फिल्म संगीत आता है उसमें मन को शांति भी मिलती है कभी कभी।
0: बिल्कुल, संगीत चीज ही ऐसी है।
1: हाँ सर,
0: आज बताएं आपकी क्या फरमाइश है?
1: आज सर गाना सुनना है अखियों के जरों पे से, और ये गाना मुझे बहुत पसंद है। इस गाना है अमृता ने गाया है, बहुत बढ़िया गाना है।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद सर।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति थी देवराज कृष्ण दीक्षित की FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कि आज 14 मई को दोपहर 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण। श्रोताओं, यदि आप किसी भी प्रकार के किडनी संबंधी समस्या जैसे किडनी में बार बार संक्रमण UTI, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज PKD, किडनी में पथरी या मूत्र मार्ग में रुकावट, मधुमेह यानी डायबिटीज, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर आदि के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर आशीष शर्मा से, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 14 मई 2026 यानी आज, समय दिन में दोपहर 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है

रिश्तों की मिठास और बड़ों का आशीर्वाद हो। और ये गीत कितना सुंदर है, संयुक्त परिवार, संस्कार और अपनों के साथ को कितनी खूबसूरती से दर्शाया है इस गीत ने। कितनी सुंदर पंक्तियां याद आई, दादा की सीख, दादी की कहानी, मम्मी की ममता, पापा की निगहबानी, भाई की शरारत, बहना का प्यार, बुआ की दुआएं, फूफा का दुलार, दीदी की फिक्र, जीजा का मान, इन रिश्तों से महकता है घर, आंगन और जहान। कोई रिश्ता हंसाता है, कोई हर दर्द छुपा लेता है, इन्हीं छोटे छोटे रिश्तों से पूरा परिवार बन जाता है, पूरा परिवार बन जाता है।

साथियों, ये गीत कितना सुंदर है। महल नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, अगर परिवार साथ हो तो छोटी सी छत भी जन्नत लगने लगती है। परिवार की अहमियत बहुत सरल और भावुक अंदाज में ये गीत हम सबको बताता है।

माँ बाप का प्रेम और बच्चों के प्रति उनके सपनों को दर्शाता ये गीत आज भी उतना ही भावुक कर देता है। माँ की ममता और पिता का साया इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जहाँ बड़ों का आशीर्वाद हो, छोटों की मुस्कान हो, नोक झोंक भी हो, अपनापन भी, वही घर सबसे महान होता है। वरना ईंटों से मकान बनता है, रिश्तों से घर सजता है और प्रेम सम्मान विश्वास से पूरा परिवार बसता है, पूरा परिवार बसता है।

साथियों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का संदेश यही है कि अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए और प्रेम बांटते रहिए। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, उन्हें तोड़ देती है कभी बेरुखी, कभी अनदेखी। इसीलिए अपनों को समय दीजिए, क्योंकि परिवार से बढ़कर कोई दौलत नहीं। इन्हीं भावनाओं और मधुर गीतों के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो मित्र उषा पांडे को।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण एवं निवारण। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स मथुरा।
1: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधा।

0: आएं। 200 बेड का एक ऐसा आलिशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजी के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा।
1: श्रोताओं नमस्कार, आपका अपने नियमित कार्यक्रम जिसका आप हर बृहस्पतिवार को 12 बजे इंतजार करते हैं, कार्यक्रम का नाम है आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर। आज हम एक विशेष जानकारी जो किडनी के संबंध में हो सकती है वो आपको लेकर के आ रहे हैं। किडनी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर का, और ये कहें कि बहुत सारी क्रियाओं के पीछे किडनी हमारी स्वस्थ है, हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं डॉक्टर आशीष शर्मा साहब। आप वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और किडनी रोग की अच्छी देखभाल करते हैं, बड़ा लंबा अनुभव है और सिम्स आकाश हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर
1: जी। तो मैं ये कहूँ कि किडनी बहुत महत्वपूर्ण अंग है और बहुत कुछ स्वास्थ्य की जो समस्या है वो अच्छी किडनी हो इस पर डिपेंड करती हैं। तो क्या कहेंगे कि स्वस्थ किडनी का जो हमारे स्वास्थ्य के लिए रोल है वो क्या है, किन चीज़ों से ये प्रभावित होती है? बहुत मोटी मोटी चीज़ें जैसे डायबिटीज़ की कहते हैं, ब्लड प्रेशर की कहते हैं, आजकल मोटापा बहुत हो गया है, अनियमित खान पान है, जीवन शैली थोड़ी अनियमित ही हो गई है, तो ये बहुत सारे कारण हैं। लेकिन फिर भी एक विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किडनी की अच्छी देखभाल होती रहनी चाहिए?
2: देखिए, पहली बात तो किडनी नहीं, हमारे शरीर का कोई भी अंग है वो भी एक, जैसे आपके पास अगर एक गाड़ी आप नहीं खरीदते हैं तो खरीदने के बाद आपको ये बोला जाता है कि इतने पे सर्विस करानी है, तो किसी भी अंग के साथ भी यही चीज़ होती है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, महसूस होता है, तो सेल्फ ट्रीटमेंट, मेडिकल स्टोर ट्रीटमेंट, गूगल ट्रीटमेंट की बजाय आप एक सुयोनोजेटिक तरीके से एक डॉक्टर को दिखाएं और उसके बारे में जानकारी लेके उसका उचित इलाज टाइम पे कराएं, क्योंकि एक टाइम पे के बाद जब स्थिति बिगड़ती जाती है तो इलाज उतना ही लंबा और बीमारी उतनी ही बेकार होती जाती है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे किडनी हमारी प्रभावित हो रही है, किसी कारण से हम महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि भाग दौड़ के जीवन में, तो पहले कौन से ऐसे सामान्य लक्षण होंगे जो हमारे शरीर में उभर के आते हैं या जिनको हम नोटिस करें और जिनके होने से या दिखने से हमें ऐसा लगे कि नहीं, किडनी की देखभाल की आवश्यकता है?
2: देखिए, मोटे तौर पर तो जैसे किडनी का जो काम है, आपके शरीर का पानी का बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, तत्वों का बैलेंस, खून बनाना और टॉक्सिन्स को निकालना इत्यादि, तो अगर इसमें से कुछ भी फंक्शन गड़बड़ होगा तो पैरों में सूजन आ सकती है, पेशाब कम हो सकता है, पेशाब में झाग बन सकते हैं, भूख कम लग सकती है, बिना बात के सांस का फूलना, वजन का कम होता चला जाना। लेकिन ये सारे आपको एक ही में मिलने कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी मरीज होते हैं जिनके एडवांस किडनी खराब होती है लेकिन पेशाब नियमित आ रहा है, पूरा भरपूर आ रहा है। तो अगर आपको कुछ भी महसूस होता है, कोई बेसिक से टेस्ट में कुछ गड़बड़ी मिलती है, तो उसको इग्नोर ना करें
1: जी,
2: ये ना कहें कि ये तो अभी जरा सा ही दिक्कत है, क्योंकि जरा सा ही दिक्कत आगे जब उनके तिल का ताड़ बनता है
1: जी जी। मतलब कोई सिम्टम आ रहा है, जैसे आपने कहा पैरों पे सूजन हो रही है, पेशाब में परेशानी है, थकावट हो रही है, आप थोड़ा सा थके थके रहते हैं, ठीक से नींद नहीं आ रही, आंखों में सूजन हो गई, तो ये दूसरे रोगों में भी लक्षण होते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो अगर आपको ऐसा कहीं भी लग रहा है तो हम किडनी की बात, जैसे आपने कहा कि किडनी नहीं, हर अंग महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य में परेशानी है, तो ये तो हमें आइडेंटिफाई हो ही जाता है, तो जाके एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे उसकी सलाह हम क्यों नहीं ले उसमें?
2: बिल्कुल।
1: जब गाड़ी को दिखा सकते हैं तो अपने शरीर को क्यों नहीं दिखाए?
2: और हम लोग एक्चुअली ज़्यादातर करते उल्टा है, हमारा मोबाइल ख़राब हो जाए तो हमें तुरंत ठीक कराना है, गाड़ी में कोई मोटरसाइकिल में दिक्कत हो जाए तो तुरंत हम ढूंढते हैं अच्छा मैकेनिक कौन है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए हम क्या करते हैं, सबसे सस्ता इलाज कहाँ मिल जाए, तो वो एक चीज़ जो हमारी मानसिकता है उसको बदलने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप महंगा इलाज कराओ
1: जी जी जी,
2: लेकिन अच्छा इलाज कराओ, वो जरूरी है,
1: जो जो मतलब प्रामाणिक है। एक अच्छा डॉक्टर, एक

0: 6-7 साल की पढ़ाई करके आता है, लाखों रुपए खर्च करके आता है, बड़े इंस्टीट्यूट में जाता है, वो अपना पूरा जीवन उसमें लगाता है, और हम उसकी सलाह की बजाय एक मेडिकल स्टोर से 2 गोली खरीद के
1: मैं सर
0: किसी
1: आपकी
0: के
1: एक चीज
0: कहेंगे।
1: को इसमें थोड़ा सा माफी चाहूंगा।
0: जी
1: देखिए, डॉक्टर बनने के लिए कहीं पैसा खर्च नहीं होता।
0: जी जी
1: ये लोगों का मैंने टीवी पे भी देखा है, पिक्चर भी कहते हैं कि हम इतना रुपया खर्च करके आए हैं।
0: जी
1: मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 11वीं 12वीं में मेरी फीस थी 675 रुपये साल की।
0: जी
1: MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरी फीस थी 2200 रुपये साल की इंक्लूडिंग हॉस्टल। PG में मेरी फीस थी 50,000 रुपये साल की, जिसमें मुझे सैलरी मिलती थी। और सुपर स्पेशलाइजेशन में मेरी कोई फीस नहीं थी क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिला। तो आपने लाखों का ही, या तो लाख रुपया भी खर्च नहीं हुआ
0: उल्टा आप सरकार आपको दे रही
1: है ना।
0: तो इसमें मतलब आप अगर रुचि रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो वो तो डिग्री तो आपको मिल ही जानी है, उसमें आपको
1: जी
0: भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर से वही लौट के आता हूँ कि एक जरूरत है तो एक अच्छे उसको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, एक
1: हाँ बिल्कुल।
0: हॉस्पिटल अच्छे के पास जाना ही चाहिए
1: देखिए,
0: उसको।
1: आपका शरीर हमेशा आपको सिग्नल देगा
0: हाँ
1: कि कुछ हो रहा है। अब आप उसको पकड़ लीजिए या आप उसको इग्नोर कर
0: जी
1: दीजिए।
0: जी श्रोता हमसे जुड़ने लगे, एक फोन ले लेते हैं। हेलो
2: हेलो।
0: जी नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार
0: नमस्ते भैया, नाम बताइए, उम्र बताइए, समस्या बताइए।
2: जी, मैं मोहम्मद सलीम औरंगाबाद मथुरा से, मेरी एज है 62 ईयर्स।
0: 62।
2: जी
0: ठीक है, बताइए सलीम जी, डॉक्टर साहब से बात करिए।
2: जी
0: जी
2: डॉक्टर शर्मा जी।
1: हाँ जी सर बताइए।
2: डॉक्टर शर्मा जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: शर्मा जी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूरिन में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो मुझे ये लगा कि मेरा पेशाब रुका, तो मैं आनंद फानंद में जिला अस्पताल पहुंच गया, वहां उन्होंने जांच करी नहीं और मुझे नली घुसेड़
1: नली डाल दी।
2: और यूरिन था केवल 20 ग्राम भी यूरिन नहीं था मतलब। और फिर डॉक्टर उन्होंने कही, डॉक्टर सर्जन ने कहा आप प्राइवेट में दिखाइए, तो मैंने डॉक्टर संजय अग्रवाल जी को दिखाया जो मेरे
1: यूरोलॉजिस्ट हैं।
2: यूरोलॉजिस्ट
1: जी।
2: लेकिन सर मेरे 2-3 अल्ट्रासाउंड हो गए, ना तो उसमें किडनी किडनी सेफ है, प्रोस्टेट 15 ग्राम है, प्रोस्टेट ओनली 15 ग्राम है, किडनी और कोई स्टोन नहीं है
1: जी।
0: तो अब आपको समस्या क्या है?
2: नली डलने के बाद में मुझे समस्या ये होती है कि मेरा पेशाब खुल के नहीं आता, और मैं मेडिसिन ले रहा हूँ यूरिमैक्स डी
1: जी,
2: लेकिन फिर भी पेशाब ऐसा नहीं आता, खुल के नहीं आता। ब्रेडर तो खाली हो जाता है लेकिन आता रुक रुक में।
1: देखिए सर, ऐसा है कि आपकी उम्र में पहली चीज़ तो, हाँ सबसे कॉमन जो समस्या होती है वो प्रोस्टेट होती है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोस्टेट में कई बार प्रोस्टेट के वजन से या उसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोस्टेट का एक मीडियन लोब होता है, वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है पेशाब की रुकावट के लिए, नंबर 1। अगर वो मीडियन लोब गड़बड़ कर रहा है तो प्रोस्टेट भले ही छोटी हो लेकिन मीडियन लोब आपके पेशाब की रुकावट को गड़बड़ कर सकता है। और नंबर 3, आपकी उम्र में कई बार क्या हो सकता है, पेशाब की नली जो होती है उसमें वो सक्रिय हो सकती है, जिसे हम स्टेनोसिस कहते हैं। तो अगर वो होगा तो भी आपको पेशाब करने में दिक्कत होगी। तो मेरा विचार ये है कि आप एक तो अल्ट्रासाउंड करवाइए अपना, पेशाब भरी हुई थैली पे जिसमें पूरा पेशाब आपको महसूस हो रहा हो
2: जी,
1: और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाइए कि कितना पेशाब है अंदर, और उसके बाद पेशाब करके आइए और फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड कराइए कि नंबर 1 पेशाब की थैली पूरी खाली हो गई है कि नहीं।
2: जी सर मैंने पहला अल्ट्रासाउंड करा था तो पेशाब की थैली पूरी खाली हो गई थी, दोबारा जब 3 महीने बाद करा था उसमें 84 ग्राम मिला।
1: एग्जैक्टली, तो यानी कि आपका पेशाब रुक रहा है, तो या तो इसमें प्रोस्टेट का काम है और या फिर आपकी पेशाब की नली सक्रिय हो सकती है।
2: अगर नली सक्रिय है तो सर क्या करना पड़ेगा?
1: सर इसके लिए बड़ा सिंपल सी जांच होती है, एक रंगीन एक्सरे होता है जिसे कहते हैं MCU मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम। एक दवाई आपकी पेशाब की थैली में डाली जाती है और उससे एक्सरे किया जाता है जब आप पेशाब कर रहे हैं, तो दवाई के रास्ते पूरा पेशाब का रास्ता हमें दिख जाता है और वो तुरंत डायग्नोसिस बन जाती है कि आपका पेशाब का रास्ता सकरा है। अगर सकरा है तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है, एक दिन में हो जाता है, उसको थैली उसको पेशाब की नली को खोल दिया जाता है और कुछ चीज़ें आपको सिखा दी जाती हैं जिससे आप स्वस्थ हो जाते हैं।
0: हेलो। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो आ जाएंगे आपके पास, इलाज करा लेंगे, लेकिन इसमें कुछ लोगों में जैसे ये आपने पेशाब के रास्ते की बात की, इसकी छोटे होने की, इसमें कुछ लोगों में ये जन्मजात भी हो सकता है?
1: वो बच्चों में होता है सर,
0: बच्चों
1: बच्चों
0: में
1: में हो सकता है
0: हाँ।
1: लेकिन वो तुरंत ही पता लग जाता है बच्चों में।

0: अगर कोई जमचात होती हैं तो वो अलग तरीके की होती हैं, जैसे उनके पेशाब की थैली के वॉल्व ख़राब हो सकते हैं, जिसे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व कहा जा सकता है, जिसकी वजह से उनको रिफ्लक्स हो सकता है, या पेशाब की नली में दिक्कत, बट वो तुरंत ही पता चल जाती हैं और बच्चा के पैदा होने के कुछ ही टाइम में वो दिक्कत महसूस होनी शुरू हो जाती है।
1: मतलब वो तो बचपन में पता लग जाएगा उसमें। एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: राधे
1: राधे राधे, नाम बताइए भैया।
2: जी, मैं कृष्ण कुमार त्यागी बोल रहा हूँ, सैदपुर साहबाद।
1: कृष्ण कुमार त्यागी जी कहाँ से?
2: सैदपुर साहबाद जो चित्र
1: अच्छा, जयपुर साहब। बताइए समस्या, बताइए, डॉक्टर साहब से बात करिए।
2: किडनी के बारे में कोई संयम नियम कुछ है ऐसे?
1: संयम
0: नियम सर हैं, बिल्कुल हैं। किडनी के
1: हमारे
0: लिए कि पहला तो एक जो नियम बहुत सालों से सदियों से चला आ रहा है कि खूब पानी पियो, ऐसा कुछ नहीं है।
2: डॉक्टर साहब से बात है मेरी।
1: जी
0: मैं बात कर रहा हूँ
2: हमारे
0: सर।
2: मेरे बहनों ही खत्म भए, वो बिचरे संयम से रहते हैं कि कुछ भी वैसी थोड़ा खातून आई जिस जवाल तो हिस्सी मार देते हैं
0: हाँ
2: और ऐसे फल वगैरह खत्म आई और अपने घर ही कुछ बिल बैली से बाई करते 20 महीने जिंदे रही, दिल्ली में इलाज कराया, फिर आखिरकार फिर मरना पड़ी। तो मतलब ऐसा कोई संयम नियम है कोई?
0: हाँ, मैं
1: बोल
0: वही
1: बोल
0: बता
1: बता
0: रहा हूँ बाबू
1: बता
0: जी
1: बताएं
0: आपको
1: बताएं डॉक्टर साहब।
0: कि पहली बात तो पानी उतना पिए जितनी प्यास है, क्योंकि किडनी में और कमोड में अंतर है। पुराना नियम जो था कि खूब पानी पियो किडनी साफ रहेगी, तो किडनी कोई गटर थोड़ी है कि अब खूब पानी डाले जाओ, बिना बात के पेशाब करते रहोगे, नंबर एक। नंबर दो, स्वयं का ट्रीटमेंट, अपना ट्रीटमेंट खुद करना, और उसमें सबसे कॉमन होता है दर्द निवारक दवाइयाँ। सर में दर्द हुआ हमने सेरीडॉन ले ली, हाथ में दर्द हुआ हमने, दर्द निवारक दवाइयाँ आज की तारीख में सबसे कॉमन कारण है किडनी की खराबी का। और नंबर तीन, देसी नॉन साइंटिफिक दवाइयाँ, वो दवाइयाँ जिनके बारे में कोई भी रिसर्च नहीं हुई है। आज की तारीख में 50 तरीके के लोग दुकान खोल के बैठे हैं, कोई वजन बढ़ाने के लिए, कोई वजन घटाने के लिए, कोई लंबाई बढ़ाने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, जिनका कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो दवाई कैसे काम करती है।
1: जी
0: और वो कहते हैं कि दवाई का साइड इफेक्ट नहीं है, तो साहब जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी होगा। तो ऐसे इलाजों से बचिए, ये संयम बहुत ज़रूरी है। बाकी देखिए साहब, कुछ ऐसी बीमारियां किडनी की होती हैं जिसमें आपका हाथ नहीं है ना किसी और का है, वो कुदरती हैं, वो अगर हो जाती हैं तो उसका इलाज कराइए।
1: जी, ठीक है कृष्ण कुमार जी। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोगों को पथरी होती है, कुछ लोग डायबिटिक हैं, कुछ लोग हाई ब्लड प्रेशर के हैं, क्रॉनिक हैं, तो अब कई बार पता ही नहीं है कि पथरी कब हो गई और हम जिए जा रहे हैं, एक जीने की जैसे आदत हो गई। अब जब दर्द होगा तो हमें महसूस होगा, कभी वो भी अल्ट्रासाउंड करा लिया तो आप जैसी बात है कि भाई पेन किलर ले लिया तो वो दब भी जाएगा, फिर से एक लंबा समय चला जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं कितना प्रभावित करती हैं व्यक्ति को? आज मेरा कहने का ये है कि एक व्यक्ति हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है। हमारे ये नहीं कि भाई 30 साल के हो गए तो हमें ये जांचें करा लेनी चाहिए, 40 साल के हो गए तो अभी हो जानी चाहिए। अगर हमारा शरीर चलता जा रहा है और हम व्यस्त हैं और ऊपर वाला ठीक से हमें दे रहा है खाने कमाने की चीज और पैसा ठीक से आ रहा है, तो कई बार तो 60 साल हो जाते, कई बार
0: बिल्कुल
1: चेकअप ही नहीं कराते और चीजें शरीर में पनपती रहती है, तो उसमें चाहे किडनी की बात हो चाहे अन्य हो, तो ये एक
0: तो देखिए
1: लंबी हानि
0: सर,
1: हो जाती है।
0: साइंटिफिकली साइंस ही कहती है कि 40 साल की उम्र के बाद आपका शरीर वापस रिवर्स होना शुरू हो जाता है,
1: आफ्टर
0: एजिंग
1: 40।
0: प्रोसेस
1: जी
0: शुरू हो
1: जी
0: जाती
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो एजिंग प्रोसेस होगी तो कुछ भी दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 40 साल के बाद उम्र के बाद चाहिए तो ये कि आप साल में एक बार अपने बेसिक टेस्ट करवाते रहें। नंबर दो, अगर आप किसी भी पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, कोई हार्ट की दिक्कत है या कुछ और है, आप जिनके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, तो भी आपको साल में एक बार, नहीं तो 6 महीने में एक बार कुछ बेसिक जांच करानी चाहिए। क्योंकि बीपी की दवाई हो या शुगर की दवाई हो, साइड इफेक्ट सबके होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप बीमारी, आपकी किडनी में दिक्कत आपकी शुगर की वजह से नहीं आ रही है या बीपी की वजह से नहीं, उस दवाई की वजह से आ रही है।
1: मतलब ये भी नहीं कि एक बार इलाज ले लिया तो हम उसको जिंदगी
0: मैं आपको
1: में
0: बताऊं, मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो कह रहे, डॉक्टर साहब हम तो 8 साल से यही दवाई ले रहे हैं।
1: जी एक श्रोता जुड़ गए हैं।
0: जी हेलो
1: हेलो
2: हेलो,
1: जी, नमस्कार भैया, नाम बताइए।
2: मैं MS वर्मा बोल रहा हूँ, रामनगर
1: MS वर्मा, रामनगर, मतलब ये अड़ी के पास।
2: जी हाँ जी हाँ,
1: ठीक है वर्मा जी, बताइए।
2: मैं जो है, उम्र तो मेरी 82 करीब है।
1: हाँ 82, तो चलिए प्रभु की आपकी कृपा है, जी जी जी स्वस्थ भी लग रहे हैं आवाज से, मुझे ऐसा लग रहा है।

0: जी
1: दूसरी ये है कि एक मैंने अभी 22 में प्रोस्टेट का और हार्निया का ऑपरेशन कराया था
0: जी,
1: लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पेशाब में भी फिर दिक्कत हो रही है।
0: डॉक्टर साहब से बात करें
2: तो बाबू जी नमस्कार, मेरा तो दुआ है कि आपको भगवान लंबी उम्र दे। तो देखिए बाबू जी, प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद जो है एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। ये माना मान्य है, ये जाना हुआ कॉम्प्लिकेशन है, मतलब प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद ऐसा हो सकता है कि आपका पेशाब अपने आप निकल जाए।
1: जी जी,
2: ये उसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है। और अगर आपको इस तरीके की चीज़ हो रही है तो ये एक प्रोस्टेट की सर्जरी में हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले अगर आप सुन रहे होंगे, पेशाब की नली सक्रिय होने का भी दिक्कत हो सकती है।
1: जी जी,
2: तो अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो मेरा मानना यही है कि आप एक अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट कराएं और अल्ट्रासाउंड में देखें कि पेशाब रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है और पूरा खाली हो रहा है कि नहीं।
1: जी सर,
2: उससे आपको एक जवाब मिल जाएगा और आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो आपका उचित इलाज कर पाएंगे।
1: सर सर,
0: ठीक है।
1: मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था और पेशाब पूरा था, उसके बाद जब खाली हुआ उसमें केवल 10 ग्राम पेशाब रह गया था, मतलब पूरा साफ हो गया था।
2: ठीक है।
1: अब एक दिक्कत ये किडनी में सर जी, मुझे बार बार जो स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। 2 बार स्टोन निकल चुके हैं
2: जी,
1: फिर अब आज भी जो है लेफ्ट में 12 mm का स्टोन पड़ा हुआ है। अच्छा, दर्द मुझे कभी कभार होता है, होता नहीं, दर्द नहीं होता सर, ये मुझे भगवान की कृपा है कुछ
2: जी।
1: अब मुझे जो है लेफ्ट की जगह पर राइट में हार्निया हो गया, तो उसका भी ऑपरेशन कराना है सर मुझे।
2: जी जी,
1: तो जैसे अभी इन सज्जन ने बताया था, मैं भी यूरी मैक्स जो है 0.4 mg का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
2: हाँ, वो ठीक है।
1: रात को सोते समय तो पेशाब तो मेरा जो है कंट्रोल में है।
2: ठीक है।
1: लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, ये किडनी में जो पथरी बार बार बनती है, ये क्यों बनती है?
2: बाबू जी देखिए, किडनी में पथरी बनने के बहुत कारण है। नंबर एक, जो पानी हम पीते हैं खासतौर पे इस एरिया का, वो बहुत हार्ड वाटर है, उससे पथरी बन सकती है। नंबर दो,
1: जो आरओ का पानी यूज करता हूँ, मेरे आरओ लगा हुआ है।
2: नंबर एक। नंबर दो, पथरी बनने का कारण हमारे शरीर के अपने मेटाबॉलिज्म होते हैं, जहाँ पर कि कुछ तत्व हमारा शरीर पूरी तरह से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जैसे यूरिक एसिड है, ऑक्सलेट है, फॉस्फेट है, तो ये तत्व कैल्शियम के साथ मिलकर आपका स्टोन बना सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि अपने यूरिन की स्टोन एनालिसिस करवाइए, उससे ये पता लगता है कि आपके किडनी में किस तत्व का स्टोन ज़्यादा बन रहा है। तो उस तरीके के स्टोन का अगर हम पता कर सकते हैं तो उसकी कुछ दवाइयां होती हैं जिससे स्टोन का बनना रोका जा सकता है या धीमा किया जा सकता है।
0: ठीक है बर्मन जी, तो कुछ जांचें जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं आप आके करा सकते हैं, जो भी आपके पास में सुविधाएं हों, लेकिन ये जरूर देख लें कि एक विशेषज्ञ डॉक्टर और एक विशेषज्ञता वाला हॉस्पिटल, ये भी आजकल ये हो गया कि डॉक्टर तो ठीक है लेकिन वो चीज़ें ही नहीं है हमारे पास, तो वहाँ ज़रूर पहुँचे जहाँ कम से कम अच्छी जाँचें, अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छे इक्विपमेंट पहुँच गई। हम सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों पर भी, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, ये एक ठीक से वो बनता है कि जहाँ सुविधा हमारे आसपास अच्छी है कम से कम वहाँ जाए, यहाँ थोड़ा कंजूसी नहीं करें।
2: हाँ देखिए, मैं बहुत देखता हूँ कि हमारे यहाँ गाँव देहात से पेशेंट आते हैं अल्ट्रासाउंड करा के, वो उसका अल्ट्रासाउंड के नीचे कुछ नहीं लिखा किसने किया है, और मैं होता कुछ है निकलता कुछ है।
0: जी, एक बसंत कुमार सिन्हा जी है कलकत्ता से लिख रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप से आया, मेरे पेशाब में झाग आ रहा है, दुर्गंध भी आती है, मतलब गंध है थोड़ा सा, क्या उपाय हो सकता है?
2: तो सर देखिए, पेशाब में झाग और दुर्गंध आ रहा है तो उपाय से पहले आपको कारण जानना होगा। कारण जानने के लिए अपना एक पेशाब की जाँच कराएं, जिसे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, और एक बेसिक किडनी का टेस्ट कराएं, उसमें अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको देख के ही आपके डॉक्टर साहब, कलकत्ता में नेफ्रोलॉजिस्ट काफ़ी हैं, अच्छे लोग हैं, उनको आप दिखा सकते हैं जो कि इसका उपाय आपको बता सकते हैं।
0: जी, प्रकाश कुमार जैन नांदेड़ से लिख रहे हैं, 56 साल इनकी उम्र है, आप लिखते हैं कि बीपी है, शुगर है, गोली लेने से कंट्रोल में, इससे भविष्य में क्या कोई किडनी पर मेरे प्रभाव पड़ सकता है?
2: देखिए, साइंस ये कहती है कि अगर आपका बीपी और शुगर अच्छे से कंट्रोल है तो आपकी किडनी पे इम्पैक्ट आने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं है, क्योंकि शुगर और बीपी एक पूरे शरीर को इन्वॉल्व करते हैं। आप नियमित तौर पे 6 महीने में कम से कम

0: अपनी बेसिक जांच कराते रहें, क्योंकि कई बार बीपी की कुछ दवाइयों के भी साइड इफेक्ट किडनी पे आ सकते हैं। तो समय से पहले अगर आपको कुछ दिक्कत पता चल जाती है तो आप मॉडिफाई करके ट्रीटमेंट को अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: जी, एक बड़ा सा वो लिखा है कि शर्मा जी 75 साल उम्र है और मथुरा राया से लिख रहे हैं। मैं इसको पढ़ देता हूँ डॉक्टर साहब, कि मुझे 7 महीने पहले अटैक पड़ा था, किडनी में भी परेशानी आई, छाती में पानी निकाला गया, डायलिसिस भी हुआ, अभी भी ट्रीटमेंट एक फरीदाबाद के हॉस्पिटल से चल रहा है। इस समय कमजोरी रहती है, पेट साफ नहीं होता, पेशाब भी बार बार आता है, सुझाव दीजिए। प्रोस्टेट की समस्या पर डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया है। पानी कितना पिए?
0: हाँ,
1: सर
0: तो देखिए
1: एक
0: सर,
1: बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वो है इनका।
0: आपकी स्थिति देख के जहाँ तक हमें समझ रहा आ रहा है कि आपके हार्ट का फंक्शन काफ़ी कम है, जिसे कार्डियोमायोपैथी और एलवी डिसफंक्शन कहते हैं, और उसी स्थिति में आपकी किडनी में दिक्कत आई और फेफड़ों में पानी गया और डायलिसिस भी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपको अक्यूट किडनी इंजरी हुई। और अभी आपको कमज़ोरी इसलिए रहती है क्योंकि आपके डॉक्टर साहब निश्चित तौर पर आपको कुछ ऐसी दवाई दे रहे होंगे जिससे आपके शरीर में पानी ना रुके, जिससे थोड़ी सी दिक्कत होती है। पेट साफ़ होने के लिए तो देखिए, आप बड़ी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, और क्योंकि मैं मानना है कि आपके शरीर को थोड़ा डिहाइड्रेट रखा जाता है इसलिए पेट साफ़ होने में दिक्कत होती है, तो आप लैक्सेटिव सिरप आते हैं बाज़ार में वो ले सकते हैं। पेशाब बार बार आने का कारण भी यही है क्योंकि आपकी उम्र 75 वर्ष है, तो आपको 100% तौर पर एक तो प्रोस्टेट भी होगा और प्लस आपकी दवाइयों के माध्यम से भी आपको ज़्यादा पेशाब कराया जा रहा होगा।
1: जी, एक श्रोता है जुड़े
0: और लास्ट पानी कम पिए क्योंकि आपकी स्थिति देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपके केस में पानी ज़्यादा पीना हानिकारक है।
1: जी, एक श्रोता है। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार भैया, बताओ।
2: नमस्कार, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ मथुरा से।
1: ओम प्रकाश जी मथुरा से, बताइए उम्र और समस्या बताइए।
2: मेरी उम्र 70 साल की है।
1: उम्र 70 साल, चलिए बताइए समस्या, डॉक्टर साहब से बात करिए।
2: तो मुझे पेशाब में बार बार पेशाब आता है मुझे।
1: बार बार
0: तो 70 साल उम्र है तो आपको बार बार पेशाब आ रहा है, तो इसका मतलब आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। अपना एक अल्ट्रासाउंड कराइए किसी अच्छी जगह पे, जिसमें पेशाब भरी थैली पे और उसके बाद खाली थैली पे किया जाएगा, और उसके हिसाब से बड़ी सिंपल सा इलाज हो सकता है जो कि आप ले सकते हैं।
2: मुझे बीपी डाउन रहता है।
0: कितना डाउन?
2: ये कभी 80 हो जाए, कभी 90 हो जाए।
0: किसी तरह की कोई दवाई लेते हैं आप?
2: नहीं, कॉफी ले रहा हूँ। मुझे कॉफी बता रहा था, कॉफी पीता
0: हूं। कॉफी से ऐसा नहीं है कि बीपी बढ़ जाएगा। आप एक बार किसी डॉक्टर को अच्छे को दिखाइए, क्योंकि बीपी कम जा रहा है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा।
2: मैं डॉक्टर से बात की थी मैंने।
0: हाँ। जी,
2: तो मुझे कह रहे थे आपको दवा कोई नहीं होती है, आप जब भी बीपी डाउन हो कॉफी पी लिया करो।
0: नहीं साहब, दवा बिल्कुल होती है
1: वो, पहले फर्स्ट एड तो हो सकती है। क्यों डॉक्टर साहब,
0: दवा वो काम नहीं करेगा। दवा हमेशा होती है, लेकिन दवा किसकी देनी है ये ढूंढना जरूरी है।
2: बताते नहीं, मैंने कई बार कहा।
0: आप अगर चाहें तो सिम्स में आ सकते हैं, हम बता देंगे।
2: कहाँ पे?
0: ये राधा वैली पे सिम्स हॉस्पिटल
1: है, अलवर पुल के पास।
2: आपका शुभ नाम क्या है?
0: डॉक्टर आशीष शर्मा।
2: ठीक है सर, मैं
1: आपसे मिलूंगा। जी डॉक्टर साहब, एक जानकारी में ये चाह रहा था कि जैसे कई बार हम स्वस्थ चल रहे हैं, जीवन उम्र कुछ भी हो लेकिन भगवान की दुआ से सब ठीक चल रहा है, अचानक से कोई सिम्टम आया और उसमें आदमी घबरा जाता है, तो इस सिम्टम आने को हम वरदान माने, ईश्वर की कृपा माने कि कुछ अंदर हो रहा है और जो अभी तक हमें पता नहीं था आज हमें पता चल गया।
0: देखिए,
1: तो घबराने की जगह हम उसको,
0: आप देखिए आपके शब्दों में बिल्कुल बहुत ही एक डीप लेवल का सत्य छुपा हुआ है।
1: जी,
0: जैसे मैंने भी पहले भी कहा था कि जब हमें कोई दिक्कत होगी तो शरीर संकेत जरूर देगा, लेकिन भगवान ने हमारे शरीर में हर चीज का एक बैकअप प्लान बना हुआ है। जैसे हम घर में इन्वर्टर लगाते हैं,
1: हाँ।
0: लाइट चली गई तो बैकअप है,
1: कई बार पता ही नहीं,
0: लेकिन लंबी लाइट चली जाने पे वो इन्वर्टर भी बंद होता है।
1: हाँ।
0: ऐसा ही शरीर में भगवान ने हर चीज का बैकअप दिया हुआ है। जब तक आपका शरीर उस चीज को झेल पा रहा है आपको पता नहीं चलेगा।
1: जी जी जी,
0: अभी डिपेंड करता है आपके शरीर के ऊपर, अगर कुछ आ रहा है तो उसका तुरंत निदान कराए, ना कि उसको लेके बैठे।
1: मतलब ये अगर सिम्टम आया है तो इसको इसी रूप में लेना चाहिए, जैसे हमें भूख लगी है तो पता लग जाता है, प्यास लगी है तो पानी पी लेते हैं।
0: बहुत से लोग, सर मैं आपको बताऊं, मैं आता हूं कि ये करा लो, किडनी डॉक्टर साहब ये कराए, कुछ निकल आया तो,
1: हाँ।
0: मैंने कहा कुछ हुआ तो?
1: हाँ।
0: आप उसको छुपा के बैठे हो, अंदर लेके बैठे हो, निकल आया तो ठीक हो जाएगा।

0: आज तिल है कल ताड़ बन जाएगा। तो
1: वो
0: चीज
1: एक बड़ी समस्या का इंतजार क्यों करे?
0: बिल्कुल
1: तो
0: शुरुआत में ही अगर उसका निदान कर ले तो वो बड़ी बनेगी ही नहीं।
1: वो ऐसे ही है कि अगर हवा तेज चली है तो खिड़की बंद कर लीजिए, नहीं तो आंधी का धूल
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: अंदर आ जाएगा उसमें। ये 35 वर्ष की उम्र, वजन 60, शायद सुल्तानपुर मध्य प्रदेश से लिख रही सुनीता सोनी जी। मुझे किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है, किडनी की समस्या भी नहीं है, खान लेकिन नहीं हो उसके लिए थोड़ा सुझाव दें, पानी कितना पीऊँ, खून की कमी आई है,
0: जी।
1: क्या कर सकते हैं?
0: तो मेरी तो देखिए ऐसी ही दुआएं हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और भगवान ना करे आपको किडनी का कोई रोग हो।
1: जी
0: तो किडनी के रोग से बचने के लिए देखिए 35 साल की उम्र है, आपको शुगर बीपी तो नहीं होगा। किसी भी तरह के आयुर्वेदिक दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ जो कि प्रूवन नहीं है, और पेन किलर ज़्यादा ना लें। रही बात, आप फीमेल हैं, 35 साल की उम्र है, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो 99% आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, क्योंकि महिलाओं को हर महीने महीना भी आता है जिसमें ब्लड लॉस होता है, और
1: जी
0: महिलाओं का खान पान इस तरीके का नहीं होता है, तो आपका जो एनीमिया है यानी कि खून की कमी, आयरन डिफिशियंसी है। एक सीरम आयरन और फेरेटिन की जांच कराएं और उसके हिसाब से आप अपने एक फिजिशियन को दिखाएं, वो उचित उपाय बता देंगे।
1: जी चलते चलते एक श्रोता और जुड़ रहे हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, बताइए नाम।
2: जी सर, मैं सुरेश चंद बोल रहा हूँ, राजस्थान रामगढ़ से। जी
1: रामगढ़ राजस्थान, सुरेश चंद जी बताइए।
2: सर, मुझे बार बार पेशाब बाथरूम आता है।
1: उम्र बता दीजिए।
2: उम्र है सर 14, 14, 40 साल।
1: 40 साल, 40 साल तो थोड़ा
0: सुरेंद्र
1: सा
0: जी, 40 साल की उम्र में ऐसा चांस तो कम है कि आपको प्रोस्टेट हो, लेकिन आपकी उम्र में पेशाब की नली के सकरे होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, और एक शुगर जरूर कराइए, क्योंकि 40 साल की उम्र में शुगर जरूर हो सकती है, और एक अल्ट्रासाउंड करा के देखिए पेशाब की थैली भरी पे और उसके बाद खाली होने पे क्या पेशाब रुक रहा है, उससे ही आपका समस्या का पता चलेगा, जिसका कि उपाय किया जा सकता है।
1: जी। अब चलते चलते डॉक्टर साहब, समय कम है लेकिन एक जीवन शैली के बारे में कई लोगों के आए वो थोड़ा ये था कि नहीं हो तो फिर थोड़ा सा एक व्यावहारिक जीवन शैली जिसमें थोड़ा सा व्यायाम हो, अच्छा घर का ताज़ा खाना खाएं, कुछ बता दीजिए जिससे लोगों को
0: देखिए पहली
1: एक।
0: बात तो यह है कि आपका शरीर भी एक मशीन है, अगर आप अपनी मशीन को शांत रखेंगे तो जंग लग जाएगी।
1: जी
0: तो आपका शरीर कैसा भी है, अगर उसको आपने चलायमान रखा है, एक्टिव रखा है, डेली कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज जितनी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए मैं सबको बता रहा हूँ, आप आजकल देख रहे होंगे जिम में कितने लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहा है, बिना बात के आर्टिफिशियल बॉडी बनाने में ना जाएं। आपका शरीर प्राकृतिक तौर पे अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने शरीर के ऊपर लोड डालेंगे, हार्ट के ऊपर लोड डालेंगे। तो एक्सरसाइज नॉर्मल, आप चाहें उसको रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, और साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि रनिंग से ज़्यादा कैलोरीज और हेल्दी इज़ ब्रिस्क वॉकिंग। आपकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा होता है वॉकिंग में ना कि रनिंग में, नंबर एक। तो ये तो एक एक्सरसाइज का पॉइंट है। देखिए मेरा वज़न भी ज़्यादा है, लेकिन अभी एक रिसेंटली 1.5 साल पहले ही पेपर आया है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है लेकिन आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़िया है, मतलब आप अपने शरीर को एक्टिव रख रहे हैं, चालायमान रख रहे हैं, तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है, ये नंबर एक। नंबर
1: कई
0: दो,
1: कई बार मतलब अदरवाइज मत लीजिए, आजकल देखने में वो स्मार्ट मोटे की बात जो होती है कि आदमी भले ही मोटा है लेकिन स्वस्थ है, सामान्य और सामान्य से ज्यादा एक्टिव रहता है वो,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: तो
1: ऐसे
0: मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि
1: लोगों
0: मेरा वजन ज्यादा है,
1: का।
0: ये अभी और उसे पढ़ के कहीं, ये कहीं भी रिसर्च पेपर आया था बहुत बड़ा, उसे पढ़ के कहीं ना कहीं थोड़ी शांति सी तो मिली। तो मैं अपना रक्त बताता हूँ, मैं डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छी करता हूँ, और पूरे दिन अपने आप को चलायमान रखता हूँ। नंबर दो, आपके शरीर में आज की तारीख में किसी भी बड़ी बीमारी का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है धूम्रपान, चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम आएगी 100%, चाहे फेफड़े की, चाहे हार्ट की, चाहे किडनी की, या सबकी, या ब्रेन की। नंबर तीन, खाना, न्यूट्रिशन, अपनी डाइट में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट।
1: जी
0: आज के ज़माने में मॉडर्न डाइट क्या हो रहा है, खूब प्रोटीन खाओ, फैट बंद कर दो, कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, ऐसा नहीं कर सकते।

0: शरीर को तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। आप फैट नहीं खाएंगे तो फैट सोल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी को जो तुरंत सामान चाहिए एक्टिव करने के लिए वो नहीं मिलेगा। प्रोटीन आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, रिपेयरिंग है, सबका एक वो रखना है। अगर आप बंद करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो न्यूट्रिशन डाइट पे जाइए, ना कि आर्टिफिशियल डाइट।
1: जी, मतलब नेचुरल, बी नेचुरल, जो घर में हमारे
0: प्रोटीन सप्लीमेंट्स का बहुत चलन है आजकल। हर आदमी प्रोटीन सप्लीमेंट के जर्प जा रहा है। हजारों तरीके के प्रोटीन सप्लीमेंट आ चुके हैं। और अभी टाइम्स नहीं, कुछ महीने पहले ये एक आर्टिकल दिया था इंडिया में कि हमारे देश में 80% से ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो फेक है। तो वो सारी चीज़ें, मेरे पास भर भर के पेशेंट आते हैं, यंग लड़के जो कि वजन बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, जिसकी वजह से किडनी बैठ गई या लिवर बैठ गया या कुछ और हुआ। तो देख के चीज़ों को लीजिए। लोग जिम में जा रहे हैं, जिम में पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि फिल्म स्टार्स ये सब लेते हैं। सर, फिल्म स्टार्स के पास जो इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्टर बैठे हैं वो हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं।
1: उनका पूरा एक सपोर्टिंग सिस्टम है, कब तो खाना है, कितना
0: खाना, उनकी एक एक चीज को नापा जाता है, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं, एक एक चीज का है कि इतना करके क्या करना। हम एक जिम में बैठ के खाली चार मशीनों के बीच में वो काम नहीं कर सकते। तो अपने शरीर के साथ खेलिए मत। स्वस्थ शरीर तभी रहेगा जब आप उसको स्वस्थ रखेंगे। शरीर अपने आप तो स्वस्थ रहेगा नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के एक नेचुरल लाइफ, शांत पीसफुल लाइफ, इसमें योग करिए, ध्यान करिए, अच्छा साहित्य पढ़िए।
0: मैं परिवार के एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि हमारे गांव के किसान लोग जितने स्वस्थ हैं, क्या शहर के लोग उतने स्वस्थ हैं? नहीं, क्योंकि गांव का किसान आज भी सुबह जाते समय सत्तू पी के जाता है, मट्ठे में डाल के चाय वो करके गुड़ का सेवन कर रहा है, रोटी और सिंपल सब्जी खा रहा है, पूरे दिन मेहनत कर रहा है, शाम को
1: अच्छी नींद ले रहा है।
0: और सबसे इम्पोर्टेंट नींद। आप अगर रात में 10 बजे के बाद सो रहे हैं तो आप जितना लेट सो रहे हैं अपने शरीर को, हार्ट को, ब्रेन को आप कॉम्प्लिकेशन, आप किसी भी उम्र में हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम दिन भर काम करते हैं, रात में रील देखते हैं, कोई 1 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है। आपका शरीर एक क्लॉक से बना है, सर्काइडियम रिदम होती है, शरीर के अंदर घड़ी फिट है, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, उसको छेड़ेंगे तो जो शरीर आपको छेड़ेगा,
1: डिसऑर्डर पैदा होंगे ही।
0: रात में 10 बजे से पहले सोइए, सुबह जल्दी उठिए। एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो 8 घंटे की नींद लीजिए, नींद बहुत आवश्यक है।
1: तो मतलब पुराने फलसफा अभी भी लागू हैं, पुरानी चीजें अभी भी लागू हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर उनको जीवन में ले आएंगे, क्योंकि पारिवारिक लाइफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रही है, छोटे परिवार हो रहे हैं, भागदौड़ बढ़ रही है, तो उनमें कम से कम हमारी जो सुनी सुनाई पारिवारिक बातें, संस्कृति से जुड़ी बातें, दादा नानी की कही बातें उनको अपना लें, तो शायद को बोलना सही, लेकिन उनकी बातें तो हमारे साथ रहेंगी।
0: बातें बिल्कुल सही है सर, ये सब फैशन में भी लागू होता है। आज भी फैशन क्या है, बूट कट, बेल बॉटम फिर आ गया। हम अभी भी पुराना फैशन पहन रहे हैं, लेकिन पुरानी परिस्थितियां और अपने विचारों को नहीं अपना रहे।
1: जी जी जी। तो श्रोता बंधु, आप थे डॉक्टर आशीष शर्मा जी, वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट, सिम्स आकाश हॉस्पिटल में आप रहते हैं, और अच्छी राय, अच्छी बातें, और बड़ी व्यावहारिक बातें, और छोटी और सामान्य बातें, लेकिन अगर अपनाएंगे हम तो निश्चित तौर पर हम किडनी ही नहीं बल्कि किसी भी शारीरिक समस्या से, किसी भी शारीरिक रोग से निजात पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो निकल करके आई वो कि कोई भी रोग का सिम्टम अगर आ रहा है तो वो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। हमारे पास आज विज्ञान ने अच्छी प्रगति कर ली है, अच्छी दवाएं हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी सुविधा है, हम वहाँ जाएँ और कंजूसी ना करें, थोड़ा पैसा अपने जीवन पर भी लगा दें, क्योंकि इस शरीर ने ही आपको कमा के दिया है, तो कुछ परसेंट दे दीजिए, कोई परेशानी, लोग दान में दे देते हैं, आप डॉक्टर को दे आइए, अच्छे हॉस्पिटल को दे आइए, वो भी प्रगति कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप आए और हमारे श्रोताओं से जुड़े, उनकी कुछ समस्याओं का समाधान अपने व्यावहारिक रूप से कीजिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: राधे राधे।
1: थैंक यू सर।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। विषय था किडनी संबंधी रोग, कारण एवं निवारण। विशेषज्ञ थे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स मथुरा।
3: है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज, सिम्स।

0: मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा।
1: FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं पन्ना लाल शर्मा और साथी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाए।

0: जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत के अंतर्गत। कुछ ब्रज लोकगीतों का स्वर दिया है पन्नालाल शर्मा और साथियों ने।
1: कान्हा ने, कान्हा ने।

कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं संपन्न होता है। आज के कलाकार थे पन्नालाल शर्मा और साथी। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
2: In strengthening cooperation against terrorism.

0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक बीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारको में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रूपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागरेट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशकांत।

अभी आप सुन रहे थे समवे स्वरों में देश गान, FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी दुर्गेश भास्कर।

लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा। इसी शुभ संदेश के साथ मैं दुर्गेश भास्कर करती हूँ मेरी सभी प्यारी बहनों का स्वागत कार्यक्रम वनिता लोक में। तो सबसे पहले कीजिए स्वीकार मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। बहनों कैसी ही हैं आप? उम्मीद है अच्छी होंगी और स्वस्थ होंगी, क्योंकि गर्मी तो बहुत अधिक पड़ रही है, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना ही होगा। बहनों किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों पर निर्भर करता है। यदि बच्चे स्वस्थ शिक्षित और पोषित होंगे तभी राष्ट्र मजबूत बनेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना की शुरुआत की है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बाल कल्याण योजनाओं में से एक मानी जाती है। ICDS का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं यानी जन्म के बाद बच्चों को स्तनपान कराने वाली माँ को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराना है। गांव-गांव और मोहल्लों में चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्र इस योजना की रीढ़ हैं। बहनों इस योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण सेवाएं दी जाती हैं। सबसे पहले बात करें पूरक पोषण आहार की।

कुपोषण आज भी एक बड़ी चुनौती है, इसलिए बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण सेवा है टीकाकरण। बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगाए जाते हैं। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच भी की जाती है, ताकि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी दी जाती है। खेल खेल में सीखने की यह प्रक्रिया बच्चों के मानसिक विकास में बहुत सहायक होती है। बहनों, बच्चे यहाँ कविताएं, गिनती, रंगों की पहचान और सामाजिक व्यवहार भी सीखते हैं। आज सरकार द्वारा ICDS सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। कई राज्यों में मोबाइल ऐप और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी रखी जा रही है। इसमें सेवाओं की पारदर्शिता और पहुंच दोनों बड़ी हैं। लेकिन बहनों, सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, समाज और परिवार की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। माता पिता को बच्चों के पोषण, स्वच्छता और शिक्षा के प्रति जागरूक होना होगा। यदि किसी बच्चे का टीकाकरण छूट जाए या वो कुपोषित दिखे तो तुरंत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए। बहनों, एक स्वस्थ बच्चा ही एक स्वस्थ भारत की नींव रखता है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे और माँ तक एकीकृत बाल विकास सेवाओं का लाभ पहुँचे।

बहनों, हम बड़े होकर अपने माता पिता के द्वारा दिया गया अपने जीवन का अमूल्य समय भूल जाते हैं और अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। कई बार हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते, बस कुछ पलों का साथ चाहते हैं वह हमारा। उनके जीवन की प्राथमिकता हम बन जाते हैं और अब तो मोबाइल फोन हमको सबसे महत्वपूर्ण लगने लगा है। तो बहनों, अपने माता पिता का साथ कुछ समय व्यतीत करें, क्योंकि ये समय इतना महत्वपूर्ण होता है। जब वो चले जाते हैं ना, तब इन चीज़ों की प्राथमिकता हमें समझ में आती है। तो समय रहते ही अपने माता पिता को समय दें और उनसे बातचीत करें, क्योंकि अगर वो जब नहीं रहेंगे ना, तब उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनका चेहरा देखने के लिए आप तरस जाएंगे। ऐसे ही एक पिता की आपको कहानी सुनवाते हैं। स्वरचित कहानी है, 1000 रुपये की जिद।

0: या एक बाप का अकेलापन। कहानीकार हैं पूर्णिमा वर्मा।
1: 70 वर्षीय मनोहर कई दिनों से परेशान था। उसके चेहरे की थकान और आंखों की बेचैनी साफ बताती थी कि वह भीतर से कितना टूटा हुआ और दुखी है। सुबह का निकलता, शाम को लौटता, लेकिन मंजिल कहीं नहीं मिल रही थी। बार बार थाने के चक्कर लगा रहा था। कभी एक सिपाही दूसरे के पास तो दूसरा तीसरे के पास भेज देता। हर बार उसे उम्मीद होती कि शायद इस बार उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे यह सिलसिला दिनों से हफ्तों में बदल गया। लोग उसे पहचानने लगे थे, अरे ये तो वही आदमी है जो रोज आता है। लेकिन किसी ने उसकी परेशानी जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन जब वह फिर से थाने के बाहर बैठा था, उसके हालात पर किसी की नजर पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि नए आए एसपी साहब थे। उन्होंने उसे कई दिनों से आते जाते देखा था। आज उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम यहाँ रोज आते हो, आखिर बात क्या है? मनोहर पहले तो घबरा गया। इतने बड़े अफसर के सामने खड़े होना उसके लिए आसान नहीं था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल में दवा दर्द अब बाहर आने को बेताब था। साहब, मनोहर ने धीरे से कहा, मुझे अपने बेटे पर केस करना है। मुझे अपने बेटे से हर महीने 1,000 रुपये चाहिए, लेकिन वो देना नहीं चाहता। मजबूरी में मुझे आपके पास आना पड़ा। एसपी साहब कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने मनोहर की आंखों में झांका। वहां झूठ नहीं था, सिर्फ दर्द था और एक उम्मीद। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम कल 11 बजे आना अपने बेटे को साथ लेकर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर मनोहर के चेहरे पर काफी समय बाद खुशी आई थी। वह घर की तरफ लौटते समय रास्ते में एक मंदिर के सामने रुक गया और भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आज पहली बार लगा है कि मेरी सुनवाई होगी। उसके मन में उम्मीद की नई किरण जल उठी थी। अगले दिन वह समय से पहले ही थाने पहुंच गया। घड़ी की सुइयां जैसे बहुत धीरे धीरे चल रही थी। हर मिनट उसे घंटों की तरह लग रहा था। ठीक 11 बजे एसपी साहब आए। उन्होंने मनोहर और उनके बेटे आशीष को अंदर बुलाया। मनोहर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आशीष थोड़ा नाराज और झुंझलाया हुआ सा था। शायद उसे पसंद नहीं आया कि उसके पिता ने पुलिस तक बात पहुंचा दी। एसपी साहब ने मनोहर जी के बेटे से शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे पिता को हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये चाहिए, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? जिस पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही तुमसे थोड़ा सहारा मांग रहा है। यह कोई एहसान नहीं, फर्ज है तुम्हारा, एसपी साहब ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा था। आशीष ने गहरी सांस ली और एसपी साहब से कहा, सर, ये मुझसे 1,000 रुपये महीने मांगते हैं, वो भी एक बार में नहीं, 500-500 रुपये करके हर 15 दिन में, जबकि इन्हें पेंशन के 22,000 रुपये मिलते हैं। इनके पास सब कुछ तो है, फ्लैट, गाड़ी, पहले नौकर भी था, फिर भी पता नहीं ये हमें क्यों परेशान करते रहते हैं। हमारे भी तो अपने खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई, फ्लैट की ईएमआई आदि आदि। एसपी साहब ने मनोहर की तरफ देखा, क्या ये सही है? मनोहर जी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मुझे पेंशन मिलती है और मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। आशीष तुरंत बोला, तो फिर क्यों मांगते हो पैसे? कमरे में कुछ पल खामोशी रही, फिर मनोहर ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं पैसे अपने लिए नहीं मांगता। एसपी साहब ने पूछा तो फिर मनोहर की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे, ताकि मेरा बेटा महीने में 2 बार मुझे देखने आ जाए। कमरा एकदम

0: शांत हो गया। जब मैं कहता हूँ बेटा आ जाओ तो कहता है टाइम नहीं है, और मोबाइल पर भी तो कहाँ ही बात हो पाती है। कभी कहता है मीटिंग है तो कभी काम है, लेकिन जब कहता हूँ कि पैसों की जरूरत है तो खुद आ जाता है। आशीष मनोहर जी की बात सुनकर जम सा गया। मनोहर जी आगे कहते हैं, अगर मैं एक बार में 1,000 रुपये मांगता तो ये एक बार आता, इसीलिए 500-500 रुपये 2 बार मांगे ताकि ये 2 बार आए, 2 बार मैं इसे देख सकूं। अब आगे मनोहर जी कांपती हुई आवाज में कहने लगे, 2 बार ये यकीन तो कर सकूं कि मेरा बेटा अभी भी मेरा है। आशीष मनोहर की बातें सुनकर भावुक होने लगा था। तभी मनोहर जी आगे कहते हैं, सर कुछ दिन पहले हमारी बिल्डिंग में एक बुजुर्ग आदमी की लाश मिली थी। पता नहीं कितने दिनों से अंदर पड़ी थी, क्योंकि उसकी औलाद इतनी दूर थी। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि एक दिन मेरी मौत हो जाए और मेरे बेटे को पता भी ना चले। अब कमरे में कोई आवाज नहीं थी। मनोहर जी की बातें सुनकर वहां उस कमरे में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। एसपी साहब खुद को थोड़ा संभालते हुए आशीष से सख्त लहजे में बोले, अब समझ आया तुम्हें, ये 1,000 रुपये की जिद नहीं है, एक बाप का डर है, अकेले मर जाने का डर। जिस बाप ने तुम्हें खड़ा किया आज वही तुम्हें देखने के लिए बहाना बना रहा है। आशीष की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे पिता के पास गया और उनके पैरों में बैठ गया। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना व्यस्त हो गया कि आपको भूल ही गया। आप अकेले डरते रहे और मैं अपनी ही दुनिया में मगन रहा। मनोहर जी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए थे बेटा, मुझे तो तुम चाहिए थे, तुम्हारा समय चाहिए था। आशीष ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा, आज से आप मेरे साथ चलेंगे। मनोहर ने उसे देखा, आंखों में आंसू थे लेकिन इस बार डर नहीं था। वह धीरे से बोले, अब मुझे डर नहीं लगता। दोनों साथ में केविन से बाहर निकले। आज मनोहर को 1,000 रुपये नहीं बल्कि उनका बेटा मिल गया था। थाने से बाहर निकलते वक्त आशीष ने अपने बेटे का हाथ इतनी मजबूती के साथ पकड़ रखा था जैसे डर हो कि ये हाथ फिर छूट ना जाए। मनोहर चुप थे लेकिन उनकी आंखों में जो नमी थी वो अब दर्द की नहीं सुकून की थी। पेंशन जिंदगी चलाने के काम आती है लेकिन परिवार जीने की वजह देता है। माता पिता को पैसे की नहीं आपके साथ की जरूरत है। वो अकेले नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ जीना चाहते हैं। आज अगर आप उनके पास जा सकते हैं तो कल का इंतजार मत करिए, क्योंकि रिश्ते वक्त मांगते हैं और वक्त कभी लौट कर नहीं आता।
1: बहनों ने अभी सुनी स्वरचित कहानी 1,000 रुपये की जिद या एक बाप का अकेलापन। कहानीकार थी पूर्णिमा वर्मा। बहनों माता पिता अनमोल हैं, ये बात आप जान चुकी हैं और जानती हैं, तो उनको आपके पैसे नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, और ज़रूरत अगर पैसों की भी हो तो आप उनकी पैसे से भी मदद करें। बहनों माता पिता की बात चली है, दिल भर आया है, कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको।

बहनों, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अपने जीवन के हर कार्य को ऊर्जा और उत्साह के साथ कर पाएंगे। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य और सही पोषण हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और होनी भी चाहिए। क्योंकि बहनों, आज की भागम भाग भरी जिंदगी में लोग काम तो बहुत करते हैं लेकिन अपने खान पान और स्वास्थ्य पर ध्यान देना भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप कमजोरी, थकान, मोटापा, मधुमेह और कई अन्य बीमारियां तेजी से बढ़ जाती हैं। बहनों, शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है संतुलित आहार। हमारे भोजन में हरी सब्जियां, दालें, दूध, फल, अनाज और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। जंक फूड, अत्यधिक तली भुनी चीजों से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है बल्कि शरीर को सही मात्रा में ऊर्जा और आवश्यक तत्व देने का माध्यम है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए पौष्टिक भोजन विशेष रूप से आवश्यक है। इसके साथ साथ नियमित व्यायाम भी बहुत जरूरी है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट टहलना, योग करना या हल्का व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी प्रसन्न रहता है। पर्याप्त नींद और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। बहनों, हमें यह समझना होगा कि स्वास्थ्य ही असली धन है। यदि हम आज अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो भविष्य में बीमारियों से बचा सकते हैं अपने आप को और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।

हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि संतुलित भोजन अपनाएंगे, नियमित व्यायाम करेंगे और अपने परिवार तथा समाज को भी स्वस्थ और पोषण के प्रति जागरूक बनाएंगे। बहनों, गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए नियमित पानी पीते रहें। पानी आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, जैसे जूस, मट्ठा, दही, छाछ, नींबू पानी ले लीजिए, गन्ने का रस ले लीजिए, बेल का शरबत पी लीजिए, सिकंजी पी लीजिए, लेकिन पानी का इंटेक बढ़ा लीजिए। गर्मी बहुत बढ़ रही है, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिए। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि समय हो गया है कार्यक्रम को संपन्न करने का। कल तक जो अजनबी थे, जैसे आप, कल तक जो अजनबी थे आज वो दिल के करीब हैं। हमको आप जैसा दोस्त मिला या बहनें मिली, यह हमारा नसीब है। इसी के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की दुर्गेश भास्कर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोग। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया दुर्गेश भास्कर ने FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म घराना के इस गीत को अभी आपने सुना। गीत को लिखा शकील वदायूनी ने और संगीत रवि का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

0: रूना लैला और भूपिंदर की जुगलबंदी में अभी आपने सुना फिल्म घरौंदा के इस गीत को। गीत को लिखा गुलजार ने और जावेद की तैयार की गई धुन। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।
1: जिसके सपने
0: गीत को लिया है फिल्म गीत से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की जुगलबंदी। हसरत जयपुरी की शब्द रचना और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त तो होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: all departments to ensure that only 50% of Group C and Group D employees attend office each day, while the remaining staff will work from home on a rotational basis. The crucial talks between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. Earlier in his opening remarks, President Xi called for China and the US to be partners, not rivals. In his opening remarks, US President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. The US President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The US President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7 seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last 8. Meanwhile, top seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last 8. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar, Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanak Lata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण।

0: ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने

0: करने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया

0: @yarnews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज शी जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे परिणीति चोपड़ा, सचिन जिगर और कौसर मुनीर को फिल्म मेरी प्यारी बिंदु के गीत के लिए। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: कमाल खान की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के इस गीत को लिखा समीर ने और संगीत जतिन ललित का था। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी, दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार।

0: जाना है दादाजी को लेके?
1: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
2: पर बैंकिंग में नहीं।
3: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
2: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का, और ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं हम FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: उदित नारायण की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म कयामत से कयामत तक के इस गीत को। इस गीत को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की आनंद मिलिंद ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: Three!

साथियों, इस गीत को हमने फिल्म प्यार का कर्ज से लिया है। इस गीत को आवाज दी है अमित कुमार और साथियों ने। आनंद बख्शी की शब्द रचना और सरगम तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सोनू निगम, जयेश गांधी और अमृता कक्कर की आवाजों में इस वक्त आप आनंद लेने जा रहे हैं मैंने प्यार क्यों किया के इस गीत का। इस गीत को लिखा समीर ने और संगीत हिमेश रेशमिया का।

सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 4 बजे हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 4 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है जी। क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आजादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी जी, मेरे बचपन के तरफ, जहाँ पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर, दूसरा था इंजीनियर की। ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन है। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का जी। तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया, बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊँ। हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल की तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी। इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली। एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का,
0: हाँ,
1: लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी, कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना

0: छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती
1: ओह सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
0: है। सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेज कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी एज अ यंग पर्सन। मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की। उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, एसएसबी देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, एसएसबी के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 डेज ऑफ एसएसबी। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
1: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
0: जी बिल्कुल।
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आप से बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित।

0: जी हाँ दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: नाइस। अच्छा, वो भी एयरफोर्स में
1: जी
0: है।
1: हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग
0: अच्छा,
1: कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है।
0: अरे
1: एंड
0: वाह।
1: बिल्कुल, ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया, प्रतीक्षा जी मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी।
0: वाह।
1: और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स एकेडमी पहुंची, एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न, कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग।
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है। बिल्कुल, आपको आपकी पास्ट लाइफ, जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आप

0: आपको लाइफ आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है. तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स. आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है. तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है. सो दैट इज दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें.
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए. लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इंपॉर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सेकंड सेकंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकंड का बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग. हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है. तो इस नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नज़र में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं?
0: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा, वो होता है लीड बाय एग्जांपल. और तीसरी चीज है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज व्हाट इज लीडरशिप फॉर मी.
1: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहां भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं. आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं. तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
0: जी देखिए, महिला या मर्द,

0: मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है. फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है,
1: जी
0: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है. तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है, तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है. सो एज अ वुमेन, अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत जरूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चले. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर. बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है, और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है. तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए. आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं.
1: जी बेहतरीन, मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी, रिपब्लिक डे परेड,
0: हाँ जी,
1: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले, और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक

0: साल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
0: कितनी
1: क्योंकि
0: सुंदर बात।
1: एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का, लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
0: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल। और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल। और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
0: क्या बात है।
1: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
0: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती हैं?
1: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
0: सिर्फ
1: है।
0: 2-3 दिन में?
1: जी हाँ।
0: माय गॉड।
1: और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें। और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है।
0: जी
1: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है। लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली
0: ओ माय गॉड।
1: हूं। बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
0: इनर स्ट्रेंथ
1: इनर
0: बेसिकली।
1: स्ट्रेंथ, वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
0: ऑसम। कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो। तो मतलब ऐसा, जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है। आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव। और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी।
1: जी
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है।
0: जी
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहाँ पे फेलियर्स ना हो।
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
0: बहुत सुंदर।
1: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उभर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में, जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस, जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
1: इमोशनल किया हो,
0: जी
1: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफी सारी चीजें होती है, तो किसी भी रीजन की वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे मेरे नजरिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है,
0: जी
1: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
0: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है। केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और सी डी एस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं, तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया। तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी, तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना 12th पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफ कैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफ कैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: कलाम साहब ने ये बात कही जी, बहुत सुंदर, और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइसी वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं।

0: जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है।

0: मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ ये मैं करूंगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो
1: बिल्कुल.
0: सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं, तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए. तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी. अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है, जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहां अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है. अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे,
1: जी
0: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी. आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं. मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता. तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है. तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए. आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ.
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बार तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूंगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच. शुक्रिया आपका, और दोस्तों सुनते रहिए संदेश.

0: टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का, धन्यवाद, जय हिंद,
1: जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5 बजे और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रेया घोषाल, बेनई सयाल और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म थी गजनी। गीत प्रसून जोशी का था, धुन तैयार की थी ए आर रहमान ने।

ये थे लता मंगेशकर, पंकज उधास और साथी फिल्म थानेदार में। गीत इंदिवर का था, संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। फिल्म संगीत इस समय श्रोता सुन रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

जो भी देखे यही पूछे है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

गुर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आनंद राज आनंद, रेजा शर्मा और साथियों के आवाजों में। बोल जावेद अख्तर के थे, धुन तैयार की थी प्रीतम ने।

समीर के बोल अभी आपने सुने, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म थी गोपी कृष्ण, संगीत दिया था आनंद पिलित ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए राजा रानी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज सबसे पहले बात करेंगे सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन के विषय में। सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन जैसे भारत में एक जटिल प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा संभाली जाती है, क्योंकि लोक व्यवस्था और पुलिस राज के विषय हैं। इसलिए 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान ले लिया है, जिसके तहत सांप्रदायिक असमंजस भड़काने वाले अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो इसका कानूनी ढांचा। सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में हत्या, दंगा, आगजनी और बलात्कार जैसे अपराध BNS IPS के तहत आते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक समूहों के बीच वैमनस भड़काने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसमें राज्य की भूमिका विशेष है। सांप्रदायिक घटनाओं की जांच अभियोजन पीड़ितों को राहत और पुनर्वास की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों की होती है। साथ ही विशेषज्ञों की भागीदारी भी इसमें अभियोजन में अहम हिस्सा है। सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए जिला और सर्किल स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, विधि विशेषज्ञों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। साथ ही इसके लिए कोर्ट के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। गंभीर सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में तुरंत जांच और अभियोजन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि अपराधियों को सजा सुनिश्चित हो सके और जल्द हो सके। विशेष रूप से पुलिस की संवेदनशीलता को भी बढ़ाना इसमें अहम हिस्सा है। पुलिसकर्मियों को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और दंगों के दौरान पीड़ितों की सुरक्षा व न्याय को सुरक्षित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

0: सांप्रदायिक हिंसा विरोधी कदम जो विशेष हैं उसमें से प्रस्तावित कानून है सांप्रदायिक हिंसा निवारण नियंत्रण एवं पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक जैसे मसौदे तैयार किए गए हैं ताकि सामूहिक अपराधों और राज्य संस्थाओं की मिलीभगत से निपटने के लिए कड़े नियम बनाए जा सकें। साथ ही सांप्रदायिक अपराधों के अभियोजन में तकनीकी साक्ष्यों और वैज्ञानिक जांच यानी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को प्राथमिकता दी जाती है। सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन में कुछ चुनौतियां भी हैं जिनमें सांप्रदायिक अपराधों के मामलों में अक्सर गवाहों को डराना या सबूतों का अभाव एक बड़ी चुनौती होती है जिसे दूर करने के लिए विशेष गवाह सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है और इसके लिए सांप्रदायिक हिंसा से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को मानक प्रचालन प्रक्रियाएं यानी SOP प्रदान की जाती है।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: साथियों, अब युववाणी में मार्गदर्शन के अंतर्गत हम अपने साथियों को जानकारी दिलवाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में कैरियर। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी।
6: हमारे युवा साथी आज के भागदौड़ भरे माहौल में अपने भविष्य व अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित नजर आते हैं और उसके साथ साथ कुछ चिंतित भी नजर आते हैं। दोस्तों, आज का युग कंपटीशन का युग है, प्रतियोगिता का युग है। ऐसे में हर इंसान एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है और हमारे युवा साथियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वे कौन सा ऐसा रास्ता चुने जिस पर चलकर वो अपनी मनचाही मंजिल को पा सकें और आज के समय में अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सकें। आज कई सारे क्षेत्र हमारे सामने हैं, उनमें से एक क्षेत्र है पत्रकारिता का क्षेत्र और इस क्षेत्र में आज युवा अपना करियर बना रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। तो आज हम आपको कैरियर मार्गदर्शन में पत्रकारिता के क्षेत्र के बारे में ही विस्तार से जानकारी देंगे। इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है BSA कॉलेज मथुरा के पत्रकारिता विभाग से डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी को। आपका स्वागत है स्टूडियो में।
7: नमस्कार
6: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि पत्रकारिता आखिर है क्या, जर्नलिज्म क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार से हमारे युवा साथियों को बताइए।
7: देखिए, पत्रकारिता से सामान्यतया जो अर्थ सामने निकल करके आता है वो सूचनाओं के प्रसार का आता है।
6: जी,
7: समाज में जैसा कि पूर्व से देखा चला जा रहा है कि समाचार पत्रों के जरिए, रेडियो के जरिए, बाद में फिर टेलीविजन के जरिए समाचारों को, घटनाओं के विवरण को, जिसे हम समाचार कह सकते हैं, उसे एक स्थान से कलेक्ट करके उनका बाकी अन्य सभी लोगों के लिए, जो विभिन्न स्थानों पे इस देश में लोग रहते हैं, जनता रहती है, उसके लिए उनका प्रसारण पत्रकारिता कहा जा सकता है बहुत सामान्य अर्थों में,
6: एक जगह से दूसरी जगह जानकारी को पहुंचाना।
7: जी हाँ
6: डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जर्नलिज्म के जो पहलू हैं, जो आयाम हैं, उसके क्षेत्र आज हमारे सामने काफी विस्तृत अवस्था में बिखरे हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसके आयाम कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं।
7: देखिये, जहाँ तक बात आती है पत्रकारिता के आयामों की,
6: जी,
7: भारत में पत्रकारिता शुरुआती दौर में एक मिशनरीज फॉर्म में थे, सेवा भावना के साथ थे।
6: जी,
7: स्वतंत्रता तक ये लगातार जनसेवा और देश सेवा के कार्य में लगे हुए थे। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति तक यानी 1947 तक
6: सेवा भाव
7: का रहा। उसके पश्चात स्वतंत्रता जब आ गई तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसके स्वरूप में कई बदलाव आए और कई नई आयाम जुड़े।
6: जी,
7: उससे पत्रकारिता के क्षेत्र पूरी दुनिया में

0: बहुत बड़ी क्रांति आई और उसका परिणाम भारत में भी देखने को मिला। राजनीति, विज्ञान, खेलकूद, आर्थिक समाचार, ये कुछ नए आयाम जुड़ते चले गए पत्रकारिता के फील्ड में। तत्पश्चात ग्रामीण पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, इन जैसे नए और आयाम वर्तमान में जुड़े हुए हैं जिनका भारतीय परिक्षेत्र में काफी महत्व सामने आ रहा है। अब 21वीं शताब्दी की बात करें तो इकोलॉजी जर्नलिज्म, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म, साइंस जर्नलिज्म स्पेशलाइज्ड होकर के हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पत्रकारिता अब अपने जीवन के लगभग मनुष्य के जीवन के सभी आयामों में अपना विस्तार दे रही
1: और उससे जुड़ता जा रहा है।
0: जी हाँ
1: डॉक्टर साहब, आपसे मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि जैसे हमारे युवा साथी पत्रकारिता प्रशिक्षण में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ खास तैयारी करनी।
0: देखिए, ऐसा होता है कि पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोई खास तैयारी की आवश्यकता नहीं है
1: जी,
0: लेकिन परंतु फिर भी इतना कहना चाहूंगा कि भाषा ज्ञान की जरूर आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ देश के राजनीतिक धरातल पर क्या घट रहा है, सांस्कृतिक धरातल पर क्या घट रहा है, इसके साथ साथ आर्थिक गतिविधियां क्या चल रही हैं हमारे समाज में, देश में, इन बातों की जानकारी अगर वो रखता है अपने पास तो ये ज्यादा बेहतर होगा उसके पत्रकारिता प्रशिक्षण के लिए।
1: डॉक्टर साहब, जो विश्वविद्यालय, जिस तरह से शिक्षा संस्थान है, जो विश्वविद्यालय है जर्नलिज्म के जो कोर्सेज कराते हैं, डिप्लोमा, डिग्री, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो अपने यहाँ से वो कराते हैं, तो उसका कितना महत्व है, कितने वैलिड है वो हमारे युवाओं के लिए?
0: देखिए, आज के समय में इसका बहुत बड़ा महत्व है। वो जमाने चले गए जब कोई भी व्यक्ति पत्रकार हो सकता था
1: जी।
0: आज पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो विशेषीकृत हो गया है और काफी मॉडर्नाइज हो गया है। यहाँ टेक्नोलॉजी के प्रवेश ने इसे बिल्कुल एक अलग स्थान पर खड़ा कर दिया है। आज पत्रकारिता प्रशिक्षण जो विश्वविद्यालय दे रहे, करवा रहे हैं या निजी संस्थान करवा रहे हैं, उनमें मूलतः एडिटिंग टेक्नोलॉजीज, रिपोर्टिंग की नई टेक्निक्स, इसके साथ साथ मास कम्युनिकेशंस के फील्ड की जानकारी बहुत ही आवश्यक हो गई है। और ये चाहे विश्वविद्यालय हो अथवा निजी संस्थान हो जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो इनकी बारीक से बारीक जानकारी प्रशिक्षणार्थी को उपलब्ध कराते हैं जिससे कि वह लोगों तक समाचारों को सही सही और पूर्ण रूप में और अति शीघ्रता के साथ पहुंचा सके।
1: जी, यानी कि काफी विस्तृत हो गया है इसका क्षेत्र पहले से।
0: जी हाँ, जी हाँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में तो नित नए विकास
1: यहाँ
0: हो रहे हैं।
1: देखिए, जैसे पहले पत्रकारिता का क्षेत्र था काफी सीमित हुआ करता था, लेकिन आज इसका काफी विस्तार हुआ है। डॉक्टर साहब, हमारे युवा साथी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने करियर को किस तरह से बना सकते हैं? अगर कोई युवा चाहे कि वो पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहता है, उसमें आना चाहता है, तो किस तरह से वो अपना करियर बना सकता है, भविष्य उसका उज्जवल हो सकता है इस क्षेत्र में आने के बाद?
0: देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में आज भविष्य बहुत उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: जी,
0: जहां तक युवाओं की बात है कि वो इस क्षेत्र को अपनाएं और उसके लिए उन्हें किन मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा, तो मैं ये कहूंगा कि सामान्यतया देश की परिस्थितियों, उसके विकास क्रम से जुड़ी बातें, राजनैतिक, आर्थिक, सांचारिक और इसके साथ साथ संस्कृति की जानकारी उन्हें अपने पास रखनी पड़ेगी और आने के बाद इस फील्ड में कदम रखने पर उन्हें इन्हीं सब बातों को लोगों तक विभिन्न रूपों में, विभिन्न आकारों प्रकारों में पहुंचाना पड़ेगा और जिससे वो लोगों को सूचित कर सकें,
1: उन्हें बता सकें
0: कि इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसके साथ साथ भविष्य में क्या बदलाव होंगे, क्या
1: हमारे देश की क्या पृष्ठभूमि
0: के साथ साथ कि वो इस परिस्थितियों को समझा सके, जोड़ सके, विभिन्न परिस्थितियों से लोगों को जोड़ सके। तो जो भी युवा इस काम को कर सकते हैं उनका निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में भविष्य उज्जवल होगा।
1: इस तरह इस क्षेत्र में जाने का टैलेंट है
0: जी हाँ,
1: तो उनके लिए भविष्य में काफी संभावनाएं हैं।
0: जी हाँ, इसके साथ साथ मुख्य जरूरतें हैं कि भाषा का ज्ञान,

0: जी
1: आवश्यक है और वो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। इसके साथ साथ उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि वो कुछ कर रहे हैं समाज के लिए। पत्रकारिता का बेसिक एक हम कह सकते हैं कि सर्व टू ह्यूमैनिटी, ये बेसिक मोटिव है पत्रकारिता का। तो उन युवाओं को इस मोटिव को समझ करके भी यहां आना पड़ेगा और जो इसे जितने बेहतर से आत्मसात करेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में वो उतने सफल होंगे और इस प्रकार उनका कैरियर भी उज्जवल होगा।
0: डॉक्टर साहब, पत्रकारिता के लिए जो डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज हैं उसमें नौकरी की कहां तक संभावनाएं हैं? अगर वो ये डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो उन्हें कहां नौकरी किस तरह से मिल सकती है?
1: देखिए, आज पत्रकारिता के क्षेत्र का जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है। लगातार समाचार पत्रों की संख्या बढ़ रही है
0: जी,
1: उनके पृष्ठ बढ़ रहे हैं, साथ साथ न्यूज चैनल्स की भरमार हो रही है। रेडियो है,
0: हर दिन एक न्यूज चैनल हमारे सामने,
1: रेडियो है, तो इन सब जगहों पर इन प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की अति आवश्यकता है
0: जी।
1: और जो लोग बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने को बेहतर परिपक्व करके सामने आएंगे, निश्चित ही उनके लिए एक बहुत अच्छा भविष्य इंतजार कर रहा है इन न्यूज चैनल्स में, समाचार पत्रों में और इसके साथ साथ रेडियो में भी उनके लिए जबरदस्त संभावनाएं हैं और ये सारे क्षेत्र उनका इंतजार कर रहे हैं, स्वागत करने को तैयार हैं।
0: दूरदर्शन भी इसे
1: जी हाँ दूरदर्शन जिसे हम टीवी के में सबको ले लेते हैं, तो दूरदर्शन में तो अति संभावनाएं मौजूद हैं,
0: काफी विस्तृत क्षेत्र।
1: जी हाँ
0: मनोरंजन का क्षेत्र भी इससे
1: मनोरंजन का क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है और आजकल तो मनोरंजन पत्रकारिता करके एक बहुत बड़ा आयाम पत्रकारिता का मौजूद है,
0: काफी बड़ा,
1: जिसमें टेलीविजन, सिनेमा और साथ ही साथ लोकल स्तर पर मनोरंजन करने वाली बातों का भी जिक्र बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।
0: जी डॉक्टर साहब, यहां पर हम अपने युवा साथियों को बताना चाहेंगे, आप उन्हें कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के पते बताएं जहां से कि वो ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें।
1: देखिए, यूं तो वर्तमान में देश के ज्यादातर विश्वविद्यालय पत्रकारिता के प्रशिक्षण दे रहे हैं
0: जी,
1: लेकिन उनमें कुछ की बात करें तो जैसे दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, इस तरह के विश्वविद्यालय जो हैं वो पत्रकारिता प्रशिक्षण में काफी अच्छा योगदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में स्थित है उसका भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है पत्रकारिता प्रशिक्षण में। इसके अलावा एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और उसके पीछे यही उद्देश्य है कि एक बेहतर ट्रेंड जर्नलिस्ट
0: हम तैयार करें,
1: समाज को दे सके या पत्रकारिता जगत को दे सके। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट संस्थान हैं देश भर में जो ऑडियो विजुअल जर्नलिज्म, प्रिंट जर्नलिज्म, इस तरह की चीजों पर लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं।
0: तो क्या प्राइवेट सेक्टर जहां पर ये प्रशिक्षण देते हैं उन्हें भी इतनी वैल्यू और महत्व है जो सरकारी संस्थानों को है या उसे?
1: देखिए, वर्तमान में हमारी सरकार का ये एक भूमिका रोल है, वो ये प्राइवेटाइजेशन को वो बढ़ावा दे रहे हैं
0: जी।
1: तो ऐसे माहौल में प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी ज्यादा पीछे नहीं है
0: अच्छा।
1: विश्वविद्यालयों या सरकारी इंस्टीट्यूट्स की
0: समकक्ष
1: ही हैं, लेकिन उनकी अपनी एक भूमिका है और विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण संस्थानों की, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों की अपनी एक भूमिका है और दोनों ही निश्चित तौर पर बेहतर पत्रकार प्रदान करने के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं।
0: ये तो व्यक्ति के टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद में कितना कुछ कर सकता।
1: कुछ हद तक तो व्यक्ति का निजी कार्य जरूर सामने आता है।
0: डॉक्टर साहब, आपने हमारे स्टूडियो में आकर आज हमें काफी अच्छी जानकारी से नवाजा और साथियों, जिस तरह से आपको पत्रकारिता के बारे में ढेर सारी जानकारी मिल गई और आपको ये भी डॉक्टर

0: ने बताया कि आप पत्रकारिता क्षेत्र से प्रशिक्षण, डिप्लोमा, डिग्री जो भी कुछ करना चाहें, आपके भविष्य की उज्जवल संभावनाएं उसमें निहित हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पत्रकारिता के क्षेत्र में कैरियर अभिसाथी मार्गदर्शन के अंतर्गत जानकारी ले रहे थे डॉक्टर आनंद त्रिपाठी से, और अब रुकते हैं इस व्यावसायिक अंतराल के लिए।

मित्रों, अब बात करते हैं पुस्तकें जो कि जीवन का आधार है। पुस्तकें जीवन का आधार यानी बुक्स आर द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, एक बहुत ही सशक्त कथन है जो मनुष्य के विकास में पुस्तकों के महत्व को दर्शाता है। पुस्तकें केवल कागजों का समूह नहीं बल्कि ज्ञान, अनुभव, विचारों का भंडार होती हैं। पुस्तकें हमें दुनिया भर की जानकारी, इतिहास, विज्ञान और कला से भी परिचित कराती हैं, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। किताबें हमारे जीवन की सबसे अच्छी साथी होती हैं।

जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है वे हमारे लिए उपलब्ध होती हैं। पुस्तकों से हमारी आसपास की दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती हैं। वे हमारे आदर्श मार्गदर्शक या सार्वकालिक शिक्षक के रूप में भी हमारे जीवन में शामिल होती हैं। किताबें पढ़ने से न केवल हमारे व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन आता है बल्कि हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करती हैं, साथ ही यथासमय लक्ष्य प्राप्ति में भी मददगार हैं। छात्र जीवन में तो पुस्तकों का विशेष महत्व है। छात्र जीवन संघर्ष की एक अनूठी दास्तान होती है और इसके दौरान संघर्ष

अनूठी दास्तान होती है और इसके दौरान संघर्ष की सच्ची साथी होती है हमारे साथ हमारी किताबें। हर छात्र को निश्चित रूप से किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जो न केवल सिर्फ प्रतियोगी जीवन की ही साथी नहीं बल्कि ये जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। क्योंकि छात्र जीवन का विकासशील चरण होता है, उन्हें अपने माता पिता, शिक्षकों और बड़े द्वारा अच्छी तरह से निर्देशित करने की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ किताबें जीवन में निर्णय लेने की कला सिखाती हैं। आखिरकार हमारा जीवन हमारे निर्णयों का ही तो परिणाम होता है, इसलिए किताबें हमारी सहयात्री होती हैं। पढ़ना एकाग्रता को बढ़ाता है, जिससे छात्र जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। रोजाना कुछ घंटों के लिए पढ़ना शब्दावली के साथ साथ भाषा कौशल के निर्माण में भी मददगार साबित होता है। पुस्तकें विद्यार्थियों को दुनिया के बारे में नई जानकारी, विचार, तथ्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। किताबें पढ़ने से छात्र बुद्धिमान बनते हैं और परीक्षाओं में अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को एक नेक दिल इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करती हैं और नैतिकता के मूल्यों से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ना विद्यार्थियों को अच्छे गुणों से समृद्ध करता है और वो इस प्रकार वे बड़े होकर समाज के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। इन दिनों इंटरनेट, मोबाइल फोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। छात्र इन तकनीकों से अध्ययन के लिए एक अच्छा विकल्प मानते हैं, लेकिन ये तकनीकें किताबों के महत्व को कभी खत्म नहीं कर सकती। जब भी हम किताब पढ़ते हैं तो हमें कोई ना कोई नई जानकारी मिलती है, साथ ही कई अनसुलझी बातें भी होती हैं जिनका सवाल का जवाब हमें इन्हीं किताबों से मिलता है और इन छात्रों को पढ़ने से खोजने की क्षमता बढ़ती है और यह हमारे दिमाग को एक अच्छा व्यायाम प्रदान करती हैं और दिमाग को तेज करने में सबसे अच्छा सहारा भी बनती हैं। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्ययन के श्रेष्ठ विकल्प कोई नहीं है, इसलिए किताबें मानव की सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो सदैव सर्व पर्दर पर्द जीवन के उतार चढ़ाव में से परिचित कराती हैं बल्कि हर मुश्किल वक्त में एक दोस्त की भांति मनुष्य का साथ देती हैं।

0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6 बजने को कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
2: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय

0: कार्यालय सप्ताह में दो दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब प्रस्तुत है हमारे यहाँ से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात 9:30 पर कंट्री वाइड कार्यक्रम होगा। इनसाइट्स प्रोग्राम का प्रसारण किया जाएगा रात 9:45 पर, और ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ देर बाद संध्या 6:15 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम होगा, जिसमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपाय पर चर्चा करेंगे दीपक गोस्वामी। वार्ता होगी प्रगतिशील किसान से फसल उत्पादन के अनुभव, किसान होंगे गेंदालाल, साथ ही पशुओं के पोषक आहार पर डॉक्टर शालिनी वासवानी से दिलीप यादव की बातचीत सुनवाई जाएगी। कुछ लोकगीत होंगे, साथ ही मौसम का हाल और बाजार भाव बताया जाएगा। समय रहेगा संध्या 6:15।

फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का प्रसारण होगा आज सायं 6:45 पर। संध्या 7:05 पर वे साहित्य कार्यक्रम में देह समारोह में श्रोता लेंगे जानकारी एलोरा की गुफाओं के विषय में। वार्ताकार होंगे ऋचा यादव।

देशकान का समय रहेगा आपसे कुछ देर बाद संध्या 6:10 और रात्रि 8:20। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे संध्या 7:20 पर।

श्रोताओं के बैठ सब संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा शाम सुहानी संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत श्रोता सुनेंगे रात 8 बजे। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर। चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने का समय रहेगा रात 9:15।

विधायक होंगे मोहित कुमार। समय रहेगा आज रात 10 बजे। रात्रि 10:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज श्रोता सुनेंगे उस्ताद बाबू खां के गाई ठुमरी और दादरा। हिंदी समाचार होंगे रात 8:45 पर और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा रात्रि 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। हमारी दूसरी सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। यह था आज का कार्यक्रम विवरण। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति पर कृष्णा।

आज रात 10 बजे श्रोता सुनेंगे रूपक, जो कि अधिक मास में गोवर्धन परिक्रमा पर आधारित होगा। चलो परिक्रमा देव आवें। प्रस्तुति मंजुला तिवारी की होगी। प्रस्तुति

सुरेश गुप्ता और साथियों के सुर में अभी आपने ये देश गान सुना। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब श्रोता सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दीपक गोस्वामी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को हमारी राम राम। भैया, हमारे खेत में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है हमारी माटी। अगर हमारी माटी स्वस्थ है तो हमारी खेती भी बढ़िया होगी। अब या के काज आवश्यक है कि हम अपनी जो खेत की माटी है वाय उर्वरक बनाएं, वाय ऐसी बनाएं कि हमारी जो भी फसल हम करें वो बहुत ही अच्छी हुए। तो या के लिए भैया आवश्यक है कि हम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, ये हमारे अनुभव की बात है। जैसे कि जैविक खाद को हम प्रयोग करें, या मैं गोबर की खाद ऐ सके, या मैं बर्मी कंपोस्ट ऐ सके, या हरी खाद ऐ सके। गोबर की खाद में 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हमें जाय डाल सकें, जैसे सूक्ष्म जीव भड़े। बर्मी कंपोस्ट कैचुआ खाद जो हमारी है ये मिट्टी भुरभुरी बनाए और सूक्ष्म पोषक तत्व भी देवे। हरी खाद में ढेंचा, सनई, लोबिया जैसी फसल हम उगाए के बामे मिट्टी में पलट के वाय अगर जोत दें तो हरी खाद बन जाए। ऐसे भैया सबसे बड़ी आवश्यक चीज है फसल चक्र। लगातार एक ही फसल हमें नहीं लेनी चाहिए, एक फसल के बाद दूसरी, यानी बदल बदल के दलहनी फसल जैसे चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन अपनी खेती में शामिल अवश्य करनी चाहिए। या तो हमारी खेती में जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन खींच के मिट्टी में अपनों प्रभाव छोड़े। अब भैया बात आवे जीवामृत और जैव उर्वरक की। जीवामृत आप जान ही हो कि जब हम अपनी खाद बनावें, बर्मी कंपोस्ट, तो वही प्रक्रिया में जीवामृत भी बने।

10 लीटर पानी, 1 किलो गोबर, 1 लीटर गोमूत्र, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम बेसन और या 3 दिना छाया में रख के 200 लीटर पानी मिला के हमें सिंचाई हम कर सकें, या कि विधि है कि हम समझ सकें। अब भैया बात आवे कि हम अपनी मिट्टी पानी की जांच अवश्य कराएं, आंख बंद करके अंधाधुंध हम यूरिया नहीं डालें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूरिया डालेंगे तो वो कोई हमारे काम की वस्तु ना आए, वो सिर्फ हमारी लागत बढ़ाई सके, लेकिन हमारी जो जमीन है वहाँ पे वो आपको बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा नुकसान होएगा। ज़्यादा रासायनिक खाद से हमारी मिट्टी सख्त है जाबे और बंजर भी हैबे की संभावना हो। भैया बार बार गहरी जुताई थी, मिट्टी के फायदेमंद जीव मर जावे और संरचना टूटे, जैसे संभव हो तो कम जुताई करें और फसल के अवशेष खेत में ही सड़ें, या की ध्यान रखना है। और भैया यह बात तो विशेष ध्यान रखना है कि फसल के अवशेष हमें जलाने नहीं है। एक बात और बहुत भैया, पुरानी कहावत है कि खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में, तो यह के काज आवश्यक है कि हम खेत में मेड़बंदी भी करें, खेत की मेड़ पे नीम शीशम सहजन के पेड़ लगावें और मेड़बंदी करवे थे। ये फायदा है कि भैया हमारी जो मिट्टी है आपको कटाव रुकेगा, उपजाऊ परत हमारी मिट्टी की नहीं बहेगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हमारी मिट्टी में पोषक तत्व रहेंगे, रासायनिक खाद को हम कम प्रयोग करेंगे, जैविक खाद देंगे, तो हमारी मिट्टी में संतुलन बढ़ेगा, उर्वरता बढ़ेगी और हमारी खेती भी अच्छी होगी। और जब भैया खेती अच्छी होगी तो मन करे है कि कहीं दर्शन करवे जाएं, घूमे जाएं, कहीं गीत संगीत को आनंद लें, तो आपको सुनवा में है यह ब्रज लोकगीत।

0: गर्राज बास में पाऊं ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। अभी विजय कुमार के स्वर में आप आनंद ले रहे या ब्रज लोकगीत को। भैया हमारे पशुन के दुग्ध उत्पादन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पोषक आहार। आज हम यही विषय पे आपको जानकारी दिला रहे हैं, पशु के पोषक आहार जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी बासवानी और इनसे बातचीत कर रहे हैं दिलीप यादव।
1: किसान भाइयों, पशु पालना बहुत महंगा हो गया है। कोई भी भैंस 50-60 हजार से कम की नहीं है और अच्छी नस्ल की दुधारू गाय भी 40-50 हजार से नीचे नहीं है। अब पशुपालन निश्चित रूप से बहुत महंगा हो गया है, लेकिन पशुपालक अपने पशु को अच्छा खिलाना चाहते हैं, उनसे अच्छा उत्पादन चाहते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि पशु समय से गर्मी में आए और समय से ठहर जाए ताकि उसका जो चक्र है वो बिगड़े नहीं। तो ये सारी चीजें तभी संभव है जब हम पशुओं को एक संतुलित खुराक दें, और संतुलित खुराक में कई सारी चीजें शामिल होती है। बहुत सारी चीजें हमारे पशुपालक देते हैं, चाहे वो चुनी हो, चोकर हो, खल हो, ये सारी चीजों के अलावा विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल्स, बहुत सारी सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताएं रहती हैं। और इन आवश्यकताओं को अगर हमें पूरा करना है तो निश्चित रूप से हमें विज्ञान और वैज्ञानिकों का साथ लेना पड़ेगा। हम हैं आज वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा में और हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी वासवानी। आप सहायक आचार्य हैं पशु पोषण विभाग में, और वेटनरी विश्वविद्यालय ने कई तरह की जो फीड ब्लॉक है, ब्रिक्स है जिनमें खनिज लवणों की जिनसे पूर्ति होती है, और मिनरल मिक्सचर है, ये सारे उत्पाद बनाए हैं और ये बाजार से बेहद कम कीमत पे हैं। तो कौन कौन से उत्पाद आपने बनाए हैं, आज डॉक्टर शालिनी वासवानी हमें इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए हम सब जानकारी भी लें और जानकारी के साथ में इसका लाभ भी हमें लेना है।
2: जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि वेटनरी विश्वविद्यालय में पशु पोषण विभाग के तहत हमारे पास एक आरकेवाई परियोजना थी जिसके तहत हमने ये सारी चीजें एस्टेब्लिश की हैं, और इसमें हमने मुख्यतः फीड प्रोसेसिंग यूनिट, इसके साथ साथ मिनरल मिक्सचर प्लांट और फीड ब्लॉक यूनिट लगाई है। इसमें आपको यहाँ पे हमने जो बेनिफिशरीज हैं, जो किसान भाई हैं, जो आसपास की गौशालाएं हैं, उन सबके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही

0: सस्ते और न्यूनतम रेट्स पे एक बेहतर और एक संपूर्ण पशु आहार बना रहे हैं, जिसमें हम अश्योर करते हैं कि जो क्वालिटी वाइज है, यानी कि जो हमारे जो पशु आहार बन रहा है उसमें हर तरह की पोषक तत्वों की एक निर्धारित मात्रा है, एक सही क्वालिटी में वो सब उसमें वहां पे सम्मिलित हैं। इसके अलावा इनको खिलाने से आपको बहुत ईजी रहेगा कि ऐसा नहीं करना है कि आपको सानी बनानी है या आपको खल खरीदनी है अलग से या इस तरीके की। इसमें हमने सारी चीजों का समावेश एक इक्वल प्रपोर्शन में करके एक अच्छे फॉर्मूले के तहत हमने प्रोडक्शन के हिसाब से पशुओं के, और इसको एक निर्धारित रेट पे हम यहाँ पे सेल करने के लिए भी डाला हुआ है, जिससे कि यूनिवर्सिटी की जो इस चीज की जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो इस प्रोजेक्ट के तहत हमने ये सारी चीजें डेवलप की हैं, तो हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों को इसका भला हो। तो इसकी ही हम उम्मीद करते हैं कि जो भी किसान भाई इस तरह के फीड, जो कि हम कहते हैं कि कंसंट्रेट मिक्सचर या दाना मिश्रण या संपूर्ण पशु आहार, इसके हमारे पास एक पाउडर फॉर्म में भी उपलब्ध है। साथ में हम इसको एक पैलेट, एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं पैलेट फीड, वो पैलेट फीड भी हमारे पास उपलब्ध है। तो आप कभी भी किसान भाई इंटरेस्टेड जो लोग हों वो यहाँ पे आकर के और हमें संपर्क करके इन चीजों को लेके जा सकते हैं, अपने पशुओं को खिला सकते हैं। इसके साथ साथ आपने सही बोला कि हमारे पशुओं को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत आवश्यकता है, जो कि सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहलाते हैं, जिसमें कि मुख्यतः मिनरल्स और विटामिन्स आते हैं। प्रायः पहले के लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है खनिज मिश्रण का खिलाने की, क्योंकि ये तो कभी नहीं खिलाया गया और पशुओं को तो हमने शुरू से ही अपने साथ रखा है। तो इन चीजों की जरूरत इस तरह बढ़ी कि पहले जो भी कोई चीज हमारी जमीन में थी वो जमीन से के प्लांट्स में आती थी, पौधों में आती थी, और पौधों के जरिए फिर ये एनिमल में जा रही थी। लेकिन अब ये चक्र पॉजिटिव नहीं रहा है। अब मान लीजिए कि जो हमारी सॉइल है उसमें बहुत सारे मिनरल्स की डिफिशियंसी हो चुकी है, बहुत सारे मिनरल्स तत्व जो है कमी आ चुकी है उनमें, जिससे कि बहुत कम अमाउंट हमारे पौधों में शिफ्ट हो रहा है और उससे भी कम अमाउंट हमारे एनिमल्स में शिफ्ट हो रहा है। और ये सूक्ष्म तत्व ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में बॉडी को चाहिए, लेकिन इनकी एब्सेंस की वजह से या इनकी डेफिशिएंसी से जो रिजल्ट्स आएंगे या जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो काफी मेजर हो सकते। तो बेहतर इम्यूनिटी, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर प्रजनन क्षमता, बेहतर प्रोडक्शन के लिए आवश्यक ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो बॉडी में जितनी निर्धारित मात्रा है वो उपलब्ध रहे। तो इसलिए अब जो है एक मिनरल मिक्सचर के थ्रू इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सप्लीमेंट करने का एक आप मान लीजिए कि ट्रेंड है, और एक सही ट्रेंड है जो कि उत्पादन को भी आपका बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो इसलिए ही हम ये मिनरल मिक्सचर्स बना रहे हैं, जो कि हमारे रीजन में जो मौजूद जो पेड़ पौधे हैं, जो चारा फसलें हैं, जो पशु आहार में जो चीजें दी जा रही हैं, उनकी स्टडी और यहाँ के पानी और सॉइल की स्टडी के बाद हमने जो यहाँ पे देखा है कि कुछ मिनरल्स अगर हम ज्यादा दे देते हैं तो वो दूसरे मिनरल्स की भी उनकी उपलब्धता को भी इंटरफेयर करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि कुछ एक्स्ट्रा ही खिलाना है। तो जिस तरीके से हमारे रीजन में जो आवश्यकता है, हमारे जो इस पर्टिकुलर ब्रिज रीजन में जो चीजें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा मिनरल मिक्सचर तैयार किया गया है सारी स्टडीज के बाद। और एक तो हमारे किसान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनको भी लगता है कि उनको खनिज मिश्रण पशुओं को खिलाना चाहिए, तो ये बाजार में तो आप देखिए तो ये 100 रुपए से लेकर के 250 रुपए तक की कीमत के आपको बहुत लंबी रेंज है आपको उपलब्ध मिलेंगे। लेकिन जितना हमारे पशुओं को, हमारे रीजन के पशुओं को आवश्यक है, उस हिसाब से हमारे यहाँ न्यूनतम रेट्स पे 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमारे पास मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है, और वो आप यहाँ से परचेज करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्लॉक बनाए हैं, और एक हमने दाना और सूखा चारे को मिक्सचर करके कंप्रेस्ड फीड ब्लॉक्स बनाए हैं। तो ये भी हमारे पशु बड़े चाव से खाते हैं, और इसमें भी हम कुछ ऐसी चीजें भी डाल लेते हैं जो कि हमारे पशुओं को, वैसे आप पशुओं को देंगे तो पशु जो है सेलेक्ट करके किनारे कर देते हैं और उसे नहीं खाते हैं। तो ऐसी चीजों को का भी हम समावेश करके उनकी डाइट को हम सस्ता बना सकते हैं, और हम एक पुआल का भी अच्छा उपयोग कर सकते हैं या भूसे का भी अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो एक ही ब्लॉक अगर आप देते हैं 5 किलो का या 3 किलो का बनाया जाता है, तो एक कंप्लीट खुराक आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि विश्वविद्यालय के थ्रू आपकी तरफ हम चाहेंगे कि आप लोग इस चीजों से अवेयर हों, और इन यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं, जो नई रिसर्च हुई है, उसकी जानकारी के साथ साथ आप उनको यूज करके अपने पशुओं का को बेटर प्रोडक्शन ले सके, उनसे उनकी हेल्थ स्टेटस मेंटेन कर सके, और अपनी भी इकोनॉमिक्स को बढ़ा सके, अपनी भी इनकम सोर्सेस को इंक्रीज कर सके।
1: अब भाई हमारे भैया जानकारी ले रहे पशु के पोषक आहार के

0: बंधन के संबंध में जानकारी दे रही डॉक्टर शालिनी वासवानी और इनसे बातचीत कर रहे दिलीप यादव। भैया पशु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भैया पशु जब हम खरीद के लाएं तो यही उम्मीद से रखें कि हमारे पशु स्वस्थ रहें और हमें दुग्ध उत्पादन करके या जो उद्देश्य के लिए हम पशु लाएं वो उद्देश्य हमारा पूर्ण हो, वाके लिए देखभाल जरूरी है। और यह वर्तमान मौसम को देखते हुए हमारे किसान भैया को सलाह ये दे दिया हुआ है कि पशुओं को रात के दौरान खुले में रखें और पशुओं को दिन के समय छायादार स्थान पर बांधें और पेड़ के नीचे पशुओं को ना बांधें, क्योंकि यह सप्ताह हवा की गति सामान्य से तेज चलने के कारण पेड़ पौधों की टहनी गिरने की संभावना भी है सके। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के काजे टीकाकरण अवश्य कराएं। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 3 से 4 बार पिलाएं। गर्भित पशुओं को ढलान वाले स्थान पर ना रखें। पशुओं को पेट में कीड़ा की जो दवाई है व कृमिनाशक दवाई देवे को भी उचित समय है। तो भैया अब आपको किसान भैया के अनुभव से जानकारी दिमाग में है हमारे प्रगतिशील कृषक से फसल उत्पादन के संबंध में उनके अनुभव जानकारी दे रहे हैं हमारे किसान भैया गेंदा सिंह।
1: किसान भैया आज हमने अपनी चौपाल में आमंत्रित करे हुए एक प्रगतिशील किसान है और जिनको नाम है गेंदा सिंह रावत, गांव मगटई के रहवे वाले हैं और खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। तो गेंदा सिंह रावत जी आपको हमारी चौपाल में स्वागत है। राम राम सा।
2: राम राम सा।
1: तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप आए हो आज अपने विचार देवे का जे, कितनी खेती है, कितनी जमीन है तुम पे?
2: 40 बीघा के करीब जो है मेरे पास जमीन है।
1: कच्ची बीघा है सर?
2: कच्चे बीघा हमारे।
1: अच्छा 40 बीघा जमीन है। और साहब सिंचाई को क्या साधन है?
2: अपनी समर जो है बिजली की लगी हुई है,
1: यानी सिंचाई को पूरा साधन है।
2: हाँ।
1: के जब पानी की जरूरत पड़े तब
2: जमीन जो है अपन पानी चालू कर देते और फसल में लगा देते।
1: अच्छा तो अब जा वक्त खेत में कौन कौन सी फसल तैयार है?
2: इस वक्त जो है खासतौर से कपास है और कुछ जो है थोड़ी सी अरहर भी है जो वो बहुत जरूरी है दलहन के लिए, हमारी दाल वगैरह के लिए, और बाजरा की खेती ज्यादा, पशुओं का चारा है जिसे जोड़री बोलते हैं, चरी बोलते हैं।
1: अच्छा तो मूल रूप से तो कहा है कि आप कपास की खेती ज्यादा करो।
2: कपास पे
1: संग संग जो घर में जैसे पशुओं का चारो है गो, घर का जो दाल है गई या और दाल के तो दूसरे भी फायदा है कि भैया फसल चक्र में एक दलहनी फसल होए तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तो जाग में अब जो कपास के अंदर या जाग फसल के अंदर अब ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जाको ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भैया?
2: सबसे पहले जागड़ी जो है कपास का समय बिल्कुल खिलने का चल रहा है तो जो चुनाई करते हैं बिनाई जो करें उनकी अच्छी तरह से ग्रेडिंग करके अलग अलग कपास रखें। कपास में जो है कीड़ा भी लगा हुआ है तो उसकी रोकथाम के लिए बहुत सी मार्केट में दवाएं आ रही हैं, उसका स्प्रे कर दे अभी। और खासतौर से जो है कपास की मेन चीज है सुखा करके उसे जो है बोरे में भरे, यानी टाट वाले में, जूट वाले में, और प्लास्टिक के में कभी नहीं भरे या खुले में अपने अंदर रखे। और अगर प्लास्टिक के में रखेंगे तो उसका रंग जो है बदल जाएगा, पीलापन पर आ जाएगा, उसका जो सफेदपन है उसमें कुछ जो है अंतर पड़ जाएगा।
1: अच्छा देखो दो तीन बातें को जिक्र करे आपने, तो सबसे पहले जो बात बताई कि भैया कछु किसान भैया ऐसे हैं जिनकी फसल अभी तैयार है और कभी को कीड़ा लगने की समस्या में है रही है
2: जी। हाँ।
1: तो ऐसे किसान भैया तो जाके फसल में अभी कीड़ा आए की संभावना है तो वह काजे उपचार काजे अब क्या करना चाहिए किसान?
2: सबसे पहले बात तो जो है कि हमारे हर जिले में जो है कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं। किसान जो है स्वयं न जाकर के दुकानदार से सीधा जाकर के उनसे मिले विज्ञानकों से और उन्हीं के बताए हुए राय के मुताबिक जो उसका स्प्रे करे और छिड़काव करे ताकि हमें कोई नुकसान हो पाए।
1: अच्छा तो एक बात और ऐसा कि ज्यादातर तो किसान भैया ऐसे हैं कि भैया गांव में तो नहीं करे और जो सबसे पहले कस्बा पड़े हो या दुकान पर ही हम चले गए, दुकानदार से पूछी कि भैया ऐसी ऐसी परेशानी आ रही है वो हम दुकानदार दवाई दे देते हैं और कि भैया इतना छिड़काव कर दो वाते, कई बार तो ऐसा होता है कि दवाई सही मिल जाते हैं, ऐसा कई बार होता है कि दवाई जो है नकली दे दे के दूसरी डेट निकलवे की दे दे या ऐसी दवाई दे दे जाकि जरूरत ना आती खेत में, तो ऐसी परिस्थिति में किसान ने नुकसान रहे?
2: जी हाँ नुकसान, खास तौर से जो अगर स्प्रे नहीं किए और स्प्रे लास्ट में करना ही है तो मोनोक्रोटोफॉस का जो है स्प्रे कर दे किसान
1: अच्छा,
2: और उसके साथ में अभी फूल वगैरह अभी समय बहुत है, अक्टूबर और नवंबर में जाके खलते हैं खेत इसके, तो ह्यूमस एसिड नाम का एक टॉनिक है उसका छिड़काव करने जाते हैं।

0: हमारे अच्छी तरह से फूलाएंगे, गुलर बनेगा, हमारे उत्पादन बढ़ जाएगा।
1: अच्छा, तो जैसे मोनोक्रोटोफास जो ये दवाई बताई गई, तो जैसा हर जगह मिल जाए।
0: हाँ,
1: और जो मोनोक्रोटोफास दवाई है जाको, अब मात्रा कितनी लगेगी?
0: मात्रा तो वैसे उस पर जो है हेक्टर के हिसाब से लिखी रहती है, लेकिन जो है आप ज्यादा ज्यादा 500-600 मिलीग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग करें।
1: अब गेंदा सिंह जी, तुम तो खुद किसान हो, अब हेक्टेयर है तो ज्यादातर हमारे जो
0: 12 बीघा
1: को एक हेक्टेयर हो कच्ची बीघन को, लेकिन अब जो किसान होता है वो तो पेंगुआ इतनो ज्यादा अंदाज ना है कि इतनी दवाई ले, इतनो पानी ले, इतने को साधन ना होते कि 5 से 6 लीटर की एक टंकी का वो मिल जाएगा हमें। तो ज्यादातर जो किसान भैया हथकाए जो पीछे पीठ पे लाद के जाते जो सिंचाई वो
0: स्प्रे
1: वालों मशीन है का वह को इस्तेमाल करें, तो अगर ऐसी कोई विधि बता दो कि भैया 15 लीटर को जो टैंक हों तो वहां में कितनी दवाई डाल लो करें।
0: एक स्प्रे मशीन में जो है 2.5 या 3 मिलीग्राम उस दवा को मोनोक्रोटोफास को मिलाए और 13-14 लीटर पानी भरे उसका छिड़काव कर दे।
1: अच्छा, तो कहवे वाली बात ये है कि भैया जो तुम्हारी जो चम्मच है चाय की,
0: हाँ,
1: चम्मच जो है, हाँ, तो एक चम्मच से नकाद कमती लेके और वहां में एक टंकी में दवाई डाल के वहां को स्प्रे कर दे। अच्छा, तो जी बात तो जी वही के कीड़े ते जो आते मुक्ति मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो तुमने अभी कही कही कि भैया जब वहां को भंडारण हम करें का है, चुनाई हैवे के बाद वहां को भंडारण करे का है, तो किसान भैया कहा है कि कब को तो गाय चुके जैसे खाद के जो बोरा
0: है
1: वही में वह भर दें।
0: हाँ जी, ये गलत है किसान के लिए, उसे कभी जो है बोरा टाट इसमें जो टाटके में भरना चाहिए या खुले में रखना चाहिए।
1: ऐसा खुले में रखने की आवश्यकता का है सर?
0: नहीं, उसमें ऐसा है कि जितनी नमी उसमें रहेगी तो उसका रंग जो है उतना ही खराब रहेगा, और अगर सूख जाएगी बिल्कुल हमारी उसमें खुले में तो उसका रंग बिल्कुल साफ रहेगा और मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और अच्छी रेट मिल जाएंगे किसान।
1: अच्छा, जाके अलावा
0: प्लास्टिक के बोरा में रंग जो सफेद है उस पर थोड़ा सा पीलापन का रंग आ जाएगा, ये स्वयं के मेरे अनुभव है।
1: पहले तो यही बात सुनिश्चित कर ले कि भैया जब हमें जो तुम भंडारण कर रहे का तो जो वो है कि सूखी हुई फसल हो वाते वही भंडारण करे।
0: जी हाँ,
1: तो अच्छी तरह भैया खुले में ही रख ले और वाते का जब पूरी तरह सूख जाए तब जाओ भंडारण करे।
0: कीड़ा जो है देखे जिस पर लग रहा है हमारे गूलर में, तो जो हमारा गूला जो खिल गया है वो बिल्कुल गूले से उसके कवर से बाहर निकलेगा, उसको अलग चुन लीजिए और बाकी जो अध खुला है, जो आधा खुला है और आधा भीतर ही अभी, उसे हमारा किसान तोड़ लेता है। उसे इंतजार नहीं है कि एक दिन या दो दिन या चार दिन और इंतजार करूं, उसे तोड़ के उसमें मिला देता है। उससे क्या है हमारी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, इसलिए किसान को वो ही कपास चुननी चाहिए जो बिल्कुल खिली हुई है, मालूम पड़े कि नीचे गिरने वाली है क्या, वो एक तो कपास जो है सूखी पर निकलेगी और दूसरी अच्छी क्वालिटी में आएगी।
1: और अगर जरूरत पड़े तो भैया 2-3 बार चुनाई कर ले बाकी
0: जिसकी, तो तीसरे दिन हर तीसरे दिन निकलती है चुनाई। चुनाई इसमें बहुत कर्रा काम है, हर तीसरे दिन जो है इसमें खिलाव आता है, हर तीसरे या चौथे दिन इसकी बुनाई कर लेनी चाहिए।
1: हाँ, थोड़ी सी लेबर तो लगेगी और काम ये है कि भैया वहां 2-4 बार चुनाई फालतू करनी पड़ सके, लेकिन वाते का होगी जो उपज है वहां की क्वालिटी ऐसी होगी कि वहां के ज्यादा दाम मिलेंगे और वाते का किसान ने फायदा होगा, जो लेबर में पैसा लगे रखा वाते ज्यादा फायदा
0: उतने रेट अच्छा मिल जाएगा उसे।
1: जी, तो जी बात तो भाई कपास की जाके संग संग देखो और दूसरी फसल कौन सी आपके खेत पे लग रही है?
0: बाजरा है। जी हाँ।
1: अच्छा, बाजरा के अंदर जा वक्त जो सितंबर को हमारा महीना चल रहा है, या महीना के में कहाँ कहाँ ऐसे काम है जो करे जा सके फसल के हिसाब से?
0: अगर हमारे बाली निकल के आ गई है उसमें फूल चढ़ा हुआ है तो किसान चूके नहीं, हर हालत में पानी लगा दे।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मौसम का मिजाज देख लिया है, मौसम में गर्मी बहुत है, बरसात का होने कोई संभावना ना है, हर हालत में किसान पानी लगा देना चाहिए ताकि उसमें अच्छी तरह से जो हमारा बीज बने और अच्छी पैदावार मिले।
2: अभी हमारे भैया जानकारी ले रहे हैं प्रगतिशील किसान से फसल उत्पादन के अनुभव के बारे में। जानकारी दे रहे हैं किसान भैया गेंदा सिंह रावत और इनसे बातचीत कर रहे विजय सिंह नौलखा। भैया अब मौसम की जानकारी, भैया मथुरा और मथुरा के आसपास के मौसम की जानकारी में तापमान अधिकतम 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है और गर्म हवा चलने की भी संभावना है। भैया हमारे किसान भैया को सलाह दी जावे है कि वे मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए गर्मी की सब्जी और फसल को आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई दें, मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें और

दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और खेतन में काम करते समय अपनों भी ध्यान रखें। यही के संग आज के कार्यक्रम में विदा लेवे को है वो समय। सभी भैया बहनों को हमारी राम राम।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और आप सुनते हैं फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

हरिहरन और साथियों को भी अपना सुना। फिल्म थी चार था, शब्द रचना उदय शंकर पानी की थी, धुन तैयार की थी सुरेंद्र कोहली ने।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हजरत जयपुरी की शब्द रचना भी आपने सुनी, लता मंगेशकर और सखियों के स्वर में। फिल्म थी कन्हैया।

0: किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म थी मेरे जीवन साथी। गीत मजरू का था, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और इस भक्ति रचना के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से

0: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
0: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साहित्य कार्यक्रम में आज दे समारोह में लेते हैं जानकारी एलोरा की गुफाओं के विषय में। वार्ताकार हैं ऋचा यादव।
7: जब कभी भी भारत के अतुल्य और अद्भुत वास्तुकला को नाम लियो जावे है तो एलोरा केव साप के लाने बहुत ही बढ़िया है। एलोरा केव एक धार्मिक स्थल तो है ही, बाकी संग में आप देख पावेंगे यहाँ की नायाब चित्रकारी को, जाकी छवि अपने आप में अलग ही लगे है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा की गुफाएं बनी बही है। इन गुफन की बात करें तो 6 से 12वीं सदी के बीच राष्ट्रकूट वंशजों द्वारा ये गुफान को निर्माण भयो। साल 1983 में यूनेस्को ने एलोरा की गुफान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दर्जा दियो। ये गुफान की प्रसिद्धि को अंदाजो आप जे बात से लगा सकते हैं कि साल भर में सैकड़ों पर्यटक महाराष्ट्र की जा खूबसूरती को देखवे के लाने आवे हैं। अब हम आपको बताते हैं एलोरा केव से जुड़े भए कछु रोचक तथ्य के बारे में, जे आप लोगन को जरूर पसंद आवेंगे। ये गुफाएं विश्व भर में सबसे बड़ी चट्टान को काट करके बनाए गए मठ मंदिरन में से एक होवे है। अजंता केव से अलग एलोरा केव केवल बौद्ध गुफान तक सीमित ना है, बल्कि जहाँ में हिंदू और जैन मंदिर भी बने भये हैं। एलोरा की गुफान में वैसे तो 100 गुफाएं बनी भई हैं, लेकिन जिनमें से केवल 34 ही हैं जो पर्यटकन के लाने खोली भई हैं। गुफा नंबर 16 में जो कैलाश मंदिर बनो भयो है, बाकी तो बात ही कछु अलग है। अगर हम बात करें कुल 34 गुफान की तो जामे गुफा नंबर 1 से लेके 12 तक बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। गुफा नंबर 13 से लेके 29 तक जे सबरी गुफाएं हिंदू धर्म की हैं। बाकी अलावा 30 से लेके 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं बनी वही हैं। यानी कि 1 से लेके 34 तक की जे सारी गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी भई हैं। और अब हम आपको एलोरा की गुफा की 16 नंबर की गुफा के बारे में बता दें कि ये गुफा में स्थित कैलाश मंदिर शिव को 2 मंजिला बना हुआ भव्य मंदिर है, जो कि चट्टान को काट करके बनाया गया है। जामे एक बड़ो सो शिवलिंग बना हुआ है और खुले मैदान में विराजमान है नंदी, और जाके 2 उलंग विशालकाय हाथी और स्तंभ बने भये हैं। जाए देख करके ये पता चलता है कि जाए हुबहु हिमालय पर्वत के कैलाश मंदिर को रूप देवे को प्रयास किया गया है। जाके अलावा गुफा संख्या 15 जाए दशावतार गुफा कहवे हैं, जहाँ में भगवान विष्णु के 10 अवतारन को वर्णन किया गया है। एलोरा की गुफा की संख्या 10 में मौजूद है बौद्ध गुफा जाए विश्वकर्मा गुफा कहवे हैं। एलोरा की घूमबे लायक जगह रावण की खाई भी होवे है, जो यहाँ के मुख्य कैलाश मंदिर से 350 मीटर की दूरी पर और एलोरा की गुफान से बस स्टैंड से 400 मीटर की दूरी पर गुफा संख्या 14 में बनो भयो है। एलोरा केव्स को एक और पर्यटक स्थल इंद्र सभा भी होवे है, जो कि कैलाश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गुफा संख्या 32 में स्थित होवे है। ये गुफा एक जैन गुफा होवे है, 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान की।

0: जैन गुफाएं एलोरा में बनी भई हैं। ये सबरी गुफाएं दिगंबर संप्रदाय की होवे हैं। एलोरा की गुफा में देखवे लायक गुफा धोताल की गुफा होवे है, जो कि एक आकर्षित पर्यटक स्थल है। एलोरा बस स्टैंड और कैलाश मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर ये धोताल गुफा बनी भई है। जई प्रकार से एलोरा में घूमबे के लाने गुफा संख्या 12 जाए तीन ताल नाम से जानो जातो है, जहा में एक 118 फीट लंबो और 34 फीट चौड़ाई वालो एक विशाल हॉल बनो भयो है। पहली मंजिल की ओर 9 कक्ष व्यवस्थित करे गए हैं, जाके हॉल को 8 वर्ग खम्बों की पंक्तियों के रूप में 3 गलियारों में विभाजित किया गया है। रामेश्वर की गुफा भगवान शंकर को समर्पित ऐसी गुफा है, जहाँ में भगवान भोलेनाथ की एक लिंग के रूप में पूजा अर्चना करी जावे है। एलोरा में घूमने के लाने गुफा संख्या 6 से 9 बहुत बढ़िया है, जहाँ में सबसे ज्यादा मठ शामिल है। जहाँ में पहाड़न के ऊपर बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बनी भई है। गुफा संख्या 6 का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया है और एलोरा में 2 प्रमुख मूर्तियां को स्थान भी यही है, दयालु देवी तारा और महामयूरी बौद्ध देवी। गुफा संख्या 22 जो कि नीलकंठ के रूप में भी प्रसिद्ध होवे है, जहाँ में क्षतिग्रस्त नंदीश्वर की मूर्ति बनी भई है। जा हॉल की दीवार पर गणेश जी की और 3 देवियन की मूर्ति और 4 सशस्त्र विष्णु की मूर्तियां बनी भई है। गुफा संख्या 24 में एक श्रृंखला होवे है। गुफा संख्या 25 भगवान सूर्य को दर्शावे है। गुफा संख्या 26 गर्भगृह कहलावे है। गुफा संख्या 28 एक चट्टान के नीचे बनी भई है, जहाँ में धारा प्रभावित होवे है, जाय खूबसूरत झरने को सीता की नानी भी कहो जातो है। इसी प्रकार से सभी 34 गुफान की अलग अलग विशेषता होवे है, चाहे बात हो रही हो अद्भुत नवासी की या रोचक बनाई भई मूर्तियन की। ये सबरी खासियत ही तो होवे है जो देश विदेश से आवे वारे पर्यटकन को यहाँ खींच कहलावे है। आप यहाँ के आसपास के कछु और टूरिस्ट प्लेस भी घूमे जा सके हैं, जैसे कि एलोरा केव से 103 किलोमीटर की दूरी पर है अजंता केव्स, जाए भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दर्जा दिया गया है। जाके अलावा बीवी को मकबरा है, चीनी महल है, छत्रपति शिवाजी को महल है आदि एलोरा की गुफा के आसपास घूमे जावे वाली जगह हैं। मंगलवार वारे दिना ना जाए के आप हफ्ता के कोसे दिना एलोरा की गुफान को मजा ले सको हो। सर्दी और बरसातन में यहाँ को आनंद लेवे को मजा ही कछु और है, क्योंकि गर्मी में उमस ज्यादा बढ़ जावे है। अब हम आपको बताते हैं कि एलोरा की गुफान तक पहुंचो कैसे जावे। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये गुफाएं मौजूद हैं। स्टेशन से आप बस या टैक्सी के द्वारा यहाँ तक पहुंच जावेंगे। अगर आप लोगों को हवाई जहाज द्वारा जाना है तो बता दें कि एलोरा की गुफान के सबसे निकटतम बनो भयो हवाई अड्डा भी औरंगाबाद में है। वैसे तो औरंगाबाद भारत के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ो भयो है, इसीलिए आपको यहाँ तक पहुँचवे में कछु भी असुविधा को सामना नहीं करना पड़ेगा। जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं और जिन्हें कला से प्रेम है, वे लोग एलोरा की गुफा को मजा लेवे के काजे जरूर जाएं।
1: दिस समारोह में अभी श्रोता ले रहे थे जानकारी एलोरा की गुफाओं के विषय में। वार्ताकार थी ऋचा यादव। साहित्य कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये लोक रचना।

पिंकी शर्मा और सखियों के गई इस लोक रचना के साथ ही आज का ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत। 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्य

0: आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, पशुपालक समितियों को एक महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया है, जिससे मुआवजा जारी किया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे गिरने की घटनाओं से हुई हैं। इनसे बिजली आपूर्ति और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिलों में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। चंदौली के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से कार्य कर रहे हैं। जनहानि के प्रकरण में मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से लाभ दिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
2: हम लोग सभी अवयवों पर, सभी कंपोनेंट्स पर काम कर रहे हैं और जो पोल इत्यादि टूटे हैं उनके मरम्मत, उनको लगवाने जाने का काम जारी है। इसके अलावा जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको भी हटवाकर जो है यातायात सुचारू कराया गया है। जो मानव मृत्यु के केस हैं उनको भी नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है और इसी प्रकार जो मकान क्षति हुई है, मकान क्षति में भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता बन रही है उसको भी दिलाया जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, कार पूलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने की बात कही, जिससे एलपीजी पर निर्भरता हो सके। लखनऊ में निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वो राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
3: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए, अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने, काफिला कम करने की अपील के मद्देनजर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। वहीं कानपुर स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने आदेश जारी किए हैं। अब विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और दूसरे अधिकारी परिसर में आधिकारिक कार्यों के लिए ई कार्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
4: हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कहा है कि जो साइकिल या ई कार्ट का प्रयोग, हम लोगों ने ये भी एक नियम निकाला है कि जो लोग शहर में जा रहे हैं तो ई व्हीकल का यूज, तो पेट्रोल बचाना और ऊर्जा को बचाना विश्वविद्यालय का अपना कर्तव्य है।
0: इसी क्रम में अयोध्या नगर निगम ने तय किया है कि अब सप्ताह में एक दिन यानी हर सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय

0: पहुंचेंगे। इसके साथ ही महापौर का एस्कॉर्ट वाहन भी बंद कर दिया गया है। वाराणसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बचाओ जागरूकता अभियान चलाया। नई सड़क स्थित कोदई चौकी से इलेक्ट्रिक स्कूटी रैली निकाली गई और पेट्रोल की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया और 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया है बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
1: आज देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में आज स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है और प्रदेश सरकार पशुपालक समितियों को मजबूत करते हुए 1 माह में ही भुगतान करने का काम करेगी।
2: निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसको उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। आज हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ के बैकुंठ धाम में आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा नेता शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और सैफई परिवार के सदस्यों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 मई कर दी गई है। परिषद के अनुसार 11 मई तक कुल प्रवेश क्षमता 271,093 सीटों के सापेक्ष 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 70 से अधिक लोगों की मौत, 24 घंटे में सर्वे पूरा कर मुआवजा जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने का आह्वान। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और आगरा में डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा पशुपालक समितियों को 1 महीने में ही भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

FM 102 दशमलव 2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को ले रहे हैं, जो कि बड़ी संख्या में भेजे गए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में धरती का ही पुकार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत मजरू का था, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ पराली से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल, यशस्वी वर्मा। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल।

कुसुम और इनके सभी परिवारजन, परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण, विक्रमजीत, अनमोल और पवनीत ग्रोवर, ब्रॉम्पटन कनाडा से निखिल भाटिया, नीति और महरीन भाटिया, गांव चौलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, तनुजा ईशान देवांगन, खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे, कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता और प्रतीक हेवराले, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्माला सुरलकर, रोम कुमार सुरलकर, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ओजस्वी यादव, ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकर्ण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश और प्रमला बंछूर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमल अनेजा, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ, शौर्य नामदेव, जमशेदपुर से हरजन सिंह भाटिया, इंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, गांव डोगर ठाकुरावाला से स्वर सिंह गिल, जगजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल और राज सिंह, ग्राम पजनिया जला जालौन से राजेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधाना खुराना, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, टिंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम, आशीष, राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर, हर्षा, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और रामेकर परिवार, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से वीएस नवानकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नरदा सिंगले, राजकुमार, आशीष मुरकर, गंज डुंडवारा से शमसुल कमसर, राही, शाहीन, फातिमा, अदनान, फैजान खान, अनु, उस्मान और कलीम अंसारी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा, सदर बाजार कुरावडी से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत और नीलम वर्मा, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक रोशनी राय और प्रांजल राय, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। और अब सुनते हैं नीलकमल फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज़ में, बोल साहिर लुधियानवी के, धुन तैयार की है रफी ने।

साहिर लुधियानवी की शब्द रचना भी आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म थी नीलकमल, संगीत दिया था रवि ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नगला राणा से।

राधा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा, राजू लवानिया खंदौली आगरा से, राधाराम जी उस फार मथुरा, वीरेंद्र सिंह मंडी चौराया मथुरा, नेतपाल सिंह नगला विजयी राया, भजन लाल कुमार राया, महेश चंद सदर बाजार मथुरा, सतीन संचौलिया जिला जालौन से, पंचम लाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, साधु शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, गांव गोपी की नगरिया से मिठन लाल सारस्वत नेहा नीरज निकेता और इनके मम्मी पापा, गांव नकला पुला से विजय सिंह भानु प्रताप सिंह और राधा रामानुज राधिका पवन करण भोला नमन और इनके परिवारी जन, गांव नौधरा से कोमल मास्टर यशोदा सूरज रोहित चंचल संजना शिवानी और इनके मम्मी पापा, गांव कुमोदवन से रमेश सुनील रचना और इनके परिवारी जन, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत सोनिया शिवांश चुन्ना और इनके मम्मी पापा ने, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर मंजुला राठौर विशाल नेशा, मधुबनी बिहार से भाई नवीन सिंह ज्योति श्वेता स्वाति सुशांत और छोटी चुलबुल, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश ककनेजा पूनम ककनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, राजनगर मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता विनीता गुप्ता रविराज कौरव कुमार और उनके सभी साथी, गंडोद्वारा उत्तर प्रदेश से कल्लू परवेज बेगम इमराना नाजिश दानिश और अमन, पटेल नगर मलूट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप आरजू जाजोरिया और गुड्डू, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा कोमल मेहरा कपिल और कुणाल मेहरा, गंजनवारा से मोहम्मद कलीम भुवन प्रकाश गौतम सरता गौतम डॉक्टर दबरुल हसन बेगम शबनम नजमा, सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान मोहिनी चौहान कल्पित बेबी करवी, 7:15 पे ये संदेश, सौगात मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित कुमार देविका रानी गजेंद्र कुमार हेयांश कुमार, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पना ताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल रक्षंदा रियांश और समस्त लोखंडे परिवार, गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शम्मी रजनी आकाशदेव अनहद और गुरशबद, नांदेड़ से प्रकाश जैन लातूर से संगीता जैन सूरज पीआर जैन, अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी गुलनास असद मोहम्मद आलम हाशमी, लसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश कुमार कीर्ति कुमार डीकेश कुमार, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद प्रकाश बल्लू और तरुण यादव, आडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, मंगलकोट मलकापुर से रामेश्वर तालेकर वंदना भारती दिव्या और हर्ष तालेकर, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर मेहराज जहां, आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष और नंदनी जंघेल, नवाशहर पंजाब से गगनदीप प्रियंका प्रशांत प्रियम और बेबी वामिका, बिलासपुर छत्तीसगढ़

से छन्नू लाल श्रीवास, अनिता पुष्पाय, अंजू रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। धमधमी एयरपोर्ट कॉलोनी कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, निम्मी तनुश्री गुप्ता। पेरा बाजार झुमरी तलैया से अक्षय कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका, रिया जिया, तुसी, आयुषी और इनके सभी परिवारिकजन। डुमराव से वजीउल्ला अंसारी, असमानाज और इनके परिवारिकजन। फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा ने

अन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन तैयार

जी ने, धुंध्यार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को सुनना चाहा था। बीट शहर महाराष्ट्र से नींद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री मैत्रे, अंजलि करवा, बाले साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और बीबी कुलथे। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। पद्माटा किस नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीनाकारी, पुष्पराज, आरती, आकर्षण, जयश्री। तेलंगाना बहांगीर से मोहम्मद परुद्दीन, फजन, लल्ला, फरहान, समेरा और अजमीन। बरबर पकाल बुलठाणा से नारायण हागे, कमल, दिव्या और जया हागे। डोंडी लोहरा लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और दानिश गुनौरी। बुलठाणा मार्च से वासुदेव बोधवड़े, अनीता, रमेश राव काठोड़े। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरजिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश, बेबी वैदेही और समस्त जोशी।

अगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, आप हैं पलाशा से, पैठण से चांद, शेख फखरून और इनके सभी परिवारिजन, काठारूट वाशे महाराष्ट्र से मास्टर बिस्थल सुरेश, सुषमा, परिधि, मायरा सुरेश, टाउनशिप सेक्टर 8 बेलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुमार, पमला, आसमा, दीपक और अनुश्री, श्याम कुमार, नरभोड़ा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, मुनीर रिसा, चांदनी चौक पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार, प्रभावती, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन, बटेरा रोड मर्डी डबावली से राजेंद्र, नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया और इनके सभी परिवारिजन, डेर पाटन गुजरात से धीरज वी रवारी, ढोरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, सदर बाजार मारवाड़ बिलाल बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान, राहटगांव अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर, हर्षा, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और समस्त रामेकर परिवार, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओम प्रकाश, साई गायकवाड़, कंवर कॉलोनी बाडवा से प्रवीण शिमाली और मीना शिमाली, छत्रपति जी संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजी राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष, विवेक और बेबी आयुषी श्रीवास, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति, चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राजा, संगीता रानी जिंदल, सुनीता रानी जिंदल, हसमुख लाल जिंदल और समस्त परिवारिजन, खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नाना चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल, डग्गू, भविका सिक्का, कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जामनिया, जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, विपिन, देव कुमार, आर्य कुमार, गजनुद्वारा से शमसुल खान, अदनान, फैजान, तबिश और अनु, लगान पटेरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल ने। और अब आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी का हृदय से आभार। नमस्कार।

0: अशोक भोसले को भी अपना सुना फिल्म थी रेशमा और शायरा,
1: संगीत दिया था
0: जयदेव ने।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
6: आरबीआई कहता है
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति परक रचनाएं।

0: सभी सुरों में अभी आपने ये रचना सुनी।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

गोपाल रंजन सिन्हा की शब्द रचना भी आपने सुनी संवेद स्वरों में। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक रिश्ता फिल्म के कुछ गीत।

अलका याग्निक और कुमार सानू को अभी आपने सुना, और आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में एक रिश्ता फिल्म का अगला गीत।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में इस समय श्रोता सुन रहे हैं एक रिश्ता फिल्म के कुछ गीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: सानू और अलका याग्निक के गाए एक रिश्ता फिल्म के इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे

0: वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल है।

0: ये रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक

0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive revision phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशदास को अभी आपने सुना। फिल्म थी त्रिशूल, गीत साहिर का था, संगीत दिया था खय्याम ने।

नक्श लायलपुरी की शब्द रचना भी आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म थी खानदान, संगीत दिया था खय्याम ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए रंग फिल्म के इस गीत के साथ ही चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: Countrywide.
1: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्रीवाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी, उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
2: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है, पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में जो सामान्य से नीचे होगा। और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाले केरला में, ये हर साल हम देते थे। इस साल हमने क्या किए हैं, और एक AI बेस्ड एक मॉडल लाया है, जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं।

0: इसमें जो आईएमडी के डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके इसको आईएफएस कहते हैं, आईआईटीएम का ईआरएफ कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है। और उसका जो मेन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है। उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज है दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल और सेकेंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरे 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है। और ये है बेस ये मॉडल हमने डेवलप किया है। अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 यूटी में। और उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी डीजी मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण करता है। इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते हैं। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं, इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो पूर्वानुमान प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर पर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि आईएमडी का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है, ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ईआरजी ऑटोमेटिक रेन गॉज है और उसके एडब्ल्यूएस ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया ईआईएफएस है, देन आईआईटीएफ का जो ईआरपी है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया हमने। उसके बाद एआई जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी ये रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए आईआईटीएम है, जो एमओएस का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है और उसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने के काम करेगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया के डेटा है, इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन का भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किए है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसिमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है। हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और आईएमडी अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी, पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी आईएमडी और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे आईसीएआर सेंटर्स हैं और बहुत आईआईटीज के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहां पे आईएमडी वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटिक के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी, क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा और इनके क्रॉप पे तो नुकसान भी कम होगा इसका।
1: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात है इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है?
0: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट है जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाया गया है। इसलिए है कि वहां पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ

0: एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ERG है, AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रेडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMOW का है उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को हम AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया। ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए, एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टर के जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हर एक साल के लिए, और हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा है, ERG डेटा है, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसके एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू भेज भी रहा है। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNC है जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
1: डॉक्टर शीष, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे UP में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
0: जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज जो शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनके उनके पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज करें।
1: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
0: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स, IITs है, काफी इंपैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर से है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व्ड है, इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है, हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ उन डिसमिनेट करते हैं, और डिसमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर है या सेक्रेटरी है, फिर वो उनका गांव का जो लोग है जो किसान उनको फर्दर डिसमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशुसखी है, कृषिसखी, जो उनका नेटवर्क हम फोरकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहां पर कृषिसखी फसुसखी फिर उसका गांव में जो डिसमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है, फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इनके कोई भी किसान है जो रेनफॉल रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन

0: या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेडफिट एग्रीकल्चर है, जिसका खेती है ब्लू पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इनकेस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजर के या विदा इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेष, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे?
0: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, जिनके कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं और एडवाइजर भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे एवर रेनफॉल है वहाँ पे, थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने के बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखनी चाहिए, वो ओरिजिनल लैंग्वेज में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है, तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शेष, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं, उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए, या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आपने रेडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक अग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, उस सैटेलाइट के इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं, ताकि विद एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शेष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

अधिक मास या कुपुरुषोत्तम मास कहें, ये महीना पुनीत महीना है। या में जप तप भागवत कथा राम कथा कृष्ण कथा रास लीला और विशेष दर्शन हो, वार्षिक उत्सव हुए हैं मंदिर में, कहूँ घटा पर है तो कहूँ श्री कृष्ण झूला झूले हैं।

0: गोवर्धन में विशेष परिक्रमा लगे है, आओ चले गोवर्धन चले और आपको गिरिराज महाराज के दर्शन करामे।
1: ये दृश्य दूध चढ़ावे को

0: जल चढ़ाओ मरण सूतम मरण मासी ऋतु सदन वासीदा शुद्ध स्नान ते समर्पयामी नमः गंध द्वारा राधसाम ईश्वरी सर्वभूतानां काम्योपमे।
1: दानघाटी मंदिर प्रसिद्ध दानघाटी को मंदिर जहाँ भगवान कृष्ण ने दान मांगो ऐसा कहे हैं, यहीं ते परिक्रमा शुरू हुए।
2: हजारों नर नारियां आए के दूध चढ़ाने भोग लगाने अपनी मनोती माने परसोत्तम मास में अधिक महत्व समझ के यहाँ दंडों की परिक्रमा प्रारंभ हुई है। ये हैं हमारे दानघाटी मंदिर के पुजारी
3: गोवर्धन महाराज। मैं सीताराम शर्मा श्री गिरिराज सेवक सम्मति दानघाटी गोवर्धन मंदिर सेवाधिकारी श्री सीताराम शर्मा। सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर का 2 बजे तक पूजन का दर्शन होता है और शाम को 3 बजे से रात के 11 बजे तक श्रृंगार का दर्शन होता है। उसमें लाखों यात्री प्रतिदिन मंदिर आते हैं और इसका 7 कोस का परिक्रमा है 21 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का एक परिक्रमा है, 9 किलोमीटर का एक परिक्रमा है, दोनों मिलाकर 21 किलोमीटर का पूरा एक परिक्रमा माना जाता है। ये अधिक मास का महीना है, ये 3 साल में ये महीना आता है, ये अधिक मास का पावन पर्व है। इस पर लाखों यात्री प्रतिदिन आता है और पूर्णमासी पे करोड़ों करोड़

0: आदमी आता है और दान पुण्य का विशेष महत्व है और इसमें दंडौती का विशेष महत्व है।
1: राज महाराज की जय।
2: कछु मेला दंडौती दे रही, नाम कहा है भेना तेरो?
3: महावीर।
2: तेरो नाम?
3: कौन
2: सो गाँव में?
3: खुटिया। खुटिया खुटिया।
2: ये कहाँ है? ये
3: दंडौर।
2: तो दंडौती कब शुरू करी है तुमने?
3: आज ही शुरू करी है, अभी करी है।
2: तुम्हारी कहा मनोकामना है?
3: भाई मनोकामना यही है, हमारे बालक लगे जाए महाराज, हम तो यही मनोकामना पद है।
4: अरे बाबा वैसे ही डुअल बालक सब।
2: मैंने तुम्हारी इच्छा है कि भगवान हमारे छोटी छुरा को नौकरी मिल जाए।
5: ये लाली बड़ी थकी सी मालूम पड़ रही है, आपने का परकम्मा लगाई है?
6: हाँ।
5: कैसी परकम्मा?
6: पिटिया।
5: दंडौती?
6: हाँ दंडौती।
5: कहाँ से शुरू करी है?
6: यहाँ से करी है।
5: कितनी कई बार दंडौती लगा रोज?
6: इतनी तो मालूम गिनते तो है नहीं।
5: तो तुम्हें कितनी दूरी चलते हो?
6: चल लेते हैं वैसे 2-3 किलोमीटर।
5: भूख लगे तो?
6: भूख लगती है, खाना मिल जाए तो घर वाले ला देते हैं तो खा लेते, नहीं तो नहीं।
5: थकान महसूस हो रही है?
6: हाँ खूब हो रही है।
5: आपके
6: मन कर देते हैं जब थकान होती है, जब लग जाते हैं, जब शरीर जाम हो जाता है तो फिर मालूम नहीं पड़ती है।
5: आपकी भावना का है, क्यों लगा रही हैं आप?
6: हमारी तो भावना ये है कि हम इनकी शरण में थोड़ी हमारा शरीर भी आ जाए तो अच्छा है।
5: तो भगवान की कृपा चाहती हैं, शरण में इनके आना चाहती हैं।
6: हाँ।
5: अपने धनी से लड़ाई तो ना है तुम्हारी को?
6: नहीं, वो आए हैं साथ में।
5: आए?
6: हाँ।
5: वो किचमाऊ ने इनसे बात कराओ। आप
7: हाँ जी,
5: आप दोनों दंडौती दे रहे हो?
7: हाँ जी।
5: आपस में परस्पर प्रेम कैसे है?
7: बहुत बढ़िया है सर।
5: अच्छा।
7: हाँ जी।
5: ये आपकी बात माने?
7: ये हमारी बात मानती है, हम इनकी बात को मानते हैं।
5: अच्छा जी, क्या चाहते हैं आप?
7: हम तो सब प्रेम वक्त से चाहिए सर।
5: भक्ति चाहते
7: हैं? भक्ति चाहते हैं।
5: पैसा?
7: पैसा अगर पैसा होता तो हम परकम्मा कह के दे रहे हैं फिर।
5: पैसा चाहिए
7: तो
5: तुम्हें?
7: नहीं पैसा नहीं चाहिए था, पैसा होता तो फैक्ट्री में रहता हूँ सर।
5: अच्छा।
7: निजी फैक्ट्री है सर, 50 आदमी काम करते हैं मेरे।
5: तो पैसा कोई आवश्यकता
7: नहीं,
5: नहीं है?
7: नहीं है।
5: तो क्या चाहिए आपको?
7: प्रेम भक्ति
5: शांति मिलती है?
7: शांति।
5: ये परकम्मा आने में आपको कुछ शांति मिली है?
7: बहुत बड़ी शांति सर, घर वालों को तो बिल्कुल भूल गए यहाँ पे आके। नहीं
8: ये बात।
5: कैसा महसूस होता है?
7: छोटे छोटे बच्चे, उनको भी ध्यान नहीं आ रहा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे होंगे।
9: आनंद आ रहा है,
6: आनंद आ रहा है।
5: परसोत्तम मास में, ये अधिक मास में ही परिक्रमा क्यों दी आपने?
7: ये सब कोई कई साल बाद में है का, ये महीना पड़ा हुआ है तो उसके चक्कर में बताते हैं कि बहुत मतलब इसका महत्व होता है।
10: गोवर्धन की पूजा करते हुए ब्रजवासी, अरे छेद बिहारी, अरे दूध चढ़ाने की तैयारी करो। कहा है भैया? आ जाओ
11: भैया, दूध चढ़ाओ गिरदा जी में।

0: आनोर परकम मार्ग परसोत्तम को मास अधिक मास या को कहें या मैं विशेष महत्व माने हैं। यहाँ से स्वामी रामस्वरूप शर्मा जी की रास है रहे और राम कथा है रही है।
1: राम जिस प्रकार सर्वत्र विराजमान हैं, जल में, थल में, कण में, रज में, वृक्ष में, पर्वत में, सर्वत्र श्री राम विराजमान हैं, उसी प्रकार राम कथा भी सर्वत्र हो और श्री राम नाम का प्रचार हो, ऐसी आज के युग में सबसे अधिक आवश्यकता है। और राम और कृष्ण में दोनों में कोई भेद नहीं है, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। तो हमारे जितने संत हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आए, उन्होंने भी यहाँ आके ये

0: पद गाया था, वंदो अवध गोकुल गाम, उत ही राजत जानकी वर इत ही श्यामा श्याम।
1: वहाँ की वट सखाता जो बिहसी के रघुनाथ, यहाँ नृग यदुनाथ तार्यो कूप गही निज हाथ।

0: कुबजा लाय चंदन किए पूरण काम। राम भक्त हित सी राम कृष्ण धरियु नर अवतार। दास तुलसी दोहु आसा कोई उतारो पार।
1: स्वामी जी, पुरुषोत्तम मास में कुछ विशेष महत्व है क्या?
0: पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व इसलिए है कि पुरुषोत्तम मास में न तो कोई विवाह हो सकता, न किसी मंदिर या जलाशय या मकान का कोई उद्घाटन या निर्माण प्रारंभ नहीं हो सकता, न किसी दुकान का, न कारखाने का और न किसी व्यापार का मुहूर्त किया जा सकता। इन दिनों में केवल भगवत चर्चा, भगवान की कथा, भगवान की लीला, सत्संग यही सर्वोपरि हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास इसी कारण आता है कि हम और 3 साल तक सब काम करते रहें पर 1 महीना हम भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए समर्पित कर दें, इसलिए पुरुषोत्तम मास उसका नाम है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास आता है।
2: ब्रजवास की आसुना

0: ऊंच नीच को लोटा को कहा महत्व है।
1: जो कछु मैंने सुनी है बेटा दऊ बताए, बात पुरानी है बहुत, सुन ले कान लगाए, सुन ले कान लगाए, पुरानी द्वापर की है कहानी, बचपन में मोते कहो करती बूढ़ी मेरी नानी।
2: अच्छा?
1: हाँ बेटा, गांव पूंछरी को है लठोता, पहलवान बड़ो ज्ञानी, मारो हो या ही थलपे याने असुर एक अभिमानी। ये तो यादों वंश में है गयो, वीर बड़ो बलवान, लठ लिए घूमो फिरे ब्रजवासिन को प्राण। देख लठोता ते भयो लोठा याको नाम, पर उपकारी मल्ल हो किए बहुत शुभ काम।

0: केशवाय गोविंदाय हरि नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण ताय चो हाथ जोड़ दो अष्टवदे नम नाथ कम जल के प्रसादा ब्राह्मण के वचन तुम्हारे मानसी गंगा गोवर्धन पूजन पर कम्मा यात्रा पर पूर्ण
1: मानसी गंगा का आचमन करते भाई यात्री गण भाई ये कौन सी जगह है महाराज जी
2: राय मुखारविन मुकर
1: आपका शुभ नाम
2: मेरा नाम है अर्जुन पुजारी
1: अर्जुन जी यहाँ कैसे कैसे पूजा हो रही
2: 7 दिन 7 रात पर्वत उठाया कृष्ण भगवान ने और इंद्र की पूजा मैट कर नहीं है गोवर्धन पूजा करवाई ब्रजवासियों की ग्वाल नंद बाबा जसोदा मैया ने गोवर्धन पूजा कराई है फिर ब्रजवासियों ने पूजी फिर सब ग्वाल वालों ने सब यात्रियों ने सेवा पूजा करी

मानसी गंगा के निकट लोग स्नान कर रहे हैं, घंटा बजा बजाए के आरती कर रहे हैं। यह है मानसी गंगा का किनारो।

ये छठा तीन लोग तो न्यारी है, उद्धव जी के कुंड की और उद्धव जी के दर्शन की, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, सुरभी कुंड, ऐरापुत कुंड और कुसुम सोवर के जब आप दर्शन करेंगे तो अपने को धन्य मानेंगे। यह है ब्रज की लीला, श्री कृष्ण की लीला की स्थली, महाराष्ट्र स्थली। और हम दानहट्टी के पुनः दर्शन श्रृंगार के करें और अपनी परिक्रमा पूरी करें। आओ दर्शन।

चलो परिक्रमा दे आए। अभी श्रोता सुन रहे थे अधिक मास में गोवर्धन परिक्रमा पर आधारित ये रूपक। प्रस्तुति मंजुलता तिवारी की थी, प्रस्तुति सहायक मोहित कुमार। एफएम 102.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं उस्ताद बाबू खां के गाई ठुमरी और दादरा। सबसे पहले प्रस्तुत है राग ठुमरी में मिश्र काफी में, तत्पश्चात राग मिश्र पीलू में। आपके साथ तबले पे संगत की है जुम्मन खान ने।

उप शास्त्रीय संगीत में अभी श्रोता सुन रहे थे बाबू खां का गायन एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को कुछ पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी
1: जा के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र

0: विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरला में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. Our West Asia correspondent reports India and the UAE are preparing to further expand one of Asia's fastest growing economic partnerships during high-level discussions between Prime Minister Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The talks are expected to focus on trade, investment, energy security.